0: जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था, तो जिस तरह ये लोग इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे, उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे।
1: वलकद

0: غيره قد جاءتكم بينة من ربكم
1: فأوفوا القول

وضرب

इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं। और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकनी यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 101 FM।
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदे सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution।
4: हमसे है रोशन ये जहां,
5: हमसे है

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरखारो तो बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरखारो तो बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरखारो तो बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरखारो तो बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे बरखारो तो बरसे बरसे बरसे बरसे बरसे

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
2: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।
3: Back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Fashion 101 की उनकिया।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुनते रहिए एफएम 101।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान। शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: E-Power, the ultimate power solution.
1: This is FM 101.
2: तेरह जून होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
1: दिस इज FM
2: 101। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: सुनते रहिए FM 101।

चल जनाब, हेलो अस्सलाम वालेकुम अजी सामीन, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही मज़े में होंगे, बखैर वाफियत होंगे और बिल्कुल हमारे साथ साथ होंगे। Well, जनाब हमें कहते हैं FM 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, एंड यस दिस इज योर होस्ट, योर दोस्त, योर वेरी ओन आज, योर वेरी ओन मुंडा आज मुस्तफा इज इन द हाउस ऑफ FM 101 लाहौर। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने, तमाम सराहने वालों को इस हस्ती मुस्कुराती चेहचेहाती लहलहाती सुबह में खुश आमदीद कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम सुनने वालों ने आज के दिन का आगाज भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार अंदाज के साथ किया होगा, और इस दुआ के साथ कि आपको आपका आज का सारे का सारा दिन बहुत ही अच्छा, खुशियों भरा, बखैर वाफियत वाला दिन देखना और गुजारना नसीब हो। गुड मॉर्निंग लाहौर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सुबह बखैर पाकिस्तान। वेल जनाब, 9:14 हुए चाहते हैं, बल्कि 15 हो गए हैं, पाकिस्तान का मायारी वक्त और मेरा आपके साथ रहने का भी। तारीख की बात कर लें तो जनाब आज तारीख हो चली है जून की 3, जबकि 21वीं सदी का 26वां साल यानी कि 2026 जो है अपने इख्तिताम की जानिब आहिस्ता आहिस्ता से क्या कहते हैं, रवा दवा यानी कि इख्तिताम पजीर होने को है। Well, जनाब बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे मौजूदात के ऊपर आपसे गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, सब कुछ करेंगे जो कि हम आपके साथ करते रहते हैं, आपके साथ करते रहते हैं और आपके लिए करते रहते हैं। Well, जनाब बात की जाएगी और सबसे पहले तमाम समातों का, उन तमाम समातों का जो कि हमें लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, हमें जहाँ कहीं से भी सुन रही हैं, हंसते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहचेहाते हुए, लहलहाते हुए, गाड़ी चलाते, खाना बनाते, खाना खिलाते, चाय या कॉफ़ी पीने के साथ साथ आप कुछ ठंडा काफी रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं जो कि अचानक से बहुत ही औसम हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार हो चुका है, और साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं, तो जनाब आपकी समातों का, आपके ट्यून इन करने का, आपके लॉग इन करने का बेहद बेहद शुक्रिया। मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा, यानी कि आज मुस्तफा आपके साथ ये साथ रहेगा, बिल्कुल आपके अपने शो यानी कि शो तो मेरा है, मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक के लिए, और जनाब बहुत कुछ होगा सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, हंसने को, हंसाने को, बोलने को, बुलवाने को, महसूस करने और करवाने को, सबसे बढ़ के सीखने को, सिखाने को। Well, जनाब अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं किसी को, कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इंतहाई आसान, FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, तो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आप मुझ तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं और कह सकते हैं जो भी आपको कहना है, और यकीनन आप सुन सकते हैं जो भी आपको सुनना है, क्योंकि पोस्ट जो है वो भी अपडेट की जा चुकी है, मैंने खुद लगाई है और बहुत अच्छी मेरी एक पिक्चर है, पोस्टर है, सो पेज पर आप आएंगे तो आपको अच्छा लगूंगा मैं, यानी कि अच्छी लगेगी आपको ये जो पोस्ट है मेरे शो के हवाले से, कुछ मालूमात हैं और इसके अलावा आज के मौजूदात के हवाले से हम बातें करेंगे, लेकिन सब कुछ चलता रहेगा। अभी आप तमाम समातों के नाम अपने शो का पहला ट्रैक करना चाहूँगा, आतिफ असलम की आवाज़ में कहते हैं पहली दफ़ा। सो जनाब जिंदगी में बहुत सारे मामला, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें पहली दफ़ा ही अच्छी लगती हैं, बाद में ना बस क्या कहते हैं कि बंदा तंग आ जाता है। वो जोक्स अपार्ट, एक ऐसा ट्रैक आप तमाम समाज के नाम, मिलते हैं ट्रैक के उस पार।

जी हाँ जनाब, सुना है ये रस्म वफा है, ये दिल पे नशा है वो पहली दफा है। तो जनाब बात कुछ यूं है कि जो कि बारह आपसे की जाती है, और आज हम फिर करेंगे कि हम ना अपनी पूरी जिंदगी को इस इंतजार में गुजार देते हैं, निकाल देते हैं, बिता देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपनी मनपसंद जिंदगी है, जो हमारी अपनी मर्जी की जिंदगी है, उसको हम जिएंगे। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि जिंदगी ना वही है जो आज आपको मयसर है, जो आपके पास आज मौजूद है, क्योंकि कल जो है ना वो ख्वाब है और जो आज है वही हकीकत है। तो जनाब ऐसा ख्वाब जो कि हम कल के हवाले से, अपने आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से देखते रहते हैं ना, वो कुछ ऐसे ख्वाब भी होते हैं जिनकी हकीकत में कोई ताबीर नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक मौजू के हवाले से कि डे ड्रीमिंग जो होती है, बहुत ज़्यादा ख्वाबों में खोए रहना, ख्वाब देखना अच्छी बात होती है, और ख्वाब देखने के हवाले से मैं हमेशा बारहा बात करता हूँ और आप हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस में सुनते रहते हैं कि ख्वाब देखने चाहिए। और मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि जो ख्वाब देखता नहीं सोचता नहीं उसे जिंदों में क्या शुमार करना। तो ये बात हकीकत है, ख्वाब देखना और इसके साथ साथ सोचना भी लाजिम मलजूम है। हम क्या करते हैं कि हम ख्वाब देखते रहते हैं और ख्वाब देखते देखते सो जाते हैं, और सोते हैं तो फिर ख्वाब देखते हैं, जागते हैं तो फिर ख्वाब देखते हैं। तो हमने ख्वाब वो देखने हैं जो कि बिल्कुल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, काम करने पर मजबूर करते हैं, और हमसे अच्छे अच्छे जो एक्शंस हैं वो करवाते हैं, ना कि वो ख्वाब जो कि हमें सुस्त बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बहानेबाज बनाते हैं, काम चोर बनाते हैं। और वो शेख चिल्ली वाले ख्वाब तो आपने मैं कहने लगा था देखे हैं, आपने पढ़े ही हैं ना। तो कुछ ऐसे मामला थे जिनके हवाले से आज हम बात करेंगे। वेल जनाब अभी बात कर लेते हैं आज के दिन के मौसम के हवाले से, क्या कहता है आज का मौसम और क्या हालात वाकयात हैं आज के मौसम के लाहौर और उसके मज़ाफात में। वेल आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप जहां से भी सुन रहे हैं, आपके गिरदो नवा का, आपके इलाके का, और सबसे बढ़ के आपके दिल का, आपके मन का, आपके अंदर का मौसम कैसा है, मुझे जान के अच्छा लगेगा। वेल लाहौर के मौसम की बात कर लेते हैं, जो कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर लीजिए रिकॉर्ड किया जाएगा 32, जबकि मिनिमम जो आज रिकॉर्ड किया जाने वाला है वो है 27। अरे रात को जो है वो थोड़ी सी हमें ठंड महसूस होगी, अच्छा मौसम है, बहुत ही सुहाना मौसम है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है वो है 32। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब जो कि फिल वक्त मौजूद है वो है 44%, यानी कि 44%। इसके साथ साथ 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आज हवाएं चलने वाली हैं। बारिश के इम्कान शाम के औकात में मौजूद हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। वेल कल जो है अच्छी खासी बारिश होने वाली है, तैयार रहिएगा। रात के हवाले से बात की जाए तो रात को मैं सोने की तैयारियों में था और मैंने सोचा था जल्दी सो जाऊंगा, सुबह शो है, जल्दी उठना है। तो अचानक से मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली, बादलों की आवाज़ आई, और इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं ना जब बारिश होने से पहले हवा चलती है, और उस हवा के साथ हल्की हल्की धीमी आवाज़ में जो बादल गरजने की आवाज़ होती है ना, ओहो क्या बात है, दिल ही नहीं किया सोने का। सो मैं वीडियोस बनाता रहा और अच्छी अच्छी रील्स बनाई और मैंने कुछ लगाई भी थी। सो अगर आप देखना चाहते हैं ना तो उसके लिए आप मेरा जो फेसबुक फैन पेज है उस पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। वेल मौसम के हवाले से हम बात कर रहे थे, बात कहाँ से कहाँ चली गई। सो मौसम के हवाले से जब भी बात की जाती है आपसे, हमेशा ये लाजमन कहता हूँ और कहता रहूँगा, आज भी कहूँगा कि असल मौसम जो होता है वो इंसान के दिल का, उसके मन का, उसके अंदर का मौसम होता है। सो आपने इसको औसम रखना है, इसका ख्याल रखना है और इसको खुशगवार रखना है। सो अपने मिजाज में, अपनी तबीयत में, अपनी शख्सियत में किसी भी तरह की तलखी जो है, जो बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि आपको क्या कहते हैं कि टॉक्सिक बनाती है ना, वो आपने नहीं आने देनी है। तो अंदर का मौसम जो है ना वो ज़्यादा मायने रखता है, आपका मूड ज़्यादा मैटर करता है।
So, इसको अच्छा खुशगवार बनाने के लिए हम रहते हैं हम वक्त आपके साथ, और वो है ना कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, क्योंकि मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वेल, जब मौसम की बात की जाती है तो पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाकों की बात ना हो ये कैसे हो सकता है। तो जनाब बिल्कुल अस्कदो, गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह के इलाके, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बल्ती हैं, गिलगती हैं, शीना बोलते हैं, बल्ती बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मुझे बारहा जो है वो सदे आते रहते हैं, सदे समझते हैं कि आपको दावतनामे आते हैं कि फ़लाँ आपने आना है, टूर पे आना है, शादी पे आना है, फ़लाँ फंक्शन है। सो मैं नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि आपको पता है कि मसरूफ़ ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जब हमने ये सब कर लिया तो काम कौन करेगा। सो वेल जनाब, ये बातें चलती रहेंगी, और एक ऐसा ही ट्रैक, एक ऐसी ही वाइब जो कि हसन रहीम ने अपने म्यूज़िक अपनी आवाज़ के साथ क्रिएट की है, इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बहुत ही धीमा सा और बहुत ही मज़ेदार सा गाना है जिसका नाम है बेवजह, और इसमें इन्हीं इलाकों के हवाले से, वहाँ के रस्म और आवाज़ के हवाले से और जज्बात के हवाले से बात की जा रही है। सो समझ आती है, नहीं आती है आपने समझने की, बल्कि इसको महसूस करने की कोशिश करनी है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड, एंड यस, डोंट गो एनीवेयर।

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
1: This is FM
0: 101. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: सुनते रहिए FM 101.

ओके जना, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शो कॉल्ड सिटी वाइब्स और मुझे मुस्तफा कहते हैं। 9:37 हुए चाहते हैं, मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक के लिए। वेल जनाब, आज हम बात करेंगे। जनाब आज जून की 3 तारीख है और मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मेरा आज बहुत ही पसंदीदा दिन जो है वो मनाया जा रहा है और आलमी तौर पे जो है ये इसको इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वह जनाब साइकिलों का जो आलमी दिन है यानी कि बाइसाइकिल्स का जो आलमी दिन है वो आज मनाया जा रहा है और इस हवाले से हम भी बात करेंगे। आप भी मुझे बताएं कि आपका जो पहला तजुर्बा था साइकिल चलाने का वो कैसा था, बैलेंस कितनी आ गई थी यानी गिरे थे आप मुंह के बल। इसके अलावा हम बात करेंगे जो कि मैंने आगाज में बात की थी डे ड्रीमिंग के हवाले से, यानी कि दिन में ख्वाब जो लोग देखते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है और आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, उसको इन्हेंस करती है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ख्वाबों में खोए रहना और अपनी अमली ज़िंदगी में हकीकत में कुछ ना करना ये एक ख़तरनाक तरीका भी साबित हो सकता है जो कि आपको एडिक्शन में मुब्तला कर सकता है। इस हवाले से हम बात करेंगे और आपकी राय भी जानेंगे, आपसे बात करेंगे कि आप ख्वाब देखते हैं या सिर्फ आप ख्वाब भी देखते रहते हैं। ख्वाब देखकर आप काम क्या करते हैं और किस तरह से अपने ख्वाबों को जो है प्रैक्टिकली कामयाब बनाने के लिए, इनको एक क्या कहते हैं कि हकीकत में बदलने के लिए आप अमली इकदाम क्या करते हैं। इस हवाले से आपने मुझे बताना है, आपसे दो तरफा बात की जाएगी। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे आजकल के मामलात की बात की जाए, सोशल मीडिया हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हम रील्स देखते हैं और इसके साथ साथ क्या होता है कि सोशल मीडिया कंजप्शन की वजह से और स्क्रीन टाइम के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी जो ब्रेन की वाइब्स होती हैं यानी कि हमारे दिमाग में भी तारे होती हैं, तारों से मुराद कि हमारे दिमाग में डेंड्राइड्स होते हैं, एग्जॉन्स होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स का आपको पता है कि हमारे दिमाग में पूरा जाल होता है, नर्वस सिस्टम का एक पूरा तरीकाकार होता है, एक बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है वो होता है। इसके साथ साथ हमारे हॉर्मोन्स का मामला होता है, सिलसिला होता है। तो ये तमाम तर जो मामलात होते हैं मोस्टली हमारा दिमाग इन्हें कंट्रोल करता है। अगर हमारा दिमाग हमारे काबू में नहीं रहता तो दिमाग इन चीज़ों को काबू में रखने से भी कासिर रहता है। अपने दिमाग को हम इतना ज़्यादा तकरीबन अगर मैं अपनी भी बात करूं, हम तमाम नौजवानों की आज की नस्ल नौ की बात की जाए, इवन कि आजकल के तो बड़े भी जो हैं वो लगे होते हैं, वो कहते हैं ना कि हमारे वालदेन हमें अक्सर कहते हैं, आपको भी कभी कहा है आपके आपके पापा ने, आपकी मामा ने, जब ये घंटे मोबाइल चवड़े रहने ने। ऐसा हुआ है ना, होता है ना। इस हवाले से हम बात करेंगे कि अगर आपका दिमाग जो है वो बर्बाद हो चुका है, आपसे सोचा नहीं जाता, आपसे फोकस नहीं किया जाता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपके दिमाग का जो है ना वो बेड़ा गर्क हो चुका है, कख नहीं बचा, तो हम दिमाग को किस तरह से दोबारा से रिवाइड कर सकते हैं और दोबारा से अपने सोचने समझने की सलाहियतों को जिनका इस्तेमाल हम दिमाग के ज़रिए से करते हैं, हम अपने दिमाग को किस तरह से दोबारा से बेहतर बना सकते हैं, लाइन पे ला सकते हैं और इसे अपने जो पसंदीदा अच्छे अच्छे काम हैं वो करवा सकते हैं। इस हवाले से कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ मामलात हैं, कुछ बातें हैं, कुछ तजावीज़ हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा आपसे सवाल ये मैं कर रहा हूँ, बल्कि अभी कर लेते हैं कि आपने मुझे ये बताना है और ये जो सवाल है ना ये इसी मामले के साथ, इसी बात के साथ कनेक्टेड है कि आप किस तरह से अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। यू नो कि आजकल सोशल मीडिया के हवाले से जब बात की जाती है, हम सोकर उठने के साथ ही सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो अपने नोटिफिकेशंस होते हैं वो चेक करते हैं और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम रील्स देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं किसका मैसेज आया किसका नहीं आया और अगर कोई मैसेज आया है तो उसमें क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो ये तमाम तरह मामला होते हैं लेकिन साइंस ये कहती हैं, तहकीकात ये कहती हैं, हम इनके हवाले से आगे बात करेंगे कि किस तरह से सोकर उठने के साथ ही अगर हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन टाइम को बढ़ा देते हैं तो इसकी वजह से सोकर उठने के बाद जो हमने पूरे दिमाग को फ्रेश किया होता है और वो कहते हैं ना कि जब इंसान सोकर उठता है तो वो एक नया इंसान बनकर उभरता है और वो ये बात भी है ना कि जो नींद होती है वो आधी मौत की मानिंद होती है और जब इंसान सोकर जागता है गोया कि वो दोबारा से ज़िंदा होता है।
तो हम जिंदगी को पाने के साथ ही दोबारा से हम अपने आप को ढीला ढाला कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं कंफ्यूज कर लेते हैं और अपने दिमाग को थका देते हैं। सो सुबह के वक्त में हमें क्या करना है क्या नहीं करना इस पे बात की जाएगी। और आपसे सवाल ये है कि सुबह उठने के साथ ही आप क्या करते हैं। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं सबसे पहले पानी पीता हूं, कॉफ़ी पी लेता हूं और नाश्ता किया जाता है, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम भी मोबाइल पे लग जाते हैं और जब लग जाते हैं तो फिर जान नहीं छूटती है। सो आपने मुझे ये बताना है और इसके अलावा कुछ अपडेट्स हैं, कुछ खबरें हैं, कुछ मामलात हैं, इन पे बात की जाएगी और आपसे बात की जाएगी। तो बिल्कुल जनाब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इन था आसान, यू कैन रीच मी अपॉन एफ एम 101 लाहौर का जो फेसबुक फैन पेज है, यहाँ पर आने के बाद आप मुझ तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं और कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं, सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। आजकल फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से काफ़ी बात हो रही है, हम भी बात करेंगे और आपकी जो पसंदीदा टीम है इसके हवाले से जानेंगे कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्यों है। एक ट्रैक है, हाल ही में रिलीज़ किया गया है, शकीरा की आवाज़ में, शकीरा का वका वका जो है वो सबको याद होगा। शकीरा ने एक और ट्रैक जो है वो इस वर्ल्ड कप का जो एंथम है इसके तौर पर ये जारी किया है, रिलीज़ किया है। इस ट्रैक को हम भी सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, वापस आते हैं उस ट्रैक के उस पार। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं कहते हैं फिर 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफा कहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर।

ओके जना, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम समातों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं फेमानो वन चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफा कहते हैं शो लाइव है सिटी वाइब्स। और आपको क्या कहते हैं ये बताने के लिए तरीका का जो है वो आपको बताया जा चुका है। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने, तमाम सराहने वालों को सुबह बखैर जिंदगी और गुड मॉर्निंग। वेल, 9:49 हुए चाहते हैं, मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक के लिए। बात कर लेते हैं जनाब आज साइकिल्स के हवाले से, बाईसाइकिल्स के हवाले से, कि इनकी अहमियत के हवाले से आजकल बात की जा रही है। आज बात की जा रही है क्योंकि आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो है वो मनाया जा रहा है। सो इसकी तारीख पर हम बात कर लेंगे, इसकी अहमियत के हवाले से हम बात कर लेंगे, और आपसे कुछ सवाल किए जा रहे हैं कि आप साइकिल चलाते हैं या अगर आपने कभी चलाई है तो आपका पहला तजुर्बा कैसा था। आपके बचपन के हवाले से बहुत सारा ऐसा नॉस्टैल्जिया होता है, बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं, और मुझे याद पड़ता है कि बचपन में मेरा जो सबसे पसंदीदा टॉय होता था ना, जो खिलौना होता था, तफरी का सबसे बड़ा सामान या जरिया होता था, वो मेरी छोटी सी साइकिल होती थी। तो जनाब बिल्कुल हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता होती हैं, और इसके साथ साथ इसके फवाइद की बात की जाए, इसके सेहत पर जो आपके असरात होते हैं, आप पर असरात होते हैं, इनकी बात की जाए तो बिल्कुल जनाब बिल्कुल बेबहा है। बहुत ज़्यादा बात की जाती है, सजेस्ट किया जाता है, सेहत के माहिरीन ये कहते हैं, तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि साइकिल चलाने से जो है आपकी बॉडी मूवमेंट किस तरह से आपके जहनी और जो आपकी असाबी कमज़ोरियाँ इनको दूर करने के हवाले से बेहतरीन किरदार जो है वो अदा कर सकती है। तो इसके अलावा कहा जाता है कि जो स्विमिंग होती है या जो साइकिलिंग होती है, इसके ज़रिए से आपका आपकी बॉडी का एक एक जो मसल होता है वो मूवमेंट करता है, वो हरकत में आता है, और वो कहते हैं ना कि हरकत में बरकत होती है। तो साइकिल चलाया करें, और आजकल के जो हालात वाकयात हैं, जो महंगाई है, जो भी कह लीजिए कि ट्रैफिक का बेहंगम शोर होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, और पेट्रोल तो आपको पता है कि आजकल थोड़ा महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। मैं देख रहा था कि इंस्टाग्राम पे आजकल लाहौर के हवाले से, लाहौर का एक इलाका है और वहाँ पर एक मूवमेंट जो है वो चल रही है, जिसमें रात को बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम जेंडर, चाहे वो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, मर्दोहजात हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी भी उम्र से, किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो लाहौरी हैं, वो क्या करते हैं कि वो रात को साइकिल्स पर निकलते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, और बेसिकली इस मूवमेंट का, इस क्या कहते हैं कि इस गैदरिंग का मकसद ये है कि साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, स्पेशली गुलबर्ग में, मैंने बजाते खुद इनको देखा है, और उसके बाद नाश्ते करने जाते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे मामला होते हैं, बहुत अच्छा लगता है इन नौजवानों को, इन तमाम जो साइकिलिंग करने वाले यंगस्टर्स हैं, इन सबको देख कर। वेल जनाब, आज हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली इसको टू व्हीलर कहते थे पहले, और कार्ल डेरिस के नाम से ये एक क्या कहते हैं कि इन्वेंटर थे, इसको ईजाद करने वाले, और ये जर्मनी से इनका ताल्लुक था, इन मौसूफ का, और इन्होंने सबसे पहले जो था दो पहियों वाली पहली एक मशीन कहते हैं ईजाद की थी, और इसके ज़रिए से कहा जाता है कि लकड़ी की साइकिल पहली बनाई गई थी, और इसमें पैडल भी नहीं होते थे, सिर्फ दो पहिए होते थे, और इनको चेन के ज़रिए से क्या किया जाता था, चलाया जाता था, हाथों का इस्तेमाल किया जाता था, और ये पहली जो कहते हैं कि अमली यानी कि प्रैक्टिकल साइकिल के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी थी। सो इसकी क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शोहरत के बाद, बहुत ज़्यादा इसका प्रमोट हो जाने के बाद, बाकायदा इस पर काम किया गया, और पहिए के ईजाद से ही आपको पता है कि सनती इनकलाब आया था, और स्पेशली पहिए की ईजाद जो है सबसे बड़ी जो मावन या मददगार साबित हुई थी ना, वो आपकी ट्रांसपोर्ट के हवाले से हुई थी, आपके जो भी कहते हैं कि ज़रिया आमदोरफ्त होता है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा इसने काम किया था। सो साइकिल भी इसी कहते हैं कि ईजाद का शाखसाना थी। तो इस हवाले से देखा भी जाता है, कहा भी जाता है कि जो साइकिल होती है वो किसी भी इंसान की पहली सवारी होती है, क्योंकि बचपन में किसी बच्चे को जब मसरूफ़ करना होता है या उसको बिज़ी करना होता है, उसको किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना होता है, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको साइकिल लेके देते हैं। मुझे खुद याद पड़ता है, मुझे कहा गया था कि अगर तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें साइकिल दे जो है वो दिलाई जाएगी, तो मैं फर्स्ट तो बहरहाल नहीं आया था, थर्ड आ गया था। तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कभी फर्स्ट नहीं आए, बहुत बार आए हैं, और अच्छी बात है कि आए हैं। तो अच्छी बात इससे बढ़ के ये थी कि मुझे मेरी जो पसंदीदा साइकिल थी वो दिला दी गई थी। तो आप भी मुझे बताएं कि आपका पहला तजुर्बा, आपका पहला इत्तेफाक क्या था,
क्या आपने कभी साइकिल चलाई? अच्छा, आपको पता है कि साइकिल के वाली जब बात की जाती है तो साइकिल को जो ख्वातीन की कह लीजिए, क्या कहते हैं इसको, एक मुश्किल सा वर्ड है कि हुकूक निस्वा के हवाले से, यानी कि वुमेन्स राइट के हवाले से जो पहली मूवमेंट्स आई थी ना, जो कुछ ऐसी आज़ादी की तहरीकें चली थी कि ख्वातीन को जो थी उनकी लेबर कम दी जाती थी, उनकी जो तनख्वाह है वो कम दी जाती थी, उनको वो हकूक़ हासिल नहीं थे, आज़ादी इजहार राय की, उनको वोट करने की, उनको सवारी करने की यानी कि साइकिल चलाने के। सो इस हवाले से पहली जो वेव आई थी, पहली तहरीक चली थी फेमिनिज्म के हवाले से, इसमें साइकिलिंग का जो साइकिल के इस्तेमाल का किरदार था ख्वातीन के लिए, इसका भी बहुत अहम रोल है। इस पर हम बात तो नहीं करेंगे, लेकिन बारहा ये बातें की जाती हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि ये सवारी सिर्फ एक सवारी नहीं है, इसकी बहुत सारी अलामत भी हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। और चाइना में तो बाकायदा एक पूरा टाउन जो है वो बनाया गया है जहाँ पर साइकिलिंग को प्रमोट किया जाता है, और इस हवाले से भी हम बात करेंगे। वेल, आपकी जो कॉल्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, सो आपके कॉल्स ऑफ कोर्स ली जाएंगी, लेकिन 10 बजे के बाद ली जाएंगी। वेल जनाब, आपने भी अपने जो साइकिलिंग के हवाले से अपने बचपन के, अपनी जवानी के, अपने जो भी तजुर्बात हैं वो शेयर करने हैं, और कोशिश ये करनी है कि आपने साइकिलिंग को प्रमोट करना है। मेरे पास खुद अभी तक एक साइकिल पड़ी है, फोनेक्स की साइकिल है, और मुझे याद पड़ता है कि वो भी मेरे वालिद साहब ने जो थी लेकर दी थी, और मैंने उस पर बहुत पैसा लगाया। मैं स्पेशल उसका काम करवाता था, उसके मगराज जो होते हैं वो लगवाता था उसको, उस पर हर महीने के बाद को नया पेंट करवाना और बच्चों को, लड़कों को ये बताना कि मैंने नई साइकिल ली है। तो ऐसा भी होता था। तो आपने मुझे बताना है कि आपके क्या तजुर्बात हैं, क्या क्या यादें हैं, और अगर आप अभी भी साइकिल चलाते हैं या आपने चलाना शुरू की है, तो आपने अपनी सेहत में, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी में, अपनी जो जहनी या जिस्मानी आपकी असाबी सलाहियतें हैं, इनमें आपने कोई बेहतरी महसूस की है या नहीं? अगर की है तो वो क्या आपने बेहतरी महसूस की, इस हवाले से आपने बात करनी है, आपने मुझे बताना है। वेल, अभी हम बढ़ते हैं आगे और एक और ट्रैक शामिल कर लेते हैं, एक ऐसा ही गाना, बिल्कुल जनाब, बयान बैंड, और क्या नाम है इनका, असफ़र हुसैन की आवाज़ में। असफ़र से मुझे याद आया कि रिसेंटली एक अलहमरा में कॉन्सर्ट हुआ था, और जहाँ पर असफ़र हुसैन ने यानी कि बयान बैंड ने परफॉर्म किया, वहाँ पर आतिफ असलम ने जो है वो सरप्राइज़ एंट्री दी थी। क्या ही बेहतरीन समां था, क्या ही बेहतरीन वाइब थी, और बहुत अच्छी बात है कि जब इस तरह से सीनियर आर्टिस्ट यानी कि लायक आतिफ असलम, जो आजकल के नौजवान यंगस्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, इनको तारीफ़ करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, इनकी प्रमोशन के लिए आते हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है और हौसला अफजाई की बात है। ऐसे तमाम तर मामलात को, ऐसी तमाम बातों को हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। वेल, बयान यानी कि असफर हुसैन की आवाज़ में इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। सॉन्ग कॉल्ड सफ़र, एंड यस, इफ़ यू नो द सॉन्ग, एंड देन सिंग along.

ओ सनम ओ जिगर, तुम कहो क्या ही खबर, कैसे कटी ये रातें हैं। कहते हैं सब मगर

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में देर पामन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी को तरजीही रास्ता करार देते हुए इसकी हिमायत के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। इटली ने आइंदा 3 बरसों के दौरान 10,500 पाकिस्तानी कारकुनों के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना उल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। खवातीन की सह मुल्की T20 सीरीज में आज डबलिन में पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
4: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.
5: हम से है रोशन ये जहां,
6: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: This is FM
2: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
1: This is FM
2: 101. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
0: सुनते रहिए एफएम 101. सुनते रहिए एफएम 101.

0: अच्छा यार, वैसे आपस की बात है कि ये अच्छा गाना गाती हैं, जितनी अच्छी दिखती हैं उतना अच्छा ये गा भी लेती हैं। पता नहीं क्यों लोग तंग करते हैं, मीम्स बनाते हैं। और मीम से मुझे याद आया कि लीजे शाह ने रिसेंटली इनके हवाले से इनकी मिमिक्री की थी, बल्कि मिमिक्री से ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा इनका फन ही उड़ाया था, मजाक ही उड़ाया था। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। वेल 10:18 हुए जाते हैं, एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और मुझे मुस्तफा कहते हैं। शो कॉल्ड सिटी वाइब्स और जनाब हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, ले लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम
0: जी, क्या हाल चाल है?
1: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बिल्कुल ठीक।
0: मुझे लगा बिल्कुल हाल है आपके। मैं बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। आप बताएं कैसी हैं?
1: जी मैं भी बहुत प्यारी, बहुत मासूम, क्यूट सी।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है। रिमशा क्या कहना चाहेंगी? शो सुना कि कोई नहीं, सोई रही हो?
1: नहीं मैं जाग रही हूँ।
0: अच्छा,
1: जाग रही हूँ मैं।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है। रिमशा क्या कहना चाहोगी? कुछ सवाल मैंने आपसे किए हैं। सुबह उठ के क्या करती हो सबसे पहले?
1: पहले मैं साइकिल का बताऊंगी।
0: अच्छा साइकिल का बताऊंगी। साइकिल चलाती हो?
1: साइकिल मेरे पास है। मेरे आपने जो बात की थी ना कि आप फास्ट आएंगे, मैं अभी मेरे बाबा ने भी कहा था कि तुम फास्ट आओगी ना तो मैं तुम्हें साइकिल लेके दूंगा।
0: अरे क्या बात।
1: और बाबा ने मुझे साइकिल लेके दी थी और वो साइकिल जो है अब तक मेरे पास है। ये है कि साइकिल जो है ना छोटी होगी और मैं भरी हो चुकी हूँ।
0: साइकिल छोटी होगी, मैं बड़ी होंगी। अच्छा रिमशा, आपने नोटिस किया है कि शायद मुझे ही ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें छोटी होती जा रही हैं आजकल ना, लाइक जो टॉफीज़ होती हैं, बबल गम्स होती हैं, जो ये जो क्या कहते हैं साशी
1: होती है,
0: या मुझे लगता है कि हम बड़े हो गए हैं शायद इस वजह से इनको श्रिंक भी किया गया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप देखें ना, अगर इनको जो हम 10 रुपए की पहले खाया करते थे उसमें कितनी ज्यादा निकलती थी, आप वही देखें कि उसमें सिर्फ 3-4 दाने निकलते होंगे उससे इंसान बच्चे
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे
0: ही है। यकीन करें, मैं 10 रुपए की मैं कोई चिप्स ले लेता हूँ ना तो उसमें से 5 चिप्स वो निकलते थे। पुरानी बात करूँ अब तो 10 की मिलती भी नहीं है। नहीं मिलती ना
1: वो जो पापड़ हम बच्चे 5 रुपए का खा लेते थे, वो पापड़ भी 20 और 10 का।
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हाँ बहुत महंगाई। अच्छा साइकिल का बता रही थी। हाँ
1: साइकिल का ना भाई, मैंने ना वो जो शुरू में जो बच्चे साइडों पे 2 पहिए लगाते हैं।
0: अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ हाँ साइडों में लगाते हैं।
1: पहियों पे पहले कोशिश की, ठीक है। फिर
0: मैंने भी लगाए थे पहले, साथ मिलते हैं साइकिल के, साथ डिफॉल्ट होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल साइडों पे दो पहिए।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ।
1: फिर मैंने उसको एक को हटाया, फिर एक को उसके साथ एक को चलाना स्टार्ट किया। फिर इस तरह मेरे अंदर टैलेंट आ गया कि मैंने चलाना सीख ली और फिर मैं दूसरे बच्चों के साथ रेस लगाती थी।
0: अच्छा रिमशा बताओ, सबसे पहले जब आप बगैर किसी सपोर्ट के जो साइड स्पोर्ट्स होती हैं टायरों की, जब आप बैलेंस करना सीख जाते हैं और आप पैडल आते हैं, साइकिल चलती जाती है, क्या फीलिंग्स होती हैं आपको याद है?
1: उस टाइम फीलिंग भाई एक अलग सी होती है, हम भी हवा में उड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी।
1: और उस टाइम एक अलग सी ना बच्चों की चाह होती है कि ना, मैंने अपने अंदर नोट किया था जब मैं साइकिल चलाना स्टार्ट हुई थी ना।
0: अच्छा।
1: तो कसम से आप यकीन करिए कि बच्चे के अंदर एक अलग सी चाह होती है, चीज लेने जानी, साइकिल पे जाना,
0: साइकिल पे जाना,
1: क्यों ना हो।
0: और इस बात पे डान भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल कहते हर, मेरी मम्मा कहती है हर वेले तू साइकिल निकाल के बैठ जाती है, कहती दुकान घर के करीब है, फिर भी तुम्हें साइकिल पे जाना पड़ता है। मैं कहा मम्मा साइकिल पे जाऊंगी ना।
0: अब इनको कौन समझाए, काम करने का हमें शौक नहीं होता, हमने काम करना भी है, वो भी हम काम कर लेते थे जो हमें करना नहीं आता, दिल ही नहीं चाहता करने का, लेकिन साइकिल के लिए हम जाते थे, ऐसा ही है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक दफा ऐसा हुआ था कि ना मेरी मम्मा ने कहा था चलो ठीक है तुम्हें साइकिल चलाने का इतना ही शौक है तो मुझे दही ला के दो। तो मैं साइकिल से दही लेने गई थी और पहली बार मैंने वो सड़क पे साइकिल चलाई थी, वरना मैं गली में चलाती।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं ऐसी दही लेने गया और मैं साइकिल दुकान पे छोड़ आया था, मुझे लगा मैं पैदल आया हूँ, मैं घर ऐसे ही आ गया, वापस गया तो मिल गई थी, शुक्र है वैसे। ऐसा होता है,
1: एक अलग से भाई मजा आता है, उसमें से गिरने का भी एक अलग ही मजा होता है।
0: चलिए आज साइकिलिंग का जो आदमी। अच्छा अभी भी चलाती हो, छोड़ दी है?
1: बिल्कुल भी नहीं चलाती अब तो।
0: नहीं, चला नहीं, चला नहीं चाहिए यार, अच्छी
1: बात है। एक्सपीरियंस किया है और बाइक का भी किया हुआ है।
0: चलो अच्छी बात है, सही है, सही है रिमशा।
1: ये है कि भाई अब ना अब साइकिल जो है ना छोटी हो गई है,
0: बड़ी हो गई है। हाँ लेकिन नहीं कोई मसला नहीं है, आप साइकिल बड़ी ले लो, इसमें ऐसी परेशानी वाली क्या बात है।
1: कभी कभी तो मुझे ना अजीब सी लड़क उठती है ना भाई, मैं साइकिल पे बैठ जाती हूँ चलाने की कोशिश करती हूँ, मैंने कहा हाय साइकिल पे पाँव ही नहीं लग रहे।
0: होता है, होता है, सही है। अच्छा क्या करती हो सबसे पहले सुबह उठ के?
1: सुबह उठ के साइकिल चलाती हो?
0: अच्छा हाँ हाँ
1: भाई मेरी रूटीन ऐसी है कि ना जब मैं सुबह के टाइम उठती हूँ, हाँ सबको आदत होती है मोबाइल देखती है वो सबसे पहले, हाँ मोबाइल मेरे पास होता है, मोबाइल से मैं अगर मैं मोबाइल ऑन करती हूँ तो मैं टाइम देखने के लिए सिर्फ उसे ऑन करती हूँ, लेकिन बार दफे ऐसा भी होता है कि कभी कभार टाइम देखने के चक्कर में ए टू जेड थक हो जाता है, पूरा मुकम्मल तोड़ तो
0: अच्छा सही
1: मोबाइल देखने के टाइम देखने के बाद मैं ऐसा करती हूँ कि मैं फ्रेश होती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा सबसे पहले मेरी रूटीन यही होती है कि मैं पानी पीऊँ क्योंकि गला खुश्क होता है, खाना खाने से पहले मैं पानी पीती हूँ और उसके बाद ना भाई सुबह सुबह की अगर सुबह सुबह कोई उठा हो फजर के टाइम या यही रूटीन 6 बजे के करीब, तो आप यकीन करें जब सुबह छत पर आता है तो उस टाइम जो परिंदे बोल रहे होते हैं, बुलबुल बोल रही होती है, उसकी आवाज और सुबह की जो हवा होती है वो इतना एक अलग से मजा होता है।
0: चलो ठीक हो गया रिमशा, बहुत अच्छी आपने जो है ना आपने अपने तजुर्बात बताए, ठीक है
1: ख्वाबों के बारे में भी बताऊंगी कि जो ख्वाब की बात कर रहे थे,
0: हाँ
1: ख्वाब का ये है कि ख्वाब वो देखो जो मुकम्मल भी हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ख्वाब देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे जो है ना मुकम्मल कर देते हैं।
0: अरे क्या बात है, चलो ठीक हो गया रिमशा, बहुत शुक्रिया,
1: सभी सुनने वालों को सलाम,
0: वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। 04221100101 आपकी लाइव कॉल्स जो हैं वो इंटरटेन की जा रही है, कुछ देर तक हम कॉल्स लेते हैं देन उसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: वालेकुम अस्सलाम मुस्तफा भाई, क्या हाल है?
0: सर अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैं अदरीस बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: कौन बात कर रहे हैं?
2: अदरीस
0: बात कर रहे हैं, बात करवा दें काके की, बात करवा दें, वो उसका दिल कर रहा है
2: जी, बेटी है मेरी,
0: जी जी करवाएं करवाएं, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों
2: नहीं, ये ना करो।
0: हेलो,
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बच्चे क्या हाल हैं? ठीक हो, क्या कर रही हो? अरे बोतल पी के हटी हो, अच्छा आपको नींद नहीं है, आप क्यों जाग रही हो सुबह सुबह, छुट्टियां इस वजह से?
3: अभी अभी आए हैं।
0: अच्छा अभी अभी आए हैं, सही है सही है, आपको छुट्टियां क्यों नहीं हुई, आपका स्कूल कौन सा है मुझे बताएं जरा ना। अच्छा ठीक है, अच्छा आपका नाम क्या है बच्चे? उरूज फातिमा, अरे माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। उरूज क्या करती हो आप स्टडीज के अलावा, तंग करती हो पापा को?
3: हाँ जी,
0: हाँ जी, मामा को भी तंग करती, चलें बहुत अच्छी बात है, सही है, ठीक है पापा को दो फोन दो, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो। हाँ ठीक है ठीक है, मैं सबसे ज्यादा चलाता हूँ, ओके थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, जी सर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका,
0: अरे बहुत शुक्रिया सर,
2: पुरानी यादें ताज़ा करती
0: है। हाँ जी हाँ जी,
2: हम लोग जब साइकिल चलाते थे,
0: हाँ जी,
2: तो हमारा तो सफर ही बहुत लंबे,
0: हाँ सही,
2: और एक और हमारा एक और कोई भी साइकिल वाला पास से गुजरता था उसको थोड़ा सा छेड़ के ना भगाते थे बहुत तेज,
0: अरे
2: तो
0: क्या
2: जब देखते थे कि अब बस हो गई है, तब किसी न किसी गाड़ी को या किसी ट्राली वाले को हाथ डाल के,
0: हाँ हाँ ऐसे खतरनाक काम भी किए हैं, मैं चिंची को हाथ डाल के मैं बड़ी बड़ी दूर चले जाता था, जो कि नहीं करने चाहिए, बहुत बुरी बात है, अनसेफ है, इंतहाई अनसेफ,
2: उसको कर ट्राली है जो थी ना आप की,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: अब सही, तो उनका टाइमिंग चेंज हो गया, रात को ज्यादा चलती
0: है, सही सही,
2: दिन में भी
0: चले सर,
2: दिन में भी,
0: अच्छा छोड़े सर, मुझे बताएं सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं, कोई काम करते हैं, पानी शानी पीते हैं, क्या करते हैं आप?
2: सबसे पहले टाइम देखता हूँ भाई।
0: अच्छा टाइम देखते हैं, सही सही, अच्छा
2: मुझे मुझे नजर नहीं आता तो मैं मोबाइल चला नहीं सकता।
0: अच्छा चले ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है,
2: फिर मैं पानी पीता हूँ।
0: अच्छा ठीक है, अरे सर ठीक हो गया, चले थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके और बच्ची से भी,
2: बहुत अच्छा आपका।
0: वालेकुम अस्सलाम, ओके सर ओके, अल्लाह हाफिज। जी السلام علیکم. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے؟ کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ الحمد للہ مالا خیل بات کر رہے ہیں. الحمد للہ، کیا کہنا چاہیں گے؟
2: بالکل آپ کی شو بھی ہم سن رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے.
0: اچھا، ارے بہت، ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. الحمد للہ، شو سنا کہ کوئی نہیں؟
2: بس سنا تھا.
0: اچھا، میں نے آپ سے سوال کیا ہے، سائیکل چلاتے ہو یا نہیں چلاتے؟ کیا چلاتے ہو؟
2: موٹر سائیکل، میں بائک چلاتا ہوں.
0: ارے بائک چلاتے ہیں، اچھا. الحمد للہ، مجھے بتاؤ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہو؟
2: میں سب سے پہلے صبح اٹھ جاتا ہوں، وہ تو سب کو پتہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں.
0: نماز پڑھتے ہیں،
2: صحیح. پھر میں موبائل کو دیکھ لیتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے.
0: اچھا، صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا. چلو الحمدللہ، اور کچھ کہنا چاہو گے؟
2: بس جو بھی ماشاءاللہ زبردست، آپ کا ہمیشہ خوش رکھے. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، جتنا ہو سکے صبح وقت اٹھ جانا چاہیے.
0: ہاں جی،
2: پھر کام پہ ہم لوگ جلدی پائے جائے گا، پھر ہم لوگ جلدی پاری ہو گئے. جب ہم لوگ لیٹ اٹھے گا
0: جی جی جی،
2: کام بھی
0: بالکل ایسے ہی ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے الحمد للہ، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟
2: اور ابھی میں نے آپ کو فیس بک پہ کمنٹ بھی کیا.
0: ہاں میں پڑھتا ہوں، وہ بھی میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھو. اوکے، اللہ حافظ. بالکل جناب، اگر آپ بھی فیس بک پر مجھ تک اپنی رسائی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم. ایف ایم 101 لاہور کا جو فیس بک فین پیج ہے، یہاں پر آنے کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
4: وعلیکم السلام، کی حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک جی؟
0: سر بالکل ٹھیک ٹھاک. ہاں تھی سناؤ، خیریت نالو ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیا بات ہے سر، مالک آپ کو سلامت رکھے. شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں؟
4: جی جی بالکل جی، اور نال میرا ککڑ بھی بول رہے ہیں، میری بھی گل
0: کرا دیو سر، گل کرا دیو. اچھا تے نال ہی جڑا انہاں دا کھڈا ہے گا سی، تے میں اوتھے جا کے اپنی کلاس لے رہے ہیں، تے منٹ بعد جڑا ککڑ ہے نا، اونوں اسے ٹائم یاد ہے کہ میں بانگا دینیاں نے، زیادہ دینیاں نے. تے اس تو بعد جڑا ساڈے سر تنگ آ گئے، اوناں نوں لگیا کہ میں اپنے منہ آواز کڈ کے میں کوئی انہاں دا چیزا لے رہے ہاں، خدا نہ خواستہ. تے اوہ چنگا بھلا جڑا سی نا، میرے واسطے ایشو بن گیا. تے مینوں کالج بلایا گیا سی کہ اینا شرارتی بچہ منہ نال آوازاں کڈدا ہے، کلاس چ سارے تنگ کردا ہے، تے انج وی ہو جاندا ہے. ویسے میں تانوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تسی بھی کتے منہ نال کوئی آوازاں تے نہیں کڈ رہے. ہاں جی، اوکے اوکے. آئی تھنک لائن کا کوئی ایشو ہے، اور ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. اوکے جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا بیلنس ہے گا سی، ہے گا سی. اچھا جی شہزاد صاحب، کی کہنا چاہو گے مزید؟ میں سوال کیتا ہے، کوئی سنیا کہ کوئی نہ؟
4: سارے سنے نے ماشاء اللہ. سائیکل دے بارے بھی تسی کہہ رہے ہو نا؟
0: ہاں جی ہاں جی.
4: تے صبح تم تو پہلے اٹھ کے تے اپنا اللہ نو یاد کری دا.
0: بالکل.
4: اس تو بعد پھر ہڈ جو لا لی دا.
0: کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. چلیں بڑی اچھی عادت ہے، اچھی گل ہے. ہاں موبائل دے وچ تے نہیں نا صبح اٹھدے ہیں وڑ جاندے. ہاں جی ہاں جی.
4: تے سائیکل دے بارے گل کر رہے ہو تے میں پہلی واری سائیکل دا قسطہ تے لئی سی پیکو کمپنی دی.
0: اچھا اچھا اچھا، او جڑی او بابا سائیکل جنوں کہی دے. ہاں جی بالکل ایسا رہی ہے سر. کیا
4: ادھر میری یاد تازہ ہو گئی ہے، میرے دادا جان کو 24 انچ دی سائیکل بٹے،
0: مطلب شہر پار چلے
4: سر،
0: یقین کرو میں ایسے ایسے بزرگاں نو جاننا سائیکل تے کتے کتے چلے جاندے نے.

0: पहिए के कोई नहीं
1: है
0: ये पहिए के वेच पूछ देती
1: नहीं ये और कोई नहीं कई और सवाल बढ़िया साइकिल आई है पर हम कोई नहीं है।
0: अच्छा अच्छा चलो सही
1: बड़ा जर मैं साइकिल से सौदा ले आंदा मंडी और दो दो चार चार मान वजन से
0: ले क्या बात है
1: हुन तो भागी एक ना
0: 50 किलो का टोला नहीं आटे का लिया आंदा जांदा मैं कहना मैं एक दो बारी गया पानी आजकल ना जितानू पता है कि पानी आजकल घर वाले सारे ना फिल्टर दे पींदे ने अगली मलेच ना फिल्टर लगी होंदे ने ते पानी दी बोतल ले आन लगी मैं कहना यकीनन मौत पैंदी है पता नहीं की जड़ा ना चुकी नहीं जांदी।
1: बर्फी
0: खा ली हां बड़ी मेहरबानी सर दुआवां च याद रखिया करो बड़ी मेहरबानी चलो सर अपना ख्याल रखना बहुत शुक्रिया अच्छा लगा तुहाडे नाल गल करके ओके सर अल्लाह हाफिज 04221100011 एक आधे और हम ले लेते हैं कॉल देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
2: वालेकुम
0: अस्सलाम
2: मैं फरी से
0: बुजिल हो से बात कर रही हूं। अरे फरी मैम आ गई हैं मैं बहुत अच्छा मैम आप कैसी हैं खैरियत से हैं?
2: आपने गोश्त वगैरह नहीं खाया?
0: अब मैंने बहुत खाया है बल्कि मैं हो ही ना जाऊं ऐसे
2: हो जाए
0: तो नहीं नहीं नहीं शादी के लिए कौन मोटा होता है? शादी के लिए तो मैंने लोगों को दौड़े लगाते देखा है
2: आधी चम्मच तो चावल खाते हैं आप।
0: अच्छा अच्छा सही है
2: ठीक है टॉपिक पे बात करते हैं।
0: जी जी हाँ जी
2: तो मैं वजू करती हूँ वजू करके आधे घंटे का ना दुरुस्ती पढ़ती हूँ इतना पढ़ लो कोई भी दुरुस्ती पढ़ो
0: अरे क्या बात है
2: मंजिल पढ़ती हूँ याद है पुराने पाक की मंजिल थी वो पढ़ती हूँ उसके बाद सूरत यासीन पढ़ के सब के लिए अपने मुल्क के लिए अपने घर वालों के लिए सब हाँ के लिए दुआ मांगती हूँ।
0: अरे क्या बात है क्या बात है
2: किचन में चले जाते हैं किचन में जो होता है वो तो आपको पता है नाश्ता कुकिंग सारा कुछ उधर से
0: हाँ जी, हाँ जी हाँ जी सही
2: तो
0: सही
2: साइकिल भी हमारे घर में वो फिल्टर का पानी लाने के लिए ना अच्छा, रखी हुई है
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैम कभी बचपन में आपने इत्तेफाक हुआ है कभी चलाई है साइकिल आती है आपको?
2: मैं बहुत साइकिल चलाती खड़ी
0: हुई अरे क्या बात है क्या बात
2: फिट रहता है के तौर पे ना खड़ी साइकिल चलाती
0: थी सही सही मैं आपको बताता हूँ छोटे होते हमारी नानी घर ना छत के ऊपर साइकिल हमारे नाना बो की खड़ी होती थी और वो खड़ी हुई साइकिल चलाने का जो मजा ना वो चला के चलाने वाला मजा नहीं है ऐसे ही है ना हाँ
2: अच्छा तो लेडीज के लिए तो औरतें जो बच्ची है ना वो तो खड़ी हुई साइकिल चलाती है ना
0: हाँ जी जी जी जी जी जी बिल्कुल ऐसे ही है
2: स्कूल टाइम तो ये चलाते हैं गाड़ी भी चलानी आती है ऐसी तो कोई बात नहीं है।
0: हाँ जी हाँ जी सही
2: बाहर रह के आई ना चार्जर में गाड़ी भी चलाती थी।
0: अरे क्या बात है क्या बात
2: 13-16 साल चार्जर रह के दुबई।
0: अरे माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा
2: अभी पकड़ती थी समुंदर में
0: हाँ
2: तो अभी कार लंबी हो जाएगी तो
0: ठीक है मछलियों वाला जो वाक्य है ना जो तरीका का आ रहा है आपसे पूछेंगे कभी सही है चलिए ठीक हो गया अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ सलामत रहें आप। Well, जनाब 10:41 हुए चाहते हैं और अभी हम एक ट्रैक शामिल करते हैं देन उसके बाद क्या करेंगे आपके साथ हम बात करेंगे और अपने मौजूदात के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे कि अपने दिमाग को किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है दोबारा से किस तरह से अपने दिमाग को अपने सोचने समझने की सलाहियत को अपनी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है कहाँ कैसे लाया जा सकता है मैं क्या कह रहा हूँ। वेल अब ये ट्रैक इन्जॉय करते हैं देन उसके बाद वापस आते हैं सो स्टे ट्यून्ड स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर आसिम अज़हर की आवाज़ में कहते हैं हमरा
3: Oh, you

0: ओके जना, वेलकम बैक वंस अगेन। और चले, अच्छा मैं तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभी एक साहब आए थे और इंतहाए गुस्से में थे, पता नहीं क्या मामला हुआ। वो कह रहे हैं कि मैंने उनकी कॉल जो है वो कट की है, दो बार कट की है, जबकि मुझे पता ही नहीं है। सो लाइन में इशू आ जाता है और कई बार ऐसा होता है कि वो कॉल करने वाले को ये लगता है कि यहाँ पे जो आज जो बंदा बैठा है, जो होस्ट बैठा है, उसने जानबूझ के काटी है। सर, हमें आपसे किसी किस्म का कोई वो नहीं है, कोई वैध नहीं है या कोई वो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम क्यों काटेंगे आपकी कॉल। सो चलें ठीक है, आपके सवाब दीदे आपको जो लगता है, लेकिन मैंने अपना जो मौकफ़ था, अपना जो यहाँ का मामला था, वो आपके सामने रखना था, रख दिया। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, जानते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, ओखी 04-2111-0011। अभी अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे और कुछ मसले मसाइल थे, सेहत के इशूज़ थे, बता रहे थे। सो आप तमाम समातों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप इनके लिए ख़ुसूसी दवा जो है वो कीजिएगा। अल्लाह पाक इनको सलामत रखिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से। जी वालेकुम अस्सलाम, आप मोमो बात कर रही हैं। इसमें हंसने वाली इतना हंसने वाली क्या बात है। हाँ क्या बोला आपने, दोबारा ऊंची बोलिएगा। मैं आपको पहचानूं, आप रक्षिंदा बात कर रही हैं। अच्छा, फरजाना बात कर रही हैं। आसिम सर बात कर बता दे नाम बता दे, क्या हो गया। हम ना बात कर रही हैं, हम ना ना अब याद रहेगा, हम ना फ्रॉम जर्मनी से बात करी। अरे क्या बात है वैसे। जी हम ना क्या कहना चाहेंगी।
1: मैं कहना चाहूंगी कि मैं सुबह उठते ही ना पहले किचन में जाती हूँ, मम्मा को खूब क्लीन करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: डाइवर लेती हूँ और मम्मा फिर उसकी सफाई निकालती है, कितनी दाग हो जाए।
0: अच्छा सही है, मुझे कक समझ नहीं आई।
1: मम्मा को रोजाना किचन में जाकर काम करना।
0: अच्छा ठीक है, अच्छा अभी आप मामा से छुप के बात कर रही हो ना, सही से बताओ। इसलिए इतनी आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही है, सही। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा अपार्ट फ्रॉम जोक, मतलब आप मजाक कर रही हैं, मामा को तंग करती हैं, चलें ठीक है, ये भी एक नोक झोंक चलती रहती है। मुझे ये बताएं कि साइकिल आपको आती है चलानी, या साइकिलों का जो है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है साइकिल्स का।
1: हम ना पाकिस्तान आए हुए तो मैं मेरी नानों के घर गाँव में है, तो मैंने साइकिल ली, मैंने कहा चलो नानों के घर जाके चलाऊंगी। अच्छा। गाँव ना कि खेत में मजा आता था, तो मैं साइकिल चला रही थी, मुझे ब्रेक लगानी आई, मैंने साइकिल मेरे सामने ना दो खातून जा रही थी।
0: अच्छा दो खातून जा रही थी, दो खवातीन जा रही थी, कहो दो खवातीन जा रही थी,
1: दो खवातीन जा रही थी, एक के सर पे ना घड़ा था।
0: अच्छा
1: पानी वाला नहीं होता वो वाला।
0: हाँ जी,
1: मेरे मुझसे ना साइकिल की ब्रेक नहीं लगी, मैंने छलांग लगा दी।
0: ओहो अच्छा,
1: मैं छुप गई, वो घास थी ना, तो मैं
0: घास थी। अच्छा हाँ
1: हाँ, उसके पीछे छुप गई और जो साइकिल ना वो घर के ऊपर जाके लगी।
0: ओहो, कोई बचत होगी कि कोई नहीं।
1: बचत तो नहीं हुई, खातून गिर पड़ी नीचे और घर शिकायत पहुंच गई।
0: हाँ
1: वो
0: हुई
1: घर वालों से, मम्मा ने वो बाहर मुझे नहीं जाने देते।
0: चले अच्छी बात, अच्छी बात ने नहीं जाने देते आप, जो चले शुक्र है आगे गड़ा था, कोई बंदा नहीं था। सही सही, चले ठीक हो गया। हम ना और कुछ कहना चाहोगी। अच्छा चलो, अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से। हेलो हेलो, ओके जी आवाज आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से।
2: हेलो
0: जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं कहाँ से।
2: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: बिस्मा बात कर रही हैं लाहौर से। बिस्मा थोड़ा सा ऊंची बोलें कि आप भी आप मामा से छुप के बात कर रही हैं। हाँ थोड़ा ऊंचा बोलो ना।
2: नहीं, मैं छुप के बात नहीं कर रही। अच्छा। मैं अभी सोई उठ के बात कर रही हूँ।
0: अरे अच्छा अच्छा अच्छा,
2: अभी ट्यून किया है एफएम और आपका शो था।
0: सही। अच्छा बिस्मा, उठ के सबसे पहला काम, चलो आज तो आपने कॉल कर लिया रेडियो पे, रेडियो आपने सुना है, सबसे पहला काम क्या होता है सोकर उठने के बाद?
2: सोकर उठने के बाद
0: मोबाइल देखती हो, स्क्रॉल करती हो, क्या करती हो?
2: मोबाइल देखती हूँ, देखती हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया, मैं रात को मैंने उसको मैसेज किया ना, तो मैं देख के उसको रिप्लाई आया कि नहीं।
0: ये भी सही है वैसे, रात को मैसेज करके सो जाओ तो सुबह जो है अगले को रिप्लाई कर दो, सही है।
2: हाँ नहीं, सुबह उठ के देखो उसका रिप्लाई आया कि नहीं।
0: नहीं आया,
2: जब आया हो तो अच्छा लगता है, नहीं आया हो तो फिर होता है कि यार इसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक।
0: सही,
2: तो फिर
0: सही।
2: मैं कॉल करती हूँ उसको डायरेक्ट कि तुम्हारा रिप्लाई किधर है। तो अक्सर मैं उसको कॉल करके कहती हूँ, मतलब कॉल करती हूँ तो वो परेशान हो जाती है, पता नहीं क्या बात है ये कॉल कर रही है। जब वो कॉल पिक करती है तो मैं कहती हूँ तुम्हारा रिप्लाई क्यों नहीं आया,
0: अच्छा अच्छा अच्छा
2: मुझे रिप्लाई करो, मैं ये बताने के लिए कॉल करती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ। कमाल करती हो तुम।
0: सही है, सही।
2: और इसके अलावा क्या टॉपिक है आपका? ये साइकिल की बात।
0: और इसके अलावा टॉपिक ये है सुबह जल्दी उठना चाहिए। अच्छा चलो, और कुछ कहना चाहोगी क्या? बिस्मा नाम है ना आपका?
2: अब आपने याद रख लिया?
0: हाँ चलो ठीक है, याद रखो।
2: अभी का नाम आप पहचान लेते हैं, उनकी आवाज भी इतनी डिफरेंट है, पता चल जाता। अभी मैंने जब मैं सुन रही थी ना तब परी आपकी कॉल कर रही थी।
0: हाँ जी, वो माशाल्लाह सीनियर कॉलर है, उनका नाम याद हो जाता है। आप आई थिंक आप फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
2: जी मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। और आपका नाम क्या है, मुझे नहीं समझ।
0: मेरा नाम ज़िया अंजुम है।
2: क्या?
0: हाँ ज़िया, ज़िया अंजुम।
2: आप ज़िया अंजुम है?
0: हाँ जी, क्या हो गया?
2: नहीं झूठ ना बोले आप।
0: मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा। ठीक है चले बिस्मा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है,
2: आपकी आवाज़ अच्छी है मुस्तफ़ा भाई,
0: बड़ी मेहरबानी। ठीक है, ओके ओके ओके।
2: आप कब कब शो करते हैं, एक मिनट?
0: हाँ जी हाँ जी, मैं अभी शो कर रहा हूँ ना, मैं अब अगले बुध करूँगा।
2: अच्छा नेक्स्ट वेडनेसडे करेंगे।
0: जी जी जी।
2: 10 से
0: 10 से 11, 9 से 11 मुझे बुला दी। चलो ठीक है बिस्मा, अपना ख्याल रखना। ओके
2: थैंक यू,
0: यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़। चलिए जनाब, अभी कॉलर्स का जो सिलसिला है थोड़ा हम मौखर करते हैं, और तमाम जो कॉल करने वाले सामीन हैं इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आप सब्र कर लें। और अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, मुद्दा था कि हमने अपने दिमागों का मोबाइल इस्तेमाल करके या कुछ भी ऐसे काम करके डोपामिन का जो हिट है वो ले लेके ना हमने इसका बेड़ा गर्क कर लिया, इसकी हमने वायरिंग जो है वो ख़राब कर ली है। सो अगर हम दोबारा से अपने ब्रेन को रिवाइव करना चाहते हैं, दोबारा से अपने सोचने समझने की, फ़ोकस करने की सलाहियत जो है इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमने कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमने अपने डेली लाइफ में अपनाना है। सो बिल्कुल मैं मुख्तसर करना चाहूँगा, तफसीलात में नहीं जाऊँगा कि वो क्या क्या हैं और उनमें क्या क्या आपको करना चाहिए, उनके क्या फ़वाद हैं। सिंपली बल्कि मैं आपको इनके कुछ नाम बता दूंगा, ये आपने करना है, करके देखना है, क्योंकि आजकल मैं इनमें से कुछ मामला, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं वो कर रहा हूँ। सो आपको महसूस हो भी रहा होगा कि पहले मैं कहाँ से कहाँ चला जाता था, यानी कि बात करते करते। सो ऐसा होता है, इंसान का जो दिमाग है वो आई थिंक ये इसमें जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले, नफ्सियात को समझने वाले तमाम सामीन उनको पता होगा कि ADHD क्या होती है, कि इसमें आपकी जो अटेंशन, जो आपकी फोकस की सलाहियत होती है, किसी चीज़ पर तवज्जा मरकूज़ करने की सलाहियत जो है वो कहीं ना कहीं आपकी वीक पड़ जाती है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी एक कह लीजिए कि पैदाइशी मामलात भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमने अपने दिमाग को बहुत मफलूज कर लिया होता है, अपने आप को अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, वो चाहे मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा TV देखना है, मूवीज़ देखना है, स्क्रीन के सामने बैठे रहना है, या और बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे बुरे बुरे मामलात हैं। तो जनाब आपने क्या करना है कि बजाय कुछ ऐसे रील्स देखने के और फजूल जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करने के, कंटेंट आप देखें ठीक है और लिमिटेड आप देखें, लेकिन आप अच्छा अच्छा देखें। सबसे पहले आप कोशिश ये कीजिए कि आप जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो आप देखें, बजाय लंबी लंबी मूवीज़ देखने के। मूवीज़ देखना भी अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा आप जो जो रील्स होती हैं, चाहे वो डांस की हैं, आजकल बहुत सारा जो है ना वो मेल गेज इकोनॉमी के हवाले से हम बात करेंगे कि जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो चलें ठीक है उनका अपना एक्ट है, उनका अपना अमल है, लेकिन उसका नुकसान किस तरह से एक आम इंसान को, एक आम लेमैन को हो रहा है, और किस तरह से ये जो इंडस्ट्री है यानी कि मेल गेज इकोनॉमी क्या होती है, इस पर हम कभी बात करेंगे। तो कोशिश ये करें कि आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, आपने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने हैं, और जैसे खातीन हैं वो अपने कुकिंग को इन्हेंस करने के हवाले से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो यूट्यूब पर देख सकती हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं चाहे वो नेचर के हवाले से हैं, आपके मौसम के हवाले से हैं, कुछ नया सीखने के हवाले से हैं, सो इनके हवाले से अगर आप वीडियोज़ देखें कुछ लर्न करने के हवाले से, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और इस तरह से आपके दिमाग को जो है ना वो एक तहरीक ऐसी मिलती है कि वो सुस्त नहीं होता बल्कि ज़्यादा मोटिवेट होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। और जब आप देखते हैं ना कि कुछ आप अच्छा करते हुए किसी को देखते हैं, तो खुद ब खुद आपने मोटिवेशन आती है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इस तरह से आप भी प्रैक्टिकली जो है ना ना कि सिर्फ ख्वाब देखते रहते हैं बल्कि अमली तौर पर जो है ना आप में वो तहरीक आती है, और आप अपने आप को अमली मैदान में भी जो है ना वो ले जाते हैं। तो इसके अलावा एक और काम है, वो आपने क्या करना है कि सबको बोलने का शौक़ होता है, और हर इंसान ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करे, ज़्यादा से ज़्यादा बोले, और उसको सुना जाए, उसको समझा जाए, उसकी नफ्सियात को, उसकी आवाज़ को, उसकी फीलिंग्स पर तवज्जो जो है वो दी जाए। लेकिन आपको पता है कि अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सोचने समझने की, फोकस करने की जो मुशाहिदाती सलाहियतें होती हैं, तजुर्बा हासिल करने की सलाहियतें होती हैं, इनको बेहतर बनाने के हवाले से सबसे बेहतर या सबसे अच्छा काम आपको पता क्या है, वो बोलना नहीं है, वो सुनना है, और गहराई के साथ सुनना जो है ना वो सबसे अच्छा और बेहतरीन काम है। तो कोशिश ये कीजिए कि कोई भी इंसान, कोई भी फ़र्द आपसे बात कर रहा है, और अगर आपको वो लगता है प्रोडक्टिव बात है, चाहे वो तनकीदी बात है, चाहे वो किसी भी तरह की बात है और आपके सुनने लायक है, तो कोशिश ये कीजिए कि आपने बात को सुनने के लिए सुनना है, ना कि जवाब देने के लिए सुनना है। सो ऐसा होता है, और मैं यहाँ पे माइक पे बैठा मैं ये चीज़ें फेस करता रहता हूँ, और हमें पता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम भी अगले को जवाब देने के लिए अपनी बात कहते हैं, किसी को सुनते नहीं हैं। और आपको पता है कि अच्छा बोलने का राज अच्छा सुनना है, तो इस हवाले से हमने फोकस करना है। ज़्यादा अच्छा हम सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा बोलने के हवाले से, अच्छा सोचने के हवाले से जो हमारी सोचने समझने की सलाहियत है ना वो बेहतर होगी। तो इसके अलावा जो है आप अपने दिमाग को किसी ऐसी एक्टिविटी में मशगूल कर सकते हैं, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो किताबें पढ़ना है, चाहे वो रीडिंग है, चाहे गार्डनिंग है, वॉक करना है, किसी अच्छी कहते हैं कि कोई ऐसी डिवाइस है उससे खेलना है, इस्तेमाल करना है, एक्सरसाइज करना है। सो इसके अलावा आप जो म्यूज़ियम होते हैं वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। कभी आपको इत्तेफाक़ हुआ है, कभी आप किसी ऐसे म्यूज़ियम गए हैं जहाँ पर जाने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी, आपका जो तजस्सुस है वो बढ़ गया हो। सो जब दिमाग को क्यूरियोसिटी के हवाले से, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के हवाले से मोटिवेशन मिलती है, ये तहरीक मिलती है ना, तो इसके ज़रिए से भी क्या होता है कि आपके दिमाग में जितनी नेगेटिविटी होती है, जितनी बुरी सोचें होती हैं, या आपका स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या आप लम्हा मौजूद को लेकर बहुत फिक्रमंद है, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हैं, तो आप किसी पुरानी तारीखी इमारात में जाते हैं, ऐसे मुकाम पर जाते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, और अपने नोस्टैल्जिया को लेकर, चाहे वो माजी की यादें हैं, चाहे वो अपने से पहले की बातें हैं, उनके बारे में सोच के जो आपका दिमाग है ना वो दोबारा से रिवायर होता है, दोबारा से आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है वो इन्हेंस होती है, यानी कि बेहतर होती है। तो इसके अलावा कहा जाता है, माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि नई ज़ुबानों को सीखना, नई ज़बान सीखना, नई लैंग्वेज को सीखना, और उसके जो कुलिये हैं, उसके जो जुमले हैं, उसके जो अल्फाज हैं, जो वोकैबुलरी है, इस हवाले से अगर आप फोकस करते हैं, तवज्जो देते हैं, सीखने समझने की सलाहियत को इम्प्रूव करते हैं किसी लैंग्वेज को समझने के हवाले से, तो इसके ज़रिए से भी आपके दिमाग को एक नई चीज़ को सीखने की जब तहरीक मिलती है ना, सो इससे भी क्या होता है कि आपके बहुत सारे जो मसले मसाइल होते हैं, जो दिमागी सेहत के इश्यूज़ होते हैं, वो रफा दफा हो जाते हैं। सो मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये माहिर नफ्सियात का कहना है, और इस पर पूरी रिसर्च है। वेल, इसके अलावा आप जो है अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, और वो काम कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। वेल, इसी बात के साथ, इसी पैगाम के साथ मैं चाहूँगा आपसे आज के लिए इजाज़त, और ज़िंदगी ने साथ दिया सांसों वफा की, तो इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए आई डू होप कि जितना अच्छा मुझे शो करके लगा है आपको सुन के लगा होगा। सो वही पैगाम के तमाम तर आलम इंसानियत का ख्याल रखिएगा, बिला तफरी किसी रंग नस्ल और मज़हब के मुझे दीजिए इजाज़त। एंड यस, अल्लाह ने के बानो मेहरबान।
3: ये रेडियो पाकिस्तान है, मुदस्सरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने बलूचिस्तान में खुफिया इतलात की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशंस के दौरान फितना उल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 17 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। इटली ने आइंदा 3 बरसों के दौरान 10,500 पाकिस्तानी कारकुनों के लिए खसूसी कोटा मुख्तस किया है। पाकिस्तान समेत 8 अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा ने फलस्तीनी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया है।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Welcome back. This is your dost, your host, RJ Vajiha Asim. Program hai Ladies Lounge aur aapka mera saath rehne wala hai 11 baje se 1 baje tak. पिछले बुध को थी ईद उल अज़हा और अब तकरीबन जो है ना आज पूरा एक हफ़्ता हो गया है और सेलिब्रेशंस का और जो है ना जो मज़े मज़े के पकवान सबके घर में बन रहे हैं उसका तो ये जो महीना होता है ना ईद उल अज़हा के बाद के चंद हफ़्ते चंद दिन जो होते हैं तो आपके पास मौका होता है कि आपने जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं आप बनाएँ और बल्कि एक्सपेरिमेंट करें नई नई चीज़ों के साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आप इतनी महंगी चीज़ बाज़ार से ख़रीद के लेके आए हैं और फिर अच्छा ना बना या किसी को घर में पसंद ना आया तो आपको फिर बहुत अंदर ही अगर किसी ने कुछ ना भी कहना हो ना फिर भी आपको एक गिल्टी फीलिंग रहती है कि जी इतने पैसे ज़ाया हो गए या किसी को पसंद नहीं आया। तो अभी तो देखें आपके घर में कुर्बानी का काफ़ी गोश्त पड़ा हुआ है तो डू ट्राई डिफरेंट रेसिपीज़, ठीक है ना।

वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा से प्रोग्राम है लेडीज लाउंज। जी, आपको बताना चाहूंगी इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जो कि स्टार्ट हो रहा है जेबी पाकिस्तान लाहौर के FM 101 के स्टूडियोज़ में। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं और वॉइस ओवर सीखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़बरदस्त स्पीकर होते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा ना उनको ग्रूम करने की ज़रूरत होती है, तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आना चाहते हैं सो हेयर इज़ योर गोल्डन चांस। And if your age is between 18 years to 28 years, मतलब अगर आप 18 से 28 साल के दरमियान आपकी उम्र है तो आप ज़रूर ज़रूर अप्लाई करें। जो डेडलाइन है वो है 12th June। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। क्योंकि देखिए, जो कॉन्फिडेंस जो होता है ना इंसान में, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाता है। सो दिस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑफरिंग यू मच मच मोर देन यू कैन थिंक। तो इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को ज़रूर इनरोल करें और आपको मौका मिलेगा इतना कुछ सीखने का जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो डू इनरोल एंड गेट अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो ये है जून का पहला हफ्ता और गर्मी की शिद्दत भी जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए आप सब ने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और जैसे कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसने ज़रूर फॉलो करें, मैं भी शेयर करने वाली हूँ कि पानी में ना थोड़ा सा लेमन ज़रूर ऐड कर लें, 1 pinch ऑफ सॉल्ट ज़रूर ऐड कर लें, हो सके तो ना जो भी आप रेगुलर वाटर पीते हैं उसमें थोड़े से ना क्यूकम्बर स्लाइसेस ऐड कर लें। यह आपका एक डिटॉक्स वाटर बन जाता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है और आपको ना मतलब कि ज्यादा आपको बॉडी को ना हाइड्रेशन ज्यादा मिलती है। साथ ही साथ जो स्किन है ना, जो ख्वातीन हो या मेल हजरात हो, तो वो जो है ना आपकी स्किन जो है इन जून जुलाई के महीनों में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, फिर आप उनको सही करने में लगे रहते हैं पूरा साल। तो बेहतर है कि आप इन्हीं महीनों में साथ साथ थोड़ी सी केयर करें अपनी स्किन की। छोटी छोटी सी चीज़ें जो अगर आप कर लें ना तो उससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपने जो स्टील का चम्मच सबके घर में होता है आपने वो फ्रीज़र में रखना है, ठीक है, और वो क्योंकि वो फ्रीज़र में पड़ा रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, उसे आप दिन में एक या दो दफ़ा, एक दफ़ा सुबह एक दफ़ा शाम को आप निकाल के अपने स्किन पर लगाएँ, अपनी चीक्स पर लगाएँ, उससे ये होता है आपके पोर्स जो हैं क्लोज रहते हैं, टाइटन अप रहते हैं। और जैसे कि सब जानते हैं कि आइसिंग करना स्किन पे बहुत अच्छा है, अपने चेहरे पे आइसिंग करना, कोई भी आप बर्फ़ का क्यूब लें और उसे अपनी स्किन पे लगाएं, लेकिन वो करना पॉसिबल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। तो स्टील का चम्मच काफ़ी ठंडा हो जाता है तो उसे आप लेके अपने चीक्स पे लगाएं तो बहुत बहुत रिफ्रेशिंग स्किन रहती है आपकी। आप लोगों को मैं कोई बहुत महंगी महंगी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताती, ऐसे बताती हूँ जब झटपट से जल्दी से अपने किचन में ही चीज़ें मौजूद हों तो आप कर लें। और एलोवेरा जेल जो है, जैसे मैंने कहा, उसका पौधा बहुत सस्ता सा बाज़ार से मिल जाता है, किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा, तो वो आप अपने घर में रखें, उसकी जेल निकाल के ज़रूर हफ्ते में एक दफ़ा अपनी स्किन पर लगाएँ। ये जो तीन जेल है ना, ये कुदरती जेल होती हैं, एलोवेरा में और जो होते हैं जो अलसी के बीज होते हैं उसमें, और जो भिंडी जो सब्ज़ी है उसमें, इसमें एक कुदरती जेल होती है, ठीक है। इनमें से किसी का बीज, जैसे जो अलसी के बीज हैं उनको आपको चूल्हे पे पानी में रख के थोड़ा सा उबालना पड़ेगा, उसकी जेल बन जाएगी, तो उससे जब वो ठंडी हो जाए आप किसी भी उसे ग्लास बॉटल में कोशिश करें रखें। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बाई अ ग्लास जार, तो आपके घर में जो जैम के जो जार्स खाली होते हैं तो प्लास्टिक की बॉटल्स में ऐसी चीज़ों को स्टोर करने से बेहतर है हमेशा ग्लास जार्स में स्टोर करें, उनकी लाइफ शेल्फ लाइफ जो है थोड़ी भर जाती है। और
یہ جو جیل ہے جو السی کے بیچ کی جو جیل بن جاتی ہے آپ دو تین دفعہ اسے ابالیں پھر ہلکی آگ پہ رہنے دیں جو جیل بن جاتی ہے کول ڈاؤن ہونے کے بعد ڈو اپلائی دیٹ آپ کی اسکن کو بہت بہت ریفریشنگ لک دیتی ہے ساتھ ہی جو ہے نا گرمی میں جو آپ کو سن ٹین ہو جاتا ہے اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کے جہاں تک سلیوز ہوتے ہیں وہ آپ کا اسکن کلر کچھ اور ہوتا ہے اور جہاں پہ وہ کپڑا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے بازو ختم ہوتے ہیں اس کے علاوہ شیڈ اسکن کا چینج ہو جاتا ہے اس کے لیے جو آلو کا پانی جو ہے نا چاہے آپ کدوکش کر کے نکال لیں یا جیسے بھی آپ کو بہتر لگتا ہے آپ جوسر میں نکالنا چاہتے ہیں تو جو آلو کا جو پانی ہے نا وہ سن ٹین کو فوراً بھگا دیتا ہے تو وہ ضرور لگائیں اگر آپ کو سن ٹین گرمیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے یا بہت جلدی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹماٹر کا جوس ہے وہ بھی سن ٹین کو کم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے ڈو اپلائی دیز ٹپس اینڈ ٹرکس اینڈ لیٹ می نو

मजीद गपशप आपके साथ चलती रहेगी। यहाँ पे आपकी समातों की नज़र करने जा रही हूँ। एक बहुत बहुत अच्छा सा ट्रैक है, यू गो।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

जी मैं हूँ आपकी अपनी जी हाँ सैम। कप शॉप एंड लाइव म्यूजिक विद जी आई इज ऑन एयर जी। और साथ ही कुछ कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है हमारे फेसबुक पेज पे। तो आप सब लोगों की जो मसरूफियत जो है ना अभी ईद के बाद भी कैसी जारी होता है ना कि कुछ लोगों की जो ईद है ना बहुत बहुत लंबी चलती है। अच्छा जी अकबर खान ने हमें मैसेज किया है कराची से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम दिन बख़ैर पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। जिमी राजपूत ने मैसेज किया है अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान गुजर जो है हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं कॉलर हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग मॉर्निंग पाकिस्तान। और मोहम्मद सदीक डार ने मैसेज किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आर जे विजयापी ऑल स्वीट लिसनर्स FM 101। और कहते हैं शो इज़ वेरी नाइस मोहम्मद सदीक डार फ्रॉम नीलम वैली ठंडा पानी आज़ाद जम्मू कश्मीर। वाह जी वाह, आज हमें बहुत दूर दूर से लोगों ने ज्वाइन किया है और वहाँ तो मौसम बहुत अच्छा ही होगा, लाहौर में तो बहुत बहुत गर्मी है। और किंग फजल खान ने हमें मैसेज किया है फ्रॉम ईगल फ्रेंड्स कोयटा पाकिस्तान, और कहते हैं नाइस लुकिंग इन एंड ऑसम वॉइस कीप इट गुड वर्किंग थैंक यू। जिमी राजपूत ने मैसेज किया है, कहते हैं आपका शो मैंने कभी सुना नहीं सच बोलूँ तो। अच्छा जी तो कहते हैं 101 बहुत सुनता हूँ पर आपका शो लगते ही मैं 107 अच्छा कहते हैं मैं स्विच कर लेता हूँ। आज फर्स्ट टाइम आपका शो सुना है और आज फर्स्ट टाइम आपका शो सुना है और सुनने के लिए अच्छा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप जो है आप क्यों स्विच करते हैं बीच में, स्विच ना करें ठीक है, थोड़ा सा जो है ना कंसंट्रेशन से सुने। अच्छा ये एक ना एक थोड़ा सा ये जो न्यू जनरेशन है ना स्पेशली उसमें बहुत ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम है कि उनका ना अटेंशन स्पैन जो अटेंशन स्पैन है ना वो उनका इतना नहीं है, जैसे क्योंकि उनको इतनी आदत पड़ जाती है छोटी छोटी रील्स देखने की छोटी छोटी वीडियोज़ देखने की। आप देखें कोई भी वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए ना तो हम लोग क्या करते हैं जस्ट स्किप इट ठीक है ना। चलिए बात यह है कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जो तालिब इल्म हैं उनका जो है अटेंशन स्पैन जो इतना कम हो चुका है कि वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। सो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग, वी नीड टू फोकस ऑन दैट क्योंकि बच्चों का जो फोकस है ना वो मेंटेन रहे। अच्छा जी तो रमजान गुजर ने हमें मैसेज किया है और कहते हैं आदाब अर्ज करता हूँ और फूलों भरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बरकत रमदानी ने मैसेज किया है अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर, कहते हैं और उन्होंने बहुत से लोगों को सलाम कहा है और उन्होंने बलूचिस्तान से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। और ये शिकस्ता दिल आपने नाम क्यों रख दिया भाई, क्या हो गया ऐसा। चलिए जी आपका मैसेज शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अच्छा कहते हैं आरजे विजय आसिम आपकी पुरवकार निखरी हुई और सहर अंगेज आवाज़ रेडियो की शान और सामीन के दिलों की धड़कन है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं माइक्रोफोन पर जब आपके गहरे और बामानी अल्फाज आपकी खूबसूरत लहजे में ढल कर फ़जा में बिखरते हैं तो हर लम्हा पुरसकून और यादगार बन जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Welcome back. This is your dose, your host, RJ Wajih Azim. जी तो अपना जो आपका सुकून है ना उसे लोगों के रवैयों से मत जोड़ें. किसी को इतना हक ना दें कि वो पूरा आपकी ज़िंदगी पे हावी हो जाए और आपने कब हंसना है कब रोना है और क्या आपको ज़िंदगी में मतलब आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनके रवैयों पे मुनहसर हों. अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं. लोगों के रवैये उनके कमेंट्स वो क्या कुछ लोग होते हैं ना आपको जज बहुत जल्दी करते हैं या अगर देर भी करते हैं तो वो समझते हैं कि आपको जज करना उनका राइट है. तो ये आर्ट अगर आपको ज़िंदगी में आ गया ना कि अपनी जो लोगों के रवैयों को ना अपने ऊपर हावी मत होने दें. बहुत से लोग होते हैं ना आपको खुश देख नहीं सकते. जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना आपकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है. और जो लोग पहले से ही ज़िंदगी में ना खुश होते हैं ना उन्होंने किसी ना किसी तरह आपका दिन या आपकी ज़िंदगी ख़राब करनी ही होती है और उनसे किसी तरीके से भी ना बर्दाश्त नहीं होता कि हाउ यू आर डूइंग गुड इन लाइफ. और जो कुछ लोग होते हैं ना जो ज़िंदगी में आपको खुश नहीं देख सकते तो आप उनके सामने ना परेशान परेशान रहा करें, ठीक है ना. क्योंकि लोग ना आपसे सिर्फ तब तक खुश होंगे जब तक आप उनके मुताबिक चलेंगे, उनके आगे जी जी करेंगे या आप अपनी ख्वाहिशों का कत्ल करते रहेंगे उनके लिए. क्योंकि आप उनकी मर्ज़ी से चलेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे. जब तक आप उनके तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो सब ठीक है, वरना आप बहुत बुरे हैं या बुरी हैं. क्योंकि हम अक्सर चूँकि ख़वातीन के हवाले से स्पेशली बात कर रही हूँ, क्योंकि जब तक वो घर की रूटीन के हिसाब से चल रही हैं, सबको टाइम पर खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, सबके कपड़े रेडी हैं, सब कुछ हो रहा है ना, तब तक सब बहुत खुश हैं. द मोमेंट वो कह दें जी आज हमने यहाँ जाना है या हमने दो तीन दिन के लिए कहीं जाना है या कुछ करना है, जैसे अब आजकल गर्मी की छुट्टियाँ हैं तो बेचारी जो ख़वातीन है ना वो कब से इंतज़ार करी होती हैं कि बच्चों को छुट्टियाँ होंगी वहाँ जाएंगे. और जो फेवरेट स्पॉट बच्चों का होता है वो होता है नानी घर जाने का छुट्टियों में. तो बहुत सी प्लानिंग उनकी कितने महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है कि बच्चों की छुट्टियां होंगी फिर हम जाएंगे. या बहुत सी छुट्टियां ना भी हो या आपके मेके जाने का इरादा ना भी हो, वैसे भी कोई भी डिसीजंस हो आपके लाइफ में, कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, आप तब तक लोगों को अच्छे लगते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चल रहे हैं. आप अपना कोई कमेंट दे दें. देखिए आपका अपना भी तो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना. देखिए जितने लोग हैं उतनी डिफरेंट थिंकिंग है, उतना ही लोगों का अपना अपना नज़रिया है. लेकिन द मोमेंट आप अपना नज़रिया देना तो आप सबको बुरा लगना सबको बुरा लगता है. उसके अलावा ना ये भी बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको अगर आपने को अपनी आपको कुछ बुरा लगा, ठीक है, और आपने उन्हें कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा या ऐसे हुआ, तो बजाय इसके कि वो कहते हैं हाँ मतलब कि उसके बारे में अगर उनको एट टाइम्स ऐसा होता है ना, जैसे मैं तो ऐसे भी करती हूँ ना, मैं कहती हूँ चलो उसको इंसान को अच्छा लगेगा तो उसे मैं सॉरी कह देती हूँ या एटलीस्ट वो बेटर फील करेगा, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है. तो अगर आप सॉरी नहीं भी कहना चाहते तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा कंसोल करें, ठीक है ना. उसके बजाय आप ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दें, इग्नोर करो, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की इस तरह से, ठीक है. क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो है ना इस दौर से इस टाइम से गुजरती हैं कि वो अपने हस्बैंड को या अपनी सास को कुछ कह रही हैं तो बजाय वो बात समझने के वो ओवर रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना. और फिर जब कुछ सालों बाद आपका रिएक्शन चेंज होता है तो फिर आप वो पे कहते हैं ये चेंज क्यों हो गया है, ये ऐसे क्यों हो गया है. इसलिए आपके ही रिएक्शन को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं आपके ही ख़िलाफ़ बोलने के लिए. तो लड़कियों इस बात को थोड़ा जल्दी समझ लो. हाँ जी,
تو گرمی کی چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں اور آپ سب کا کیا کیا پلان ہے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں, کہاں کہاں جا رہے ہیں, اور پاکستان بہت بہت خوبصورت ہے, اس کو ضرور ضرور ڈسکور کریں, گھومو پھرو, انجوائے کرو یار. بریک کیونکہ لائف میں سب کو چاہیے ہوتا ہے, اور جتنی گرمی ہے آپ سب کو بریک چاہیے ہے, اور جائیں خوبصورت نظارے انجوائے کریں. اور یہ جو چھٹیاں ہیں ان کو اپنے پروڈکٹیو وے میں ہی استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بس یہ سوچیں کہ ہم نے ان گرمی کی چھٹیوں کو نا یادگار بنانا ہے, کچھ اچھا کرنا ہے. ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ضرور دنیا میں جانے سے پہلے, دنیا سے جانے سے پہلے کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں. کوئی نہ کوئی اسکل ہے وہ ضرور سیکھیں, جیسے کہ یہاں پہ ایف ایم 101 لاہور اسٹوڈیوز میں انٹرنشپ پروگرام اسٹارٹ ہو رہا ہے, وہ جوائن کر سکتے ہیں. آپ کا کانفیڈینس بوسٹ اپ ہوگا, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس بہتر ہوں گی, آپ زندگی میں بہت بہت کچھ سیکھیں گے. کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا. کانفیڈینس از سم تھنگ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, جو زندگی میں آپ کو بہت بہت آگے لے کے جا سکتا ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہیں نا آپ اسے اوور کم کر سکتے ہیں. اور آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے آپ کے اندر جو نگیٹو چیزیں ہیں نا اپنے ساتھ زندگی میں نا, مطلب کہ بہت بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر چیزیں آرام سے پن پوائنٹ کر دیتے ہیں, لیکن دن میں ایک دفعہ نا اپنے ساتھ ضرور بیٹھا کریں, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے آج کیا کیا, کیا نہیں کیا, اور رائٹ ڈاؤن واٹ یو وانٹ ٹو اچیو, ٹھیک ہے. دس از سم تھنگ دیٹ از, یو نو, دیٹ از کولڈ مینیفیسٹیشن, آپ اسے کہہ لیں. اپنے آپ کو نا دل میں جو بھی آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے, تو دل میں نا اسے دو تین دفعہ ضرور بولا کریں, ٹھیک ہے, اپنے آپ سے ضرور کہا کریں. دس از سم تھنگ جتنے بھی لوگ آج تک زندگی میں سکسیزفل ہوئے ہیں انہوں نے یہ چیز اپنائی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ جو چیز اپنے سامنے رکھیں گے نا, مطلب آپ نے تھوڑا بس فوکسڈ رہنا ہے. یہ صرف فوکسڈ رہنے کے لیے ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا ہے اور بہت سی ڈسٹریکشنس ہیں بیچ میں. آپ سوچیں اگر آپ کچھ آپ ایٹ ٹائمز ہوتے ہیں آپ کچھ اور کرنے کے لیے اپنا موبائل گیجٹ یا لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں, پھر آپ کے سامنے اتنی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو بھول ہی جاتا ہے کہ آپ نے کیا کام مین کرنا تھا. So write down what you want to achieve in life.

और देखिएगा वाकई आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा कि आप जितना अपने गोल्स के साथ फोकस्ड रहते हैं ना, और जितना आप उसे रोज़ दिन में अगर आप 2-3 दफ़ा अपने आप को सिर्फ कह दें, ठीक है ना, या लिख दें, तो अब देखिएगा यू विल फील द डिफरेंस. और साथ साथ कुछ आपके कमेंट्स भी प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ. आई विल बी टेकिंग योर ऑनलाइन ऑन एयर कॉल्स आफ्टर सम टाइम. रजा चौधरी ने बहुत प्यारे से फूल भेजे हैं, कहते हैं वाओ फाइन शो, बहुत बहुत शुक्रिया, कहते हैं बेहतरीन कारकर्दगी, बहुत शुक्रिया सुपर स्टार लेजेंड रेडियो सुपर शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और कहते हैं जब कोई मुखलिस मिल जाए तो उसे संभाल कर रखते हैं, उस पर तजर्बे शुरू नहीं करते. बहुत खूबसूरत बात कही आपने. यहाँ पर एक ज़बरदस्त ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101 लाहौर.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदामात शामिल किए जा रहे हैं। खलीज में जारी तनाज़ और बहरी रास्तों में रुकावटों के बायस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती सरगर्मियों में तेजी आई है। पाकिस्तानी हुजाज इकराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और 12,000 से ज्यादा हुजाज वतन वापस पहुंच चुके हैं। पाक फौज के जेर एहतमाम सरगर्दों में मार्का हक दूसरी सरफरंगा कौमी मैराथन 2026 का कामयाब इनेकाद किया गया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Welcome back. This is your dose, your host, RJ Vijayasin. Time in the studio is 12:12 PM. 12:12 ho chuke hain aur aapka aur mera saath rehne wala hai 1 baje tak. Saath hi aapki calls hi program mein shamil karte hain. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Waalaikum assalam. Kya hal hai aapka?
1: Alhamdulillah, bilkul theek thaak. Mera naam pehchane aap?
0: Haan, Rimsha, hai na?
1: जी बिल्कुल. आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक रिमशा. आप कैसी हो? वेलकम टू द शो.
1: आपने अभी कहा ना कि आप कैसी हो, मैंने कहा शायद आप ही को नाम भूल गए.
0: नहीं नहीं नहीं देखो अब देखो इतना तो पहचान हो गई है ना, है ना?
1: जी मैंने कहा काफी दिनों बाद आई हूँ ना, शायद मेरा नाम भूल गया होगा.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है सही है. क्या कहना चाहोगी रिमशा?
1: आज मैं ये कहना चाहूंगी, आज आपने क्या पकाया है? मैं तो वैसे पता चल जाएगा क्या बनाना है.
0: देखो आज मैंने ना शुरू में शेयर की थी रान रोस्ट की रेसिपी, ठीक है ना? तो अगर तुम्हारी फ्रीजर में पड़ी है ना तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करो, ठीक है? और देखो आजकल जितना क्योंकि हो सके अगर गोश्त फ्रीज़र में पड़ा है तो कोशिश करो उसकी चीज़ें बना लो, कि ज़्यादा देर चीज़ों को फ्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना?
1: ओके
0: और क्या कहना चाहोगी?
1: और आज आपका टॉपिक नहीं रखा कोई भी?
0: नहीं, आज हम बात कर रहे हैं छुट्टियों के हवाले से और बहुत ज्यादा बातें की हैं यार. तुमने शो नहीं सुना ना तुमने? है हमने टॉपिक यही रखा है कि अपनी छुट्टियों को जो है ना आपने अपना या जो वक्त है उसे आपने किस तरह ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना है, और मतलब कि आपने होता है ना ज़रा कुछ नया सीखो, कुछ नया करो आगे जाके.
1: हाँ बिल्कुल यार, मगर ये है कि आप ही अगर घर में कुछ भी सीख लें फिर भी मायके नहीं है तो कोई कुछ कर दी कोई नहीं है तो कुछ सीख दी कोई.
0: हाँ तो यही मैं कह रही हूँ ना कि जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए.
1: ज्यादा ना यही सीखने को मिल जाता है, यही लफ्ज हमें सीखने को मिल जाता है, मैं तो कुछ कर दी कोई नहीं.
0: हाँ बिल्कुल, सब लड़कियों को यही सुनने को मिलता है हमेशा.
1: बिल्कुल, और चाहे वो बेचारी जो मर्जी कर ले फिर भी उनको यही सुनने को मिलता है तो कुछ कर दी कोई नहीं, कोई काम ही नहीं कर दी.
0: हाँ बिल्कुल,
1: बिल्कुल. पता नहीं ऐसा क्या होता है, जब भी कोई मेहमान आते हैं हमारी तरीके उन मेहमानों के सामने हमारी माएँ शुरू कर देती थी.
0: अच्छा. नहीं, अब वैसे भी पता है ये जो हाउस वाइफ है ना, जिसको जैसे कि आजकल की लेटेस्ट जबान में कहा जाता है होम मेकर, ठीक है ना? उसके काम को तो वैसे ही इतना वैल्यू नहीं किया जाता, ठीक है ना? तो इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि 3-4 दिन की ना छुट्टी लेके कहीं चले जाओ, कहीं घूमने फिरने चले जाओ, तो वो जो है ना तो थोड़ा सा इनको पता चले जब आप घर पर नहीं होते तो क्या क्या होता है. तो वो ये है आपको जाने भी नहीं देते ताकि आपको रियलाइज़ ही ना हो ना कि आपको एब्सेंस में क्या हुआ क्या ना हुआ. तो लेकिन नो डाउट ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप करते हो लाइफ में ज़िंदगी में रोज़, और कोई उसको वैल्यू नहीं करता. ये सब ख़वातीन को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है.
1: ये है कि क्योंकि ख़वातीन को इसलिए भी नहीं जाने देते, फिर घर में कौन हमें खाना खिलाएगा, खाना कौन बनाएगा, घर को कौन संभालेगा, इसी वजह से भी नहीं जाने देते. और कहते हैं कि नहीं बाहर जाके करना क्या है, किसके घर जाना है, बाहर गरीब होता है काम, मतलब न जाने से ना टाल देते हैं, हमें लेके जाना ना पड़े.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं देखो मैंने बहुत दफ़ा ऐसा भी देखा है कि अगर आप खुद से भी तो प्लान बना सकते हो ना अपने दोस्तों के साथ या बहन भाइयों के साथ उस तरह, तो वो भी जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना? ये नहीं आप ना लेके जाएं, आप घर बैठे लेकिन तुमने भी नहीं जाना, ठीक है ना? ये भी होता है.
1: बिल्कुल ऐसा भी होता है. वो कहते हैं कि पास से पैसा होता है, हम दोनों बहन भाइयों में काफी लड़ाई हो जाती है, तो कहते हैं अगर मैं कहीं नहीं गया ना तो तुमने भी कहीं नहीं जाना.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है, ये बात है. चलो ठीक है, और कुछ कहना चाहोगी?
1: आपने बात की थी ना उस टाइम की जीते जी इंसान की कदर करनी चाहिए. हम लोग जो है ना, हम लोग ना बाद में कदर करते हैं, जब हमारी लाइफ से कोई दूर चला जाता है, काफी दूर हो जाता है ना, तो हम जब भी उसी इंसान की कदर आती है उससे पहले हम उस इंसान की कदर नहीं कर रहे होते. हम कहते हैं कि नहीं हम नहीं चाहते इसको, ये जो मर्जी करता रहे चाहे भी है जो मरे, लेकिन हम उसकी कदर बिल्कुल नहीं करते. जब तक वो हमारी लाइफ से दूर नहीं जाता हमें कदर महसूस नहीं होती. हर चीज को हम ऐसी हर चीज हमें हासिल हो जाती है अभी, हम उसकी कदर नहीं करते जब तक वो हमसे दूर नहीं होती.
0: लेकिन देखो यही बात है ना कि बहुत सी चीजें इंसान तभी सीखना क्यों जाता है जब उससे दूर हो जाए, ठीक है ना?
1: ये है कि ना हर चीज मिल जाती है ना तो इंसान आपके नाशुकरा भी तो हो जाता है.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने.
1: चलो जी, अगर उसे मिलती रहे ना तो फिर वो ये है कि वो जेलसी दूसरों को फील करवाता है कि तुम्हारे पास नहीं देखो मेरे पास है. जब तक अगर वो चीज हमसे दूर नहीं ना हो तो हमें उस चीज की कदर महसूस नहीं होती कि हाँ अगर हमने ये चीज हासिल की है तो उसकी कदर भी करनी
0: चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की रिमशा, थैंक यू आपकी कॉल का. बहुत
1: मैं सलाम दे दूँ?
0: हाँ हाँ जरूर जरूर,
1: फटाफट दे के भाग जाऊँ भाई. शहजाद अंकल, बर्फी वाली अंकल, मारिया पिया, निदापी, मिशाल अपी, साजदा, जुलेखा, और ये जो नई नई आपी आई है, क्या नाम है इनका, मुझे नाम ही भूल जाता है,
0: हानिया,
1: हानिया बिल्कुल नहीं, जो जर्मनी से नहीं आती, हमना
0: अच्छा।
1: उनको भी मेरा सलाम और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी बिल्कुल, हमना हमना के लिए हमने आज गाना भी डेडिकेट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने कहा था मेरे लिए गाना ज़रूर डेडिकेट करें, लेकिन टाइम क्योंकि कम था, तो हमना के लिए आज गाना भी ज़रूर डेडिकेट करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ जी, कौन बात करें, कहाँ से?
2: मैं बजिया आसिम साहब, मुझे रमजान अनवर गुजर कहते हैं, और मैं मॉडल टाउन लाहौर से बोल रहा हूँ, फिलहाल ऑन ड्यूटी हूँ, काम कर रहा हूँ। थैंक यू बंडलो, थैंक, और अर्ज किया है खिलना गुलाब का हरगिज नहीं कोई दलील, खिलना गुलाब का हरगिज नहीं कोई दलील, बस एक आप मुस्कुरा रही हो, समझो बहार है। बहुत सी दुआ आ गया और छा गया वो हसीनो जमील शकार, आ गया और छा गया वो हसीनो जमील शकार, जिसका था हम सबको बड़ा बेताबी से इंतजार, बादब बामलेदा होशियार, आवाज की दुनिया की मलकाए आलिया, नंबर वन फैमिली रेडियो स्टेशन फॉर द नेशन, FM 101 पर रौनक अफरोज हो चुकी हैं, सुनने वाली अजीम कदीम सुपरहिट औसम लोसम और टू गुड समातों को रमजान गुजर मॉडल टाउन लाहौर से एक बार फिर गुड गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और सत बिस्मिल्ला जी एनु अख्तर कैसे मिजाज मैम जी, आसिम साहब
0: आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए आप कैसे हैं और आपकी जबरदस्त एंट्री क्या ही बात है।
2: अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, आप सबसे पहले आपका बंडल ऑफ थैंक, आपने कीमती टाइम अता किया और हमेशा की तरह आ गई और छा गई रेडियो वन हिट एफ 101 के लाइव लाहौर स्टूडियो में, और एक गिला क्योंकि ये शो पे आप नहीं आई, तो मेरा भी और तमाम लिसनर भी यकीनन इस बात को मिस करेंगे कि आपका आना ईद पर ईद शो करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी था, यकीनन आपकी कोई मजबूरी या कोई मसरूफियत होगी जिसकी वजह से आप नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ईद उल फितर पर मैं आई थी, लेकिन इस दफा कुछ मसरूफियत ऐसी थी, नहीं तो देखिए मैं हमेशा हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम सबसे पहले कहीं और जाए ना जाए, हमने FM 101 के जो स्टूडियो है वहाँ जरूर पहुँचना होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना आपको गिला करने का मौका नहीं देंगे।
2: बड़ी मेहरबानी और टॉपिक के वाले से, ये दोस्ती के वाले से ये कहूंगा कि एक जगह मैंने लिखा पढ़ा और मैंने उसको ना अपने ऊपर फर्ज कर लिया, कहते दुनिया में बहुत से दोस्त बनाओ लेकिन एक दोस्त ऐसा बनाओ कि जब आपके बहुत से दोस्त आपको छोड़ जाएं वो एक दोस्त आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो। तो मैंने बड़ा लुतारा, बड़ा बड़ा खंगाला, बड़ा बड़ा दी एंड इस मुकाम पर पहुंचा कि मैंने बड़े दोस्त बनाए, बड़े छोड़ गए, बड़े अहम पर टाइम पास ही है, लेकिन एक दोस्त मेरा ऐसा है जिसके ऊपर मुझे फख्र है रहती जिंदगी तक, वो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो मेरी खुशी की और गमी की मेरी साथी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मजबूत नहीं करेगी।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है ये, और अगर आप बाकी अपने रिश्ते भी इस रिश्ते के साथ बना लेना तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है।
2: और उसके बाद लास्ट टाइम मल्टीनेशनल कंपनी में 26 साल सर्विस है हो गई है और 10 साल बाकी रह गई है, तो लास्ट टाइम मैं आपके बोल रही थी कि इज्जत नफ्स और इंसान को ना अपना आप मनवाना चाहिए, मैंने नहीं मनवाया, हर उस एक के साथ मजाक करता था, मजाक बर्दाश्त करता था, ऐसे कह लो कि जैसे बंदा ना सुस्ता जिसको इंसान ले लेते हैं कि 24 घंटे हंसमुख रहना, मजाक करना, मजाक बर्दाश्त करना। लास्ट टाइम मैंने एक दोस्त को मजाक किया, कुछ ऐसा कोई गुस्सा भी चलो किया, उसने मेरी कंप्लेन कर दी किसा मुतर कि मेरी जॉब जाने वाली थी, और मैंने ये तहिया कर लिया अब कि बिल्कुल किसी के साथ मजाक नहीं करना, एक तो उम्र 50 साल हो गई है, दूसरा अपने लेवल के मुताबिक बोलना है और काम के मुताबिक बोलना है, और किसी के साथ कोई लूज बात नहीं करनी, किसी को कोई मौका नहीं देना, और अपनी इज्जत अपने इंसान के हाथ में होती है कि बोलने से पहले इंसान के लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम होता है, तो इंशाल्लाह मैंने अब ये तहिया कर लिया है कि अपनी इज्जत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई मजाक नहीं करना, और कोई दुश्मनों को ऐसा मौका नहीं देना कि वो मेरी कंप्लेन करके मुझे नौकरी से फारग करें, क्योंकि इस वक्त मुझे और मेरी फैमिली को मेरी नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात।
2: अल्लाह का इकबाल बुलंद करे। मैं आखिर में जाते जाते इंचार्ज रेडियो पाकिस्तान हिट एफ एम 101 अहमद सुहेल बसरा साहब और हिट एफ इंचार्ज डिप्टी कंट्रोलर असद अबरार साहब और सीनियर प्रोड्यूसर और प्रोग्राम मैनेजर जनाब मोहम्मद जुबैर बशीर साहब और प्रोग्राम मैनेजर खतीजा मुराद साहबा को और आपकी पूरी विनिंग टीम और तकनीकी आमले को, जितना भी आपके शो के लिए कॉपरेट कर रहा है उसको तय दिल से सलूट पेश करता हूँ। शानदार शो पेश करने पर अल्लाह पाक आपका, आपकी विनिंग टीम का, आपके इंतजामिया का इकबाल बुलंद करे और आपकी फैमिली के लिए जी आसिफ साहबा बहुत सी बेस्ट विशेष। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान
0: पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे रेगुलर लिसनर, रेगुलर कॉलर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो डाउट आपको जो है ना, हर इंसान को ना अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, ठीक है ना। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज टू मूव ऑन इन लाइफ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमें, क्योंकि ज़िंदगी में ये सिखाया नहीं जाता, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं ज़िंदगी में, जो आगे जाके हमारे काम भी नहीं आती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, एक आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, ठीक है, हाउ टू सेट योर ओन बाउंड्रीज, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इख्तियार अपने ऊपर दे देते हैं ना, फिर जब कुछ सालों बाद वो आपको अपने हिसाब से मूव नहीं कर पाते ना, तो फिर गिले शिकवे और बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाती हैं लाइफ में। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
3: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम 101 के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम टू द शो।
3: आपको गुजरी हुई ईद मुबारक, बहुत बहुत
0: खैर मुबारक।
3: ये महीना जो ना पूरा ईद का ही चलता रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो है, वैसे भी आज बुध है, पिछले बुध को ईद थी, तो जो है ना एक हफ्ता तो चल नहीं सकता है। चले जी, शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे आप?
3: आपने टॉपिक रखे कि बच्चों को छुट्टियां होनी है, तो कहाँ जाना है, नानी के घर या दादी?
0: हाँ, या जैसे भी है, छुट्टियों को कैसे आप जो है ना कैसे स्पेंड करने वाले हैं?
3: बच्चों को जो है ना, देखें भैया जी, मैं ज्यादा दिन जाएंगे जरूर मामू के घर तो या नानी के, तो मैं ज्यादा दिन जो ना, एक होता है ना कुछ लोग महीना महीना दो दो,
0: हाय अल्लाह, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो महीना महीना रहते हैं।
3: हाँ जी, नहीं रहने देते हैं कि जाओ भाई मामू के घर, नानी के घर रह लो, दादी के घर, पुप्पो के।
0: नहीं, एक्चुअली होता है ना, शायद वो ऐसा होता है ना, आउट ऑफ स्टेशन से आए होते हैं कुछ लोग, जैसे कि है ना, जैसे कोई इस्लामाबाद या कराची या डिफरेंट शहरों से आए होते हैं, तो जाहिर बात उन्हें लगता है हम इतना खर्चा करके आए हैं टिकटें लेके, तो अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जाए।
3: लेकिन ये है कि मैं ज्यादा दिन नहीं रह, बहुत ज्यादा दिन नहीं, बस ये हफ्ता 10 दिन रहने देती हूँ, उसके बाद बच्चे अपने बच्चों को घर में ही ले आती हूँ।
0: सही है, सही है, सही
3: है। ये सोच के कि बच्चे माओ को इतना जब तंग करते हैं, तो क्या उन लोगों को तंग नहीं करेंगे?
0: बिल्कुल,
3: ये सोच के।
0: लेकिन देखिए, बच्चों का राइट बनता है थोड़ा सा ना, बस अपने कजन के साथ मिलजुल के इंजॉय करें, थोड़ा खेलें करें, बस इतना उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि वो अपने कजन के साथ मिल के खेल सकें, इंजॉय कर सकें।
3: तो वैसे भी ये है ना, मौसम पहले ठंडा हो गया था, कुछ दिन बारिशें हुई, ये अब फिर गर्मी हो रही है ज्यादा।
0: जी जी जी,
3: तो गर्मी में बच्चों को क्या बाहर जाने दे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, सही बात है।
3: बहुत अच्छा शो हमेशा की तरह।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
3: तो गाने क्या फरमाइश कर हुई है, रहने
0: करने में कोशिश करूंगी कि प्ले कर लूं, ठीक है।
3: मेरा ख्याल है कुछ चार्जर को तो पता चल गया, मेरी पसंद का पता कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कौन से गाने मुझे, 3-4 बहुत फेवरेट है।
0: अच्छा अच्छा, चलो जल जल्दी से बता दे कौन सा, 3-4 में से कोई एक बता दे।
3: निम्रा हमारा का गाना है एक, और ये दो लोगों ने गाया, मुझे दूसरे का नाम नहीं याद आ रहा क्या।
0: अच्छा,
3: तो कुछ ऐसा है, मेरे हाथों पे मेहंदी पे नाम लिखती थी, कुछ ऐसे करके बोल है गाने के। तो बाकी ये कि सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम दिल की कह रहे हैं। अभी रिंचा आई थी, हमारा बेक साजिदा
0: जी जी,
3: और रुबीना जट्टी, फरी भी कोशिश कर।
0: हाँ हाँ, चलिए ठीक है, बाकी कॉलर्स को भी टाइम देते हैं। चले जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
3: सबको मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह
0: हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी, तो देखें जो आपके बचपन के जो दिन होते हैं ना वो आपको हमेशा हमेशा ज़िंदगी में याद रहते हैं कि हम बचपन में ये करते थे वो करते थे। तो ठीक है, ये टाइम जो है ना बच्चों को अपने कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता छोटे बच्चों का, लेकिन चलिए आप उनके साथ कोई ना कोई एक दिन आप रख सकते हैं, कोई गेट टुगेदर पार्टी रख ली, बच्चों के दोस्तों को बुला लिया, लेकिन अपने कज़न्स के साथ, बहन भाइयों के साथ जो ये गोल्डन टाइम होता है ना, ये हमेशा हमेशा याद रहता है। तो उनको बनाने दें, कुछ अच्छी सी मेमोरीज़ बनाने दें उन्हें। और जैसे कि मैंने आज शेयर की थी एक रेसिपी, उसके अलावा अभी जब रमजा आई थी पूछी थी आपने आज क्या बनाया है ताकि उनको भी आइडिया मिल जाए, तो ज़रूर जैसे कि हमेशा मेरे शो में बात होती है आज आपके किचन में क्या बन रहा है, आज भी इस बारे में ज़रूर बात होगी। देखिए आज अभी जो है ना, अभी ईद गुजरी है, आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, पसंदे बनाएं आप, डिफरेंट पाए बनाएं, मगज़ बनाएं, कि बहुत सी ऑप्शंस हैं। और जितना हो सके आपको चाहिए कि जल्दी जो है ना यूज़ कर लें, अगर आपके फ्रीज़र में जितना भी गोश्त पड़ा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक चीज़ों को फ्रीज़ करना वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आसिम अज़हर की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गीत।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: मैंने तू जरूरी है ये गाना आई डेडिकेटेड टू ऑल ऑल ऑफ माय लिसनर्स। तो यहाँ पे कॉल्स भी आ रही हैं। एक अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल फिर से ड्रॉप हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? जी कौन बात कर रहे हैं?
1: अल्ताफ हुसैन
0: जी जी वेलकम टू द
1: लाहौर से।
0: शो।
1: जी
0: जी जी क्या कहना चाहेंगे?
1: जी मैं कहना बस यही चाहूंगा,
0: जी
1: मेरी वाइफ है और
0: सही
1: वो
0: है।
1: फालिज की मरीज है।
0: अच्छा,
1: जितने सुनने वाले अगर मेरे लिए दुआ कर देंगे तो मेरा भला हो जाएगा, मेरा भी
0: ठीक
1: कोई
0: है
1: आसरा जो
0: जरूर
1: शुक्र
0: जरूर।
1: कमाने का बन जाएगा। उसके पास ही मैं पड़ा रहता हूँ 2 साल से।
0: अल्लाह ताला उन्हें जल्द शिफा दे। हम सब उन्हें दुआओं में याद रखेंगे।
1: अल्लाह आपकी खैर करे, बस मेरा यही रिक्वेस्ट है भाजी।
0: चलो ठीक है
1: अल्लाह
0: जरूर
1: तुम
0: जरूर।
1: तंदुरुस्ती देवे, सारे सुनना मेरी खैर होवे,
0: चलो
1: भले होन,
0: चलो
1: बस मेरी हाजिरी लग गई। अस्सलामु अलैकुम जी।
0: वालेकुम अस्सलाम। जो वक्त है ना वो जब गुजर जाता है ना फिर आपको एहसास होता है। इसी तरह कुछ लोग कुछ रिश्ते जब वो चले जाते हैं ना फिर आपको एहसास होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहते हैं ना जो दरख्त बहुत अकड़े हुए सीधे खड़े होते हैं ना वो ही जब आंधी तूफान आता है तो सबसे पहले गिरते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी अगर अपने अंदर आजजी पैदा आप कर लेना तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को इतना मार्जिन दें, मतलब अपने आप को ना इतना रखें के फ्लेक्सिबल कि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें, लोगों को उनका इतना हौसला अपने अंदर रखें कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की ना आपके अंदर थोड़ी सी हो। कुछ लोग होते हैं ना वो सुनना ही नहीं चाहते और पहले से ही ना वो एक माइंड मेकअप कर लिया होता है लोगों ने आपकी बात सुनने से पहले, उनके तासुरात से ना पता चल रहा होता है कि उन आप जो भी बोलें जो भी कहें उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि उन्होंने बस यही सोचना है आपके बारे में। तो ऐसे लोगों को ना एक्सप्लेनेशंस नहीं दिया करते। स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। अपने आप को हर टाइम इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती हर एक को। और इजाज़ अली ने हमें ज्वाइन किया है शरकपुर से, और मूसा वाली से हमें मोहम्मद हमज़ा ने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सदीक डार का मैसेज मैंने पहले भी प्रोग्राम में शामिल किया था। अकबर खान ने मैसेज किया है। गुल यासीन नाज ने कहा अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स लिसनर्स। और क्लब मुल्तान से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और बखर से और हमें ज्वाइन किया है बरकत रमदानी ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मलिक मोहम्मद आदिल ने हमें ज्वाइन किया है। आरजे वजीह आसिम ऑल आरजे एफएम 101 लाहौर टीम इंजीनियर मलिक आदिल सऊदी अरेबिया से आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी वेरी मच। और मुजम्मिल नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है और कहते हैं मुजम्मिल नज़ीर अहमद टेलर पाक दामन लाहौर से आपने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं मेरी तरफ़ से एफएम रेडियो पाकिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शो रोज़ सुनता हूँ, आपकी आवाज़ माशाल्लाह इतनी मीठी है, मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे सुकून महसूस होता है। आई एम वेरी ऑनर्ड, आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड। और कहते हैं बाकी अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। अल्लाह हर मुसलमान को खुश रखे। बाकी आपकी आप कोई सॉन्ग सुना दें। जी बिल्कुल तू ज़रूरी है, ये मैंने अपने सब लिसनर्स को डेडिकेट किया था अभी सॉन्ग, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है और आपको अगर मेरे शो के हवाले से मेरी आवाज़ सुन के सुकून मिलता है या कुछ भी अच्छा अगर आप मेरे शो से सीखते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है। और रमज़ान गुजरने में बहुत से मैसेज किए हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एजाज़ अली ने हमें मैसेज किया है और कहते हैं माय बेस्ट फ्रेंड्स आर आरजे चौधरी एहसन खान सजाद अली लाडला, क्या बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत से दिलों को हम जोड़ी रखते हैं। और रमज़ान गुजर ने कहा है सुपर हिट प्ले लिस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच। अच्छा जी बहुत से फूल भेजे हैं। रजा चौधरी कहते हैं वाओ फाइन शो, बेहतरीन कारकर्दगी, मैंने पहले भी शामिल किए थे आपके कमेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया। रजा चौधरी ने कहा है अमेजिंग शो, थैंक यू, वाह कमाल है शो, कहते हैं रजा चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: 4 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Asma Hafiz. First, the headlines. Prime Minister has expressed firm resolve to ensure further strengthening of Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership. Finance Minister has appreciated World Bank Group's continued partnership with Pakistan and support for development. In India, 21 people were killed in a fire at a hotel in Delhi today. Pakistan has qualified for semi-final, beating Bangladesh by 5-2 in Men's Under-18 Asia Cup Hockey in Japan today. And now the news.
1: This is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम सदर पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकोनॉमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें याद रखें बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है कतार ना इंतजार खवातीन होंगी बाइख्तियार बेनजीर का बेनजीर ख्वाब हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार
1: दिस इज FM 101
4: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहार बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101 सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सुनते रहिए FM 101।

0: news headlines.
1: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत की कारोबार के लिए साजगार पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने आलमी बैंक ग्रुप की पाकिस्तान के साथ मुसलसल शराकत दारी और तरक्की के लिए मुआवनत की तारीफ की है। भारत में आज दिल्ली के एक होटल में आतिशजदगी के बायस 21 अफराद हलाक हो गए।
2: This is FM 101.
3: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
4: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशियरीज के लिए अहम पैगाम, सदर पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकॉनमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाए और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार।
2: दिस इज FM
5: 101. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution।
1: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: I love
2: FM 101. 13 June, PC Hotel Lahore, आइए और दें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं. 13 जून, अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: No mind, Cali, summer, cum laude.

0: 51 Above FM 101।
1: सुरर संगीत साजो आवाज
2: आपका मनपसंद।
3: Coming up next, 101 News Headlines.

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया।
2: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: Keep smiling and drive carefully, okay?

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101
1: कोक स्टूडियो सीजन 15।

0: Saç.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
4: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है. इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है. निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है. लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं. नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है. यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान.
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: 13 June, PC Hotel Lahore aaiye aur dein Al Shifa Trust Eye Hospital ka saath. Kisi ki zindagi ka andhera hamesha ke liye mitane mein apna hissa dalein. Mazeed malumat, ticket aur table ki booking ke liye abhi hamari website visit karein. www.alshifaeye.org.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Sochiye, jab duniya sunai to de, magar dikhai na de. लाहौर जहां हर गली में एक कहानी है लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है लेकिन अब नहीं 13 जून अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में
3: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
2: शुक्रिया.
1: गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस

سونه تبه सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: खवातीनो हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को किसी की शिकायत, जरा तवज्जो फरमाएं।

0: रास्तों में कहीं तुम रसमन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा।
1: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: This is FM 101.
1: 13 जून, पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: सुनते रहिए FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: Big Style. Please press FM 101.

0: बन गई मशीन।
1: Yo, Big Style. Please play FM 101.

Biggs Tile. FM 101. Michael Montana, let's go.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समीन वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि आइंदा बजट में आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट ने पाकिस्तान के GSP प्लस हैसियत और मुख्तलिफ शोबों में ताबुन के लिए इटली की हिमायत की तारीफ की है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर ने सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताबुन की नई राहें तलाश करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। आज जापान में 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान बांग्लादेश को 2-5 हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

बहुत सारी दुआएं हैं तमाम सुनने वालों के लिए, और यकीन करता हूं कि आप लोग गुजरते हुए याम को हर गुजरती हुई सांस के साथ यकीनन महसूस करते होंगे, कभी दर्द तकलीफ, कभी महरूमी, कभी खुशी, कभी मुस्कुराहट, और कभी पा लेने एक तस्कीन सी आ जाती है, कभी हंस दिए, कभी मुस्कुरा, और कभी अपनी जात से आगे निकल कर किसी और के गमों को महसूस कर लिया, कभी किसी और की खुशी को देख लिया, उसको फील कर दिया। दिस इज हाउ लाइफ इज, और यही जिंदगी की खूबसूरती है कि लम्हात कुछ ऐसे होते हैं जब आप अपनी जात के बारे में फिक्रमंद होते हैं, और कभी अपनी जात से बाहर निकल कर किसी और को देख कर महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि वो जो सामने शख्स है हंसता है या मुस्कुराता है, जश्न मनाता है या गम मनाता है, या किसी से बिछड़ जाता है या किसी के साथ कोई दोस्ती का ताल्लुक बढ़ाता है, काम कारोबार करता है, नौकरी में आगे बढ़ता है, किसी अच्छे ओहदे पे पहुंचता है, अच्छा मोबाइल लेता है, गाड़ी लेता है, घर लेता है, जिस तरह से भी आगे बढ़ता है, कभी आप अपने अंदर की ख्वाहिशात को टटोलते हैं, कभी उसके अंदर अपने आप को छलकता हुआ देखते हैं। दिस इज हाउ लाइफ इज, और कभी अपनी जात के अंदर न जाने कितने ख्यालों से उलझते रहते हैं। यही वो लाइफ, यही वो चीज है, दिस इज द ओनली थिंग जो हमें आगे की तरफ चलाए जाती है, और इसी वजह से आप और मैं, हम सारे आगे बढ़ने का सफ़र करते रहते हैं। कभी शुक्र करते हैं और कभी बरमला अपने बनाने वाले से गिला करने लगते हैं। जाहिर है मैं भी गिला करता हूँ बहुत सारी, वो गिला भी दुआ होती मालिक, फलां चीज फलां चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है, मेरी मदद कर, ये कर, वो नहीं, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह के बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारी बातें, अपनी ही बातों में उलझे हुए उड़ता रहता हूं मैं भी कई ख्यालों, यही जिंदगी। और बहुत सारा प्यार है, सलाम है, मोहब्बत है, सलाम अकीदत है मेरे तमाम तर फौजी जवानों, फौजी अफसरान के लिए, और जिनकी वजह से आज हम दुनिया में अपना सर फख्र से बुलंद करके चलते हैं। यकीन करें आप पे हमें फख्र है, और बहुत सारी दुआएं हैं कि आप के घर वालों की आंखें आप लोगों की मौजूदगी से ठंडी रहें, and I am a proud Pakistani, I am a proud Pakistani Muslim, alhamdulillah. और बात वही है, कभी उड़ता हूँ मैं अपने ख्यालों में बहुत सारी ख्वाहिशात लिए हुए, कभी हवाओं में ना जाने कितने महल्लात तामीर करता हूँ, कभी मैं कुछ हूँ और कभी कुछ, कभी मैं से तुम का सफ़र कर लेता, वो तुम के सफ़र में कभी किसी की खुशी के अंदर उसके साथ शरीक होता हूँ, उसके साथ हंसता हूँ, उसकी खुशी को महसूस करता हूँ, और कभी किसी के गम में शामिल होकर उसके गम को अपने अंदर उतार लेता हूँ। इसी तरह उड़ते रहें, जिंदगी इसी का नाम है, यकीन करें, ये महरूमियाँ, ये पा लेना, ये सब कुछ, सब कुछ आज आपने हासिल किया कल नहीं था, आज आपने खो दिया कल था, फिर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं लेके आया था ना आप लेके आए थे, ना मैं लेके जाऊंगा ना आप लेके जाएंगे। जिंदगी में इस सफर को खूबसूरत तभी बना सकते जब आप महसूस करेंगे जिंदा रहने, क्या आया, कौन चला गया, फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अपने जीने के मकसद को समझ लें, जहाँ कोई आपका हाथ थाम के चले उसके साथ चले, तो हाथ छोड़ दे उसको बुरा ना जाने, लेकिन उसको जाने दे जहाँ वो जाना चाहता है, और उड़ते रहे उसको भी उड़ते, लेट देम लव देयर डिजायर,
और आई वॉन्ट यू टू लव योर डिजायर्स योर विशेस एंजॉय कर उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा दिस इज आरजे डॉक्स मौजूद हो भी कता नजर मेरा हाथ थामे और मुझे उड़ाए जाए कुछ शेर को किस्सा को बात को कहानी को वाकया को अपनी बात कॉल करके सुनाए 0421-1100-101 इंटरनेट की एक्सेस नहीं है एसएमएस करें लेट मी नो यू गाइस आर लिसनिंग अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए 101 लिखें स्पेस दें अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पर और इसके अलावा मेरी लाइव स्ट्रीम पे जो साहिबान आए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग RJ_DOX लिखेंगे मेरी लाइव आ जाएगी वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच के साथ थैंक यू वेरी मच जासर थैंक यू वेरी मच आप सुन रहे हैं जम्मू कश्मीर से थैंक यू वेरी मच और आरजे मोहसिन थैंक यू वेरी मच एंड कवलनाज आपका भी शुक्रिया मोहम्मद अवैस आपका भी शुक्रिया थैंक यू वेरी मच एंड हसन अली उड़ी जा अपने अंदर झांक के और फील तो करें आप चाहते क्या जो आपके अंदर से चाहत आती है उसी के साथ तो उड़ना होता है लोग तो बहुत कुछ कहते हैं आप और मैं बहुत कुछ फिक्र में अपनी रखते हैं ये करूंगा तो ऐसे हो जाएगा वो करूंगा तो ये हो जाएगा कभी कभी तो अपने लिए वक्त निकालें देखें आपके अंदर से क्या ख्वाहिश है उसको फील करें उसके साथ उड़े तसव्वुफ इसी का नाम है जहां आपकी जात से दूसरों को नफा पहुंचना शुरू हो जाए इंटरेस्ट में आपके अंदर से बजुस नफे के और कुछ नहीं निकलता अपने अंदर झांक के उड़े तो सही

जी वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:38 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आपका मेरा साथ होता है जी बोधा जी में रात की शब 10 से 12 बजे तक। और आज का साथ आपका मेरा लंबा चलने वाला है क्योंकि मेरे बाद आते हैं रहमान अनवर, फॉर सम रीजंस वो आज नहीं आ पाएंगे। हुक्म मिला है कि तुसी करना है, सो आई विल ट्राई टू स्टे विद यू एज लॉन्ग एज आई कुड। 1 बजे तक तो मैं कोशिश करके रुक ही जाऊंगा, अदरवाइज आई ऑल्सो हैड अ लॉन्ग डे, बड़ा लंबा दिन गुजारा। हमारे पास एक नए हमारे आए हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, बाहर बैठे हैं और हैरत ज़्यादा मुझे लग रहा है, देख रहे हैं मुझे, हैरत तो नहीं हो रही, वो देख के सोच रहा है यार माइक पे जाके कैसे बोला है, उमें तो लगता बंदा बड़ा सड़िया होया। नहीं ज़्यादा मुझे लग रहा है, देख रहे हैं मुझे, हैरत तो नहीं हो रही, वो देख के सोच रहा है यार माइक पे जाके कैसे बोला है, उमें तो लगता बंदा बड़ा सड़िया होया।

0: टॉपिक को, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं। हमें अक्सर इंसान समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, हम थोड़ा सा मुश्किल में रहते हैं कि किसी इंसान को किस तरह से समझा जा सकता है। और जब भी आप किसी से मिलते हैं, मैं किसी से मिलता हूं, मैं इवेल्यूएट करता हूं, मुझे भी इवेल्यूएट किया जाता है। ख्वाजा साहब थैंक यू वेरी मच जी, आपने बताया आप एवरी संडे शब का 10 से 10 बजे शो करते हैं सियालकोट स्टूडियो से, और ट्यूसडे को करते हैं इवनिंग ड्राइव टाइम 4 बजे आरजे ख्वाजा इम्तियाज सियालकोट से हमें सुन रहे हैं FM 101 से। जी सच ए लवली पर्सन, बड़ा मज़ा आता है इनसे मिलकर, बड़ा लाइवली, बड़े अच्छे बंदे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अभी बाकी भी मैसेजेस शामिल करता हूँ, आज डॉक्स वाइब्स ने भी ज्वाइन किया, मालिक हसन ने ज्वाइन किया, मैडम सलमा राशिद साहिबा ने भी ज्वाइन किया, फरा भी आई हैं, थैंक यू वेरी मच। एनीवेज व्हाट आई वाज सेइंग के हमें समझने में दिक्कत होती है, कभी हम इवेल्यूएट किए जाते हैं, कभी हम किसी को इवेल्यूएट करते हैं, और जिसे अक्सर हम कह रहे होते हैं ओ यार प्लीज स्टॉप जजिंग मी यार, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड I don't want you to judge me, okay? और अक्सर हम बात कह रहे होते हैं देखो मेरी ये बात थी, ये सिचुएशन थी, उस पर मुझे जज करना शुरू कर दिया। आइए तो माजवीन आई हैं, थैंक यू वेरी मच जी, आइए आइए आइए हजूर। मेरा एक दोस्त आया, एक नया नया ना एक शुरू हुआ था तो पुरानी फ्रीक्वेंसी, और वहाँ पे वो किसी और साहब ने परचेज किया और उन्हें ना ज़रा लॉन्च करना था, तो वो अच्छे अच्छे आरजेस ढूंढ रहे थे, तो अच्छे अच्छे आरजेस नहीं मिले, फिर उन्हें मेरे जैसे एक आरजे पे गुजारा करना पड़ा। उन्होंने फिर मुझे बुला लिया कि आप हमारे पास आया करें, हमने नया शुरू किया है लाहौर से, 4 शहरों में उनका नेटवर्क था। मैंने कहा चलें ठीक है जी आ जाएंगे, अगर आप को कोई अच्छा आरजे नहीं मिला मेरे पे गुजारा करना। तो फिर ये राहत मेरे साथ जाया करता था और वहाँ पे हम दोनों इकट्ठे शो किया करते थे। या दैट वाज अ हेल ऑफ एक्सपीरियंस, आई लव्ड इट, बहुत मज़ा आया था। बाइन थेरापिस्ट थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू माजबीन, बहुत शुक्रिया। एल्बो क्या होता है जी, आज डॉक्स वाइब्स, अच्छा एलो ओके गाइस, सो कम टू द पॉइंट, आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं, और समझने के लिए आपके एक्शंस, आपकी बातें, आपके अल्फाज, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, आपका बिहेवियर, आपका मेल मिलाप, आपका देखना, आपका बनाव सिंघार, आपके बाल, आपके अदायगी, तलफ्फुज, लहजे की मिठास, लहजे की कड़वाहट, मुख्तलिफ अंदाज, कोई जूते देखता है, कोई कुछ देखता है, किसी तरह देख के फिर जज करते हैं, कभी किसी सिचुएशन में आपको देखते हैं, किसी ख़ास सिचुएशन में फिर आपको जज करते हैं, उससे फिर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ओवरऑल एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, जो कि बसा औकात गलत साबित होती है, क्योंकि किसी एक ख़ास सिचुएशन में, किसी एक ख़ास टिपिकल किस्म के एनवायरनमेंट में या सेटिंग में किसी को देखने से मैं समझता हूँ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पर्सन, आप एक फर्द वाहिद को नहीं जान सकते। तो वहाँ पे फिर इसका मतलब है कोई चीज़ रुकावट पैदा करती है जिसे हम समझ नहीं पाते, और अक्सर मेरे जैसे बंदे के साथ तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मेरे साथ बैठा है ये राहत और अक्सर इस बात पे ये झगड़ा भी करता है। ज़रा माइक पे आए, माइक अपनी तरफ करें, बड़े अरसे के बाद अक्सर ये मुझे कह रहे होते हैं यार तेनू बंदे दी पहचान नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम,
0: हाउ आर यू?
1: आई एम गुड फाइन।
0: कितने अरसे के बाद दोबारा माइक पे आए हैं आप?
1: यहाँ शायद दूसरी तीसरी बार,
0: वहाँ पे तो रेगुलर आप मेरे साथ शो कर रहे थे,
1: 101 पे शायद थर्ड टाइम,
0: और वहाँ पे रेगुलर थे, वहाँ पे तो आपकी वजह से लड़कियाँ मुझे भी सुन लेती थी मैसेज आपको आते थे, हाय आप आया करें ना यार एनीवेज ये भी अक्सर जिंदगी में मेरे साथ ये गुफ्तगू अक्सर करते हैं, तेनू बंदियाँ की पहचान नहीं होती, यू डोंट एक्चुअली रिकगनाइज के हु इज हु एंड वॉट इज वॉट, कि बंदा कौन कैसा है। अब किसी बंदे को समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में क्या चीज़ रुकावट पैदा करती है।

0: इस पे मैं चाहूँगा कि आज आप बात करें और मुझे गाइड करें। मेरा सवाल है, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। अरबाब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। कैंसर के बारे में कुछ बता दें। कैंसर एक बड़ा मौजी मर्ज है और इसका इलाज नहीं है। खुदा से दुआ करें ये किसी को लाहक ना हो। अच्छा, आप स्टार के बारे में पूछा आपने। बताएंगे कल के प्रोग्राम में, पूछा करें कल। वैसे तो साइकोलॉजी ऑफ कलर्स पे चली है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू टेल यू। रोशनी इस्लाम की हवाले को मसलाम। ओके राहत साहब, आपने मौजू सुना, व्हाट इज योर ओपिनियन? हमें बंदे को समझने में क्या चीज रुकावट पैदा करती है? अभी या गाने के बाद?
1: गाने के बाद, पहले लोगों को गाना सुन लेना।
0: गाना सुनना था। आप यहाँ पे एक गाना सुनेंगे और इससे पहले मैं बताता जाऊँ, आके मैं कॉल्स भी लूँगा जी। 042-111-000-101 0021-111-001 और एक लंबा आपका मेरा साथ चलने वाला है, क्योंकि अगले आरजे नहीं है और इंटरनेशनल स्लॉट है, इसलिए मुझे रिक्वेस्ट की गई है। सो आई विल बी स्टेइंग विद यू। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, रसाई नहीं है और आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा आप बताएंगे। अपने मोबाइल से आपने SMS करना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पर। एंड थैंक यू वेरी मच जी। ईमान, आपने मैसेज किया, हाय लिखा, हेलो ईमान। आप गीन हैं और इसके अलावा असमा है, नवाल हैं और अली अहमद अली हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के पैगाम शामिल करता हूँ आके मैं। और मेरी इंटरनेट पे पोस्ट है जी, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। देर इज़ अ स्टैटिक पोस्ट, FM 101 लाहौर सर्च कीजिए, FM 101 चैनल पाकिस्तान सर्च कीजिए, दोनों जगह आपको पोस्ट मिलेगी, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। एंड RJ DOX डॉक्स लिख के सर्च करेंगे, मेरी वीडियो स्ट्रीम मिल जाएगी। यस, इसको सर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे मेरे लिंक मिल जाएंगे, मेरे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, YouTube, आजकल मैं स्नैपचैट पे भी एक्टिव हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोना प्ले द फर्स्ट वन, आई लव दिस यार, उनके अंदाजे करो, मुझे बड़ा पसंद आया, आई डोंट नो आप लोगों को आया कि नहीं, आई लव द कंपोजिशन, आई होप चोई साहब थानू भी पसंद आया, उनके अंदाजे करो,
1: बेहतरीन,
0: लवली कंपोजिशन। माला मुगल, हेलो, हाउ आर यू माला? बड़ा नाम रखा है माला, थैंक यू वेरी मच। मेरा कोई कमाल नहीं है, बत्ती एहो जी लाई है, नाल मैं सोना लग रहा हूं, उनके अंदाजे करम, वो एक खास है जिनका नाम लेना तौहीन समझा जाता है, वो वाली नहीं, मतलब आदाब के तकाजे ये हैं, नाम लें तो जुबान जलने लगती है, सामने वो आ जाए तो बदन जलता है।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:56 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और सवाल मैंने जो आज पूछा है कि किसी शख्स को, किसी फर्द वाहिद को समझने में क्या चीज़ रुकावट बनती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि समझना सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए हो, कि मैं इससे मोहब्बत करूँ या ना करूँ, मैं इससे शादी करूँ या ना करूँ। ये होता है, आपने किसी के साथ काम कारोबार करना है तो भी, बिजनेस करना है तो भी, या किसी के अंडर आपने सुपरविजन में काम करना है तो भी, और किसी से अगर कोई चीज़ लर्न करनी है, ट्रेनिंग लेनी है तो भी। जिंदगी के गर्ज के हर मोड़ पे आपको कोई ना कोई शख्स मिलता है, और रोज ही किसी ना किसी शख्स से आपकी मुलाकात होती रहती है, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कभी किसी से धोखा खा के, दगा खा के, डज खा के, कभी किसी के सिखा देने से अच्छे तरीके से। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं राहत, वो मौजूद हैं, और आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिए और मुझे गाइड कीजिए। बाकी इसके अलावा मेरा कैनवस बहुत बड़ा, जो दिल में आता आप बात कर सकते हैं, फ़र्ज़ नहीं है कि आपने यही बात करनी है। अगर आप कहते हैं नहीं मैनू मौजू पसंद नहीं आया, मेरा हाथ थाम है जहाँ दिल करता लिए जाए, मुझे कॉल करें, कॉल भी लूँगा मैं ज़्यादा, और जो दिल करता डिस्कस करें, मैसेज करें। अगर इंटरनेट तक रसाई नहीं है तो अपने मोबाइल से SMS करना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना 4471 पर। और मेरी लाइव स्ट्रीम पे भी मैसेज कर सकते हैं, RJ DOX डॉक्स लिखें, सर्च कीजिए एंड हिट मी विद योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फिजा राजपूत फॉर ज्वाइनिंग। आई विल रीड योर मैसेजेस पहले ज़रा, क्योंकि ब्रेक भी आने वाली है, तो मैं पूछता हूँ राहत साहब से। हाँ जी चोई साहब, व्हाट इज़ योर ओपिनियन?
1: मैं इस बारे में ये कहूँगा कि अगर इसको दो अल्फाज में मैं बोलूँ तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है वो है रिश्ते भी अब ब्रांडेड हो गए।
0: ब्रांडेड हो गए,
1: ब्रांडेड रिश्ते
0: मतलब फुल खाड़ी,
1: हर चीज
0: निशात,
1: मटेरियलिज्म आ गया, झूठ आ गया।
0: अच्छा जी,
1: तो ये शो ऑफ की दुनिया बन गई है, लाइक्स और
0: माइक थोड़ा सा करीब, माइक के करीब हो जाए,
1: लाइक्स और शेयर्स की जिंदगी रह गई है,
0: एडिटेबल हो गया।
1: हाँ जी, तो हर चीज में हमें लाइक्स चाहिए, शेयर्स चाहिए, उसके लिए हम झूठ बोलते हैं। हाँ। और हर चीज को ब्रांडेड बनाकर शो ऑफ करते हैं। तो जब आपकी चीजें ही सही नहीं रही, सच नहीं रही, तो दूसरा बंदा जो आपको जज कर रहा होता है, वो जो वो कदर हुआ करती थी पुराने वक्तों में जो हमने सुनी है, वो चीजें अब नहीं रही, तो उस वजह से अब इंसान की पहचान मुश्किल होती जा रही।
0: पुराने वक्तों में एलियन थे या अभी एलियन है?
1: पुराने वक्तों में इंसान थे,
0: शर्म नहीं आ रही आपको अपना एतराफ करते हुए? मैं तो नहीं है।
1: नहीं, इसमें हर इंसान में फर्क जरूर हो सकता है,
0: झूठ बोलने के अंदाज
1: परसेंटेज होगी, कोई कम झूठा होगा, कोई ज्यादा झूठा होगा।
0: अच्छा, आपने जो बात की है वो दिखावे की बात की, दिखावे और झूठ में क्या फर्क है?
1: दिखावे और झूठ में ये फर्क है कि दिखावा, लाइक दिखावा भी तो झूठ ही है।
0: खूबसूरत बात। हम यहाँ पे न्यूज ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं, मेरे साथ खबरें सुन
1: प्लीज।
2: अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आइंदा बजट में आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट ने पाकिस्तान की GSP+ हैसियत और मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के लिए इटली की हिमायत की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए आज इस्लामाबाद में मुल्कीर पुर आज़म पाकिस्तान कौमी यूथ प्रोग्राम का आगाज किया है। खवातीन की 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान डबलिन में मैच जारी है।

0: जी वेलकम बैक, और वक्त हो चुका है 11:01 और 3 जून 2026 का सैन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थ्रॉपी विद आरजे डॉक्स। और मेरे साथ हैं आज मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, साथी हैं, राहत साहब, चौधरी राहत साहब, और कह रहे थे कि ये लाइक और शेयर की दुनिया। जी सर, प्लीज़ कॉन्टिन्यू।
1: जी तो मैं उसको एसोसिएट कर रहा था कि ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है और एक्चुअल जो हमारी लाइफ है, तो हम इसकी तरफ अब हम लोगों का, इंसानों का रुझान कम होता जा रहा है और हमें लाइक्स और शेयर ज़्यादा चाहिए। हर चीज़ हमने स्टेटस पे लगानी है, हर चीज़ हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगानी है।
0: okay.
1: अपने सामने हमने मोबाइल रखना है, वीडियो ऑन रखनी है और सबको कहते जाना है मेरा शो लाइक एंड शेयर करते जाएं।
0: हाँ यस, जो यहाँ पे आरजे स्पेस डॉक्स पे लाइक देख रहे हैं, लाइक और शेयर किया करें प्लीज़, इससे थोड़ी ऑडियंस बढ़ेगी। अच्छा,
1: हम अपनी नानी और दादियों के वक्त में जब आज वो बातें सुनते हैं तो लाहौर की अगर बात करें तो वो उस वक्त पे रंग महल जाया करती थी, चरा बाज़ार जाया करती थी। उस वक्त कोई ब्रांड्स नहीं थे, सादी ज़िंदगी थी, सादी ही हर चीज़ थी और ज़िंदगी बहुत सहल और आसान थी। आज हमने वो सारी चीज़ों को मुश्किल बना लिया है। ये ही मेन एक जो है ना वो पॉइंट है जिसमें जजमेंट में फ़र्क आ जाता है। जो मेरा यहाँ पर यही पॉइंट है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनाई, दूसरों के लिए वो मुश्किल हो गया आपको जज करना।
0: तो आपका कहना ये है कि एक्चुअली बनावटी हो गया सर,
1: बनावटी हो गई हर चीज़,
0: जिसकी वजह से आर्टिफिशियल हो गया, जिसकी वजह से आपको असलियत का पता नहीं चल पाता। रियलिटी तब पता चलती है जब आपको डज लगती है।
1: आप मुझे बताएं कि 90s में पाउट होता था उस वक्त में सेल्फी वाली स्माइल होती थी।
0: वो तो मेरा ख्याल मोबाइल ही नहीं थी अवेलेबल।
1: अब पिक्चर लेते हुए हम पिक्चर में कितने वो खुशगवार मूड में लग रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली शायद उस मूड में वो
0: जिस तरह हम
1: नहीं होते,
0: स्कर्दू में थे और फिर अच्छा चल यार बात चला देंगे, फोटो स्माइल तो कर ले यार, स्माइल कर ले।
1: हाँ,
0: फोटो में स्माइल करते हुए ऐसे लगता है ओ नहीं देवर हैप्पी, उन्होंने पता होने कमरे च लड़के आए ने पूरा केक ओदे मुंह ते मल दिता।
1: बिल्कुल,
0: और वो कह रहा बर्थडे मेरी और तुम्हें जलील कर।
1: नहीं खैर, हम वो तो हम तो एक एक मोमेंट की कोशिश करते हैं एंजॉय करें।
0: हाँ, हमें मजा आता है तंग करके। हाँ, भी है
1: उसमें भी हम मजा ढूंढ लेते हैं।
0: तो ओके जी, ये पहला ओपिनियन आया कि आर्टिफिशियल हो गया सब कुछ, बनावटी पाना आ गया, जिसमें हम चाह रहे होते हैं कि जो असल है वो छुपा रहे, जो मेकअप करके हम या फिल्टर के थ्रू जो चीज़ें आ रही होती हैं वो आगे प्रमोट होती रहें, जिसकी वजह से रुकावट आती है असल को पहचानने में। ये है एक ओपिनियन, और आप भी मुझे बता सकते हैं 0422111001 पे। पहली कॉल लेते हैं, पूछते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नहीं बोल रहा। वो ये चल भी रहा है कि नहीं? हेलो, एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ से पंगा हुआ है। हाँ जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ?
2: अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम FM 101 रेडियो पाकिस्तान से सर, आपको वेलकम, खुशावदी जी आया नु, अहलन व सहलन मरहबा बली करी आया नु, ते बखैर आगड़े, कैसे हैं सर आप?
0: कैफ हबीब, कैफ आली बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, कैफ या हबीब?
2: हमारा अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आंटी हमारा
2: आया
0: ना हमारा
2: सारी, इतनी भी ना अरबी बोले, मैं गई मुझे नहीं आती इतनी अरबी।
0: ये फिर रटिया इंट्रो कितों बोल लिया तुसी?
2: हाँ जी,
0: अच्छा बताएं हमारा
2: सर। माशाल्लाह आप जब भी आते हैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आते हैं।
0: अच्छा जी।
2: और जो आपके साथ भाई बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि वाकई में इस जो आपका दौर चल रहा है ना उसमें शोबाजियां बहुत ज्यादा है, शो ऑफ करते हैं लोग हर चीज को,
0: फ्लेक्स और, you know, फ्लेक्स मारते हैं, फ्लेक्स इसको कहते हैं, फ्लेक्स मारना।
2: जी बिल्कुल।
0: और ये अच्छा लगता है, आजकल बड़ा ट्रेंड में है फ्लेक्स मारना, शो ऑफ पुरानी बात हो गई, अब नहीं शो ऑफ का लफ्ज नहीं बोलते, फ्लेक्स बोलते हैं, फ्लेक्स।
2: जी, बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है।
0: बिल्कुल सही, जिस तरह मेरे भी अंदर एक औरत है कभी कभी जाग जाती है।
2: सर आपकी तरह मैं भी नहीं लोगों को पहचान पाती, धोखा खा लेती हूँ।
0: कोई बात नहीं है, इसका भी अपना ही मजा है, ये भी खाने की चीज है, खाती रहा करे कभी कभी।
2: इतना भी ना खाए कि कोई पैरों के नीचे रोन के चला जाए।
0: हाँ ये एक टेंशन वाली बात है।
2: हाँ, पहले तो
0: वैसे क्या आपको क्या लगता है क्यों आपको लोगों की समझ नहीं आती?
2: मुझे लगता है कि मैं हकीकत में रहना पसंद करती हूँ, शायद इसलिए।
0: और लोग आपको किधर, ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं?
2: नहीं, शायद वो मेरी जो जो हकीकी बातें हैं ना जो मेरे दिल में है वही जुबान से होती हैं, शायद इस वजह से वो मेरे साथ नहीं रहते।
0: हाँ, तो फिर इसका क्या तोड़ क्या है?
2: इसका तोड़ ये है कि नहीं तो ना सही, गुड बाय,
0: टाटा, बाय बाय, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते।
2: हाँ जी ऐसे ही है सर। ये क्या बात हुई कि आप एक इंसान को झूठी तरीफे करके पहले आसमान पे चढ़ा दो, बाद में वहां से छोड़ दो और वो ड्रम नीचे आके जमीन पे गिर गए।
0: तुसी मेनू आसमान तक पहुंचाओ, मैं थल्ले नहीं आवांगा, क्यों चढ़ाओगे?
2: नहीं सर, आप आ भी नहीं सकते माशाल्लाह,
0: आसमान से नीचे
2: आपको इसी तरह बुलंद रखेगा।
0: वो मुझे एक वाक्य याद आ गया, राहत इंदूरी साहब बड़े अच्छे शायर हैं, इंतकाल फरमा गए। वो कहते हैं इधर मैं कोयटा में आया था एक मुशायरे में ना, अभी मैंने पहला लफ्ज बोला और एक साहब जो है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं लफ्ज बोलूँ तो वो गालिबन मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इधर पीटीवी के चेयरमैन भी रहे हैं, बहुत बड़ा नाम रहा है उनका, है कुता डिजाइन चना, बहुत बड़ा नाम है, फैज़ अहमद फैज़ वगैरह इनके साथ के पाए के थे, वो बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब का। वो माइक पकड़ के दरमियान में एकदम बोले, वो कहने लगे, मियाँ जिस तरह से तुम खुदा को पुकार रहे हो, अगर खुदा ने एक मरतबा याद कर लिया ना तुम्हें तो मैं पहले आसमान ते गया, उत्ते फिर उत्ते ही नाना चला जाऊँगा।
2: मोहब्बत के रंग भी अजब है, ये इश्क और मोहब्बत के रंग भी अजब है, पानी उसे और खोना नहीं है, जिस शख्स खातिर तेरा ये हाल है मोहसिन, उस शख्स ने तेरे मर जाने पे रोना भी नहीं है।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है हमारा भी सिर्फ आके अपना ही वो परेशानी का इजहार करके गई हैं और हाल उनके पास भी कोई नहीं है, सिर्फ
1: इसके साथ ना ये भी पूछें कि किस तरह से इंसान को हम पहचान सकते हैं, एक सवाल ये भी होना चाहिए ना साथ।
0: सर वो अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ना रुकावटें, तो रुकावटें दूर होने का मतलब ये आप पहचान लेंगे, इसीलिए रुकावटें का आपने आइडेंटिफाई की। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
3: क्या हाल है आपके?
0: अच्छे हैं।
3: अच्छा, और आपके साथ बड़े भाई को भी मेरा सलाम।
1: जी छोटी बहन आपको वालेकुम अस्सलाम।
3: वालेकुम अस्सलाम। पहले भाई मेरी कॉल मिली थी आपको, आपकी आवाज आ रही थी लेकिन मेरी आवाज शायद
0: मैंने यकीन नहीं सी आ रहा ना, मेरे शो च पहली कॉल कुड़ियां दी दो आ गई है, हैरत दी गल।
3: नहीं तुसी कहंदे रहंदे ने कुड़ियां आंदी नहीं है।
0: क्या नहीं आती?
3: तो आ गई है ना।
0: हाँ, क्या
3: आप
0: तुम्हारा बंदा सुन रहा है, ध्यान से बात करना। अच्छा
3: नहीं कहते।
0: हाँ जी रिमशा, आप बताएं, आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है।
3: बिल्कुल सही बात है भाई, आजकल के दौर में दिखावा सबसे ज्यादा है, लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं और जेलसी फील करवा रहे हैं, लेकिन मुझे इसका हल ये है कि अगर आपको क्या हुआ?
0: नहीं नहीं आपको नहीं कहा मैंने, आपको चाबी नहीं दे रहा मैं। अच्छा हाँ बोलो बोलो।
3: मैंने ये है कि भाई मैं तो ऐसा करती हूँ, अगर अगर ऐसा हल निकालना हो ना तो उनको जेलस थोड़ा सा करवाना चाहिए, जेलसी फील करवानी चाहिए।
0: अच्छा ठीक है, फिर समझ में आ जाता है बंदा।
3: मेरी समझ में आ जाता है, वो इंसान के रवैये से पता चल जाता है, उसके रिएक्शन से पता चल जाता है वो कर क्या रहा है।
0: वो जेलस करा के तो बंदा छोड़ के चला जाता है, समझ कहाँ से आएगा।
1: इसी की तो रेस लगी हुई है, सब फ्लेक्स क्यों मार रहे हैं, यही तो पॉइंट है।
0: जेलस
3: क्योंकि आजकल का दौर जो है ना, आपको पता कैसा चल रहा है, हर चीज पे फिल्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। हम शो करवा रहे हैं कि जी आज हमारे पास ये कुछ है, ये शो हम लोग शो इसलिए करवा रहे हैं जी हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारे पास जो है हमारे लाइक भर जाएंगे, हमारी पूरी मतलब हम मशहूर हो जाएंगे। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ज्यादा शो चीज नहीं करवानी चाहिए हमें।
0: मतलब आपके पास भी ना मेरी तरह को हल नहीं है इस रुकावट को दूर करने का, है ना।
3: इस रुकावट को दूर कर कैसे सकते हैं आजकल के दौर में, तो भाई अगर हम किसी को मना करें तो वो कहेंगे कि जी तुम कौन होते हैं हमें मना करने वाले, हम जो मर्जी करें।
0: सही कह रही हैं आप,
3: जिंदगी एक बार मिलती है, हर जिंदगी में हर इंसान को अपना अपनी मर्जी करनी है। वो अगर हम किसी को कुछ कहेंगे तो वो यही आगे से जवाब मिलता है कि जी तुम कौन होते हैं हमें मना करने वाले, हम जो मर्जी करें,
0: बिल्कुल
3: हम जो मर्जी करें। इसका हल अगर कुछ हो तो, लेकिन मेरी नजर में शायद
0: मैं समझ
3: अगर हाँ ऐसा हो कि अगर हम प्यार से अगर किसी को मना करे तो वो बाज आ जाए। तो
0: रिमशा का ना रिसेंटली अभी निकाह हुआ और मुझे लग रहा है कुछ अरसे बाद रिमशा ने कॉल करके कहना मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली। है ना।
3: लेकिन ये है कि भाई मैं तो जो मना कर देती हूँ वो बाज आ जाते हैं।
0: अच्छा जी,
3: आगे अभी जिंदगी स्टार्ट तो नहीं ना हुई।
0: नहीं नहीं, मोहब्बत होती है ना फिर बंदा सुन नहीं लेता ना इसलिए।
3: नहीं अगर कहते हैं कि अगर बात सुनती रहे, अगर बात सुनते रहो बीच में, अगर थोड़ा सा खींच खिचूर के रखो तो फिर बंदा सेट रहता है।
0: चल चले, थैंक यू रिमशा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल।
3: आप कब शादी कर रहे हैं, आप तो कर ही नहीं रहे।
0: हाँ नहीं मैं नहीं कर रहा जी।
3: नहीं आप क्यों नहीं कर रहे, आप
0: मुझे मना किया हुआ, मुझे डॉक्टर ने कहा शादी करोगे मर जाओगे।
3: अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे आपकी लंबी उम्र हो। लेकिन आप कह रहे हैं हम भी सुनना चाहते हैं कि जी आज डॉक्टर भैया की भी शादी होगी, आज
0: इंशाल्लाह
3: कि आज डॉक्टर भैया के हमने आज मेरी बीवी ने
0: पहले रुकावट दूर कर ली है, उधर बात गल करने
3: कौन सी रुकावट होती है।
0: अभी इस मौजू पे बात कर रहे थे ना इसका।
3: ओके जी, ओके, आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, समझ
0: थैंक यू
3: सुनने वाले
0: पटना, अल्लाह
3: हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़। ओके ओए होए होए होए, गल कितों चलती है जाके कितने मुक जाती है, ये तो थले नहीं आते। अच्छा जी, माजबीन के मैसेज आए थे, मैं ज़रा ज़रा लाइव वाले भी कुछ मैसेजेस शामिल करते थे, हम काफ़ी ज़्यादा हैं। वो बहुत कुछ जल रहा है, पता नहीं क्या जल रहा है, वो पानी शानी फेंक के ना नहीं जलेगा फिर, आग नहीं लगती। आज डॉक्स वाइफ ने कहा लुकिंग ग्लास, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। हुमैरा फयाज कहती हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम, जीते रहें, बहुत शुक्रिया जी। फिजा राजपूत माशाल्लाह टॉपिक बता दिया। माजबीन कहती हैं आज डॉक्स जिनके साथ ज़िंदगी गुजारी न जा रही हो उनके साथ क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या बर्दाश्त करते रहना चाहिए। देखें ज़िंदगी गुजारी नहीं जा रही और फिर भी साथ हैं तो अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं ना। और आपका ये जुमला कहना या कोई भी और भी कोई शख्स ये बात करे तो इसका मतलब है अंदर बगावत हो चुकी है और उस बगावत को साथ लेकर किसी के साथ आप चल नहीं सकते। बेहतर है कि निकल जाएं, छोड़ दें, या तो अपने बगावत का खुल खुला के इजहार करें और वजूहात बयान करें, उस शख्स को समझ आ जाए फेयर इनफ, नहीं आती तो फिर आगे बढ़ जाना बहुत बेहतर है। अच्छा जी, बिस्किट और मीठा काम, वो चाय नहीं आई आ रही है। आज डॉक्स वाइफ ने कहा जी मीठा काम तो बिस्किट। और ज़िलहज की मुबारक दी, ईद गदीर की मुबारक दी जी, आप सबको भी मुबारक हो जी। वो शख्स बजाते खुद रुकावट बन जाता है जब वो शख्स अपने आप को आपके सामने खोलने से हिचकिचाए, अपना आप छुपाए, फिर मतलब जो छुपा रहा है वो हिचकिचाहट। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना रैंडमली कोई बंदा आके पूछे हाँ भी क्या करते हो, कितने पैसे कमाते हो, मैं तो नहीं बताऊंगा। अब उसमें क्या कहेगा, कोई भी जाके मेरे बारे में ओपिनियन बनाना शुरू कर दे, देखा मैंने इससे पूछा है हिचकिचाया, बंदा ठीक नहीं आएगा क्यों जी।
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: बड़े बूढ़े तो कहते हैं जब कोई काम का इरादा करो, उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो अभी फेज में हो, मेच्योर ना हुआ हो, तो खामोशी इख्तियार रखो जब तक कि वो अमल में ना आ जाए, उसके बारे में गुफ्तगू ना करो।
1: खामोशी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा टूल है।
0: तो ये फिर ये तो ना हुआ कि जी आप उसे जज करें कि नहीं ये बंदा नहीं सही,
1: नहीं टाइम देना चाहिए,
0: है ना। और इतना डीप टॉपिक, ध्यान नल फिदा डेगी ना पैना बेच। मुझे आज पहले दिन जैसी वाइब आ रही है। ओके, फरा कहती हैं हमारी सेल्फ अजम्पशन हमें दूसरे को सही समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हम सामने वाले को क्राइटेरिया पर जज करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ के हम उसे उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखें। कंपैरेटिवली आपकी बात ठीक है, किसी हद तक ठीक है। अब देखें, मेरी अगर ज़बान है, मेरा ब्रॉटअप है US या UK वाला, यूरोप वाला, और पाकिस्तान में आऊँगा तो मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूँ उसके मुताबिक देखूँगा। हम जब यहाँ से जाते हैं ना किसी दूसरे मुल्क में, तो वहाँ पे जाके उधर की रवायात को, उधर की रसूमात को, उधर की हरकत को अपने इधर के माशरे इधर प्रैक्टिसेस के मुताबिक जज करते हैं, और फिर यहाँ पे आके कहते हैं ओए होए होए उत्ते ते बच्चा जमदी अंग्रेजी बोल रहा है। क्योंकि हमारे लिए तो इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ा वो मियार है ना।
1: हालांकि हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि यहाँ बच्चा पैदा होते साथ ही पंजाबी नहीं बोलता।
0: पंजाबी बोलनी चाहिए, पंजाबी आनी चाहिए। हम पंजाबी बोलने को शर्मिंदगी का बायस समझते हैं।
1: ये भी एक फ्लैक्स है।
0: वो कहते हैं ओ पंजाबी बोल रहा पेंडू। भाई ठीक है, पेंडू है तो फिर पेंडू ही सही। पंजाबी जबान है, जबान ने आपके पेंडूपन को डिफाइन नहीं करती। पेंडूपन वैसे क्या है जी, वो गांव से या पिंड से आया, वो एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ये नहीं है। वो एक जुड़ गई गलत एक तहरीक उठी दिमागों में, वो जो इलिटरेट था उसे पेंडू कहना शुरू कर दिया। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, पढ़े लिखे जाहिल आपको बेशुमार मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल ऐसे ही।
0: एनीवेज उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सजाद अली लाडलाल ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, आपने वेलकम किया, और नाइस शो नाइस लुक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लाइव स्ट्रीम रुक रही है, अभी बेहतर हो गई है। मुझे लगता है झूठे वो हैं जिसमें अपनी बुराइयों को छुपाया जाता, झूठ वो है जिसमें अपनी बुराइयों को छुपाया जाता है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। दिखावा वो है जो इंसान काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी नीयत में बेईमानी होती है, उसे दिखावा कहते हैं। और झूठ वो अपनी बुराइयों को छुपाना, सिर्फ बुराइयों को छुपाना झूठ है। मैं तो अक्सर ही कह रहा हूँ ना मैं बहुत बुरा हूँ, इसका मतलब है मैं सच्चा हूँ ना, मानते क्यों नहीं। चलें ठीक है, मौजू फिर से अच्छा जी। वाईफाई की स्पीड देखी है वो भी ठीक है जी। सदीक डार साहब हैं जी, हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी। कवलनाथ आज डॉक्स, लोग असल दिखाना ही नहीं चाहते, लोग झूठ और बनावटी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। मैं एक दफ़ा ये मैसेजेस पढ़ लेता हूँ ना, फिर आगे बढ़ेंगे। फ़लसफे इश्क में पेश आए सवालों की तरह, हम परेशान ही रहे अपने ख्यालों की तरह। शीशा घर बैठे रहे जिक्र मसीहा लेकर, और हम टूट गए कांच के प्यालों की तरह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी नींद में, कभी होश में, वो जहां मिला उसे देख कर ना नजर मिली ना जबां हिली, यूं ही सर झुका कर गुजर गए। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो सवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। उन्होंने शादी कर ली होगी ना, आप भी कर लेते सवर जाते। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। हाय आले नूर, हाउ आर यू। अच्छा जी ओके, हीमून लगा रही है, हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान के बाहर यूरोप में कहीं बैठे सुन रहे हैं, मैं भूल गया क्या हाल है आपके। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? सलाम किया आपने, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज जी। ओके ठीक हो गया जी, ये कैमरा तो बैक करें, हम भी भाई को देखें, दिखा देंगे जब दिखाना होगा। अच्छा जी, बच्चे भी बोलेंगे, ठीक हो गया, आपस में लगे। डॉक्टर राहत अंधूरी साहब के जिक्र पर, अंधूरी साहब के जिक्र पर आरजे ख्वाजा इम्तियाज साहब कहते हैं, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब, मुझसे बिछड़ कर वो भी कहां पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। बहुत अच्छा जी। ओके थैंक यू वेरी मच जी. नाउ आई गोना रिपीट द टॉपिक. आबिश जरताश ने हमें ज्वाइन किया. वालेकुम अस्सलाम. मौजू ये है कि किसी शख्स को समझने में जो हमें चीज़ रुकावट पैदा करती है वो क्या चीज़ है. अब मौजू थोड़ा सा आपने थोड़ा सा मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ जो मैं मौजू लेके आता हूँ ना ये मेरे अंदर से सवाल आता है. जो मेरे अंदर से सवाल आता है ना इसका मतलब है उसका पहला और वाज़े और स्पेसिफिकली पहला ताल्लुक मेरी अपनी ज़ात से है. और मेरी ज़ात के अंदर मुझे प्रॉब्लम आई तो मैंने सवाल की शक्ल में रखा. आपको प्रॉब्लम आती है, आपने कई जगह पे दिल तोड़वाया, कई जगह पे पैसों को लॉस किया होगा, कई जगह पे काम कारोबार में डस खाई होगी, गलत बंदे से ताल्लुक बनाकर बहुत सारी जगह पर. तो वो आपने खाई, वो मैंने खाई. इट इज़ अबाउट मी. बाहर ना देखें कि लोग क्या करते हैं, थ्योरी क्या है, क्या कहा जाता है, कौन क्या करता है, चैट जीपीटी क्या कह रहे हैं, गूगल क्या कह रहे हैं, लोग किस तरह का रवैया रखते हैं. मेरा मकसद ये होता है यहाँ पे आके बात जो करनी है मैं अपनी बात करूँ. और मैं चाहता हूँ कि आप भी जब बात करें अपने अंदर की बात करें. उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता आप उम्र के किस हिस्से में हैं. ये वो मौजू है, ये वो चीज़ है जो उम्र के हर हिस्से से ताल्लुक रखती है. आप 40-50 साल के हैं धोखा खाएंगे, आप 18-20 साल के हैं तो भी धोखा खाएंगे, दिल तब भी टूटेगा, दिल अब भी टूटेगा. निगत गुलाब, हाय हाय हाय, निगत ही है ना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप. गुलाब का नाम पढ़ते ही नज़ाकत सी आ रही है बोलने में. तो धोखा तो इंसान खाता है. सो आई वॉन्ट यू टू लुक इन टू योर सेल्फ, अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांकें और फिर बताएं कि क्या चीज़ आपको रुकावट पैदा करती है. ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे रुकावट पैदा करे वो आपको करती हो, वो आपके लिए बड़ी आसान होगी. जो आपको पैदा करती हो एन मुमकिन है वो मुझे पैदा ना करती हो. जो राहत को करती है मुमकिन है मुझे ना करती हो, और जो मुझे करती है वो राहत को ना करती हो. इसीलिए तो अक्सर वो भी समझा रहा होता है चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे करें. सो थिंक अबाउट इट. कहीं आपकी ईगो या मेरी ईगो तो नहीं अक्सर समझने में किसी को प्रॉब्लम करती. जैसे पिछले दिनों हमारी लड़ाई हुई, किसी बात पे झगड़ा हो गया. हम ईद के पहले दिन लड़े, हम ईद के दूसरे दिन लड़े, हम ईद के तीसरे दिन लड़े, हमने ईद के चौथे दिन सुलह की, हमने ईद के बकरा ईद पे अच्छे बकिए उधेड़े, बोटियां को के कसाई बांध के एक दूजे नु रगड़ दिता सी. तो बात ये है उसमें फील ये करता हूं मैं, देयर वाज समथिंग रिलेटेड टू द ईगो. कहीं ना कहीं अना ट्रिगर हो जाती है अनअनाउंस्ड किसी एक नुक्ते पे. और उस दिन भी ऐसे छोटे से मामले पे अच्छी खासी ट्रिगर हुई और फिर वो राहत मुझे उठा के साइड पे ले गया, ऐसे मुझे उठा के साइड पे ले गया और कहीं डिस्कशन हुई. मुद्दा क्या था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. मुद्दा वो नथिंग.
1: खूबसूरत लाइन है. मुद्दा क्या था? कुछ भी नहीं.
0: मुद्दा कुछ भी नहीं था, बस महज सिंह फंस गए कि ओ कवे सॉरी. वो झुके, वो झुके. बात सिर्फ इस पे आगे ठहर गई थी. तो हमारी मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ईगो भी बड़े मसाइल पैदा करती है किसी को समझने में, किसी एक खास सिचुएशन में. और उससे होता ये है कि हम कहने चल फिर निकल, मैं भी कहा जा फिर ना मिल.
1: सही बात.
0: दिस इज द रियल एग्जांपल. मतलब इतना पुराना दोस्त है, मैं कहा चल जा ना मिल. उसके बाद फिर तीसरे दिन लड़ाई, चौथे दिन फिर ऐसे बैठ के लड़ते पे. मैं कहा ठीक है ना मिलो, कसमा नो. फिर निकलते, वो मुद्दा क्या निकला?
1: कुछ भी नहीं.
0: महज एमी. और चौथे दिन मैं दो बंदे अनल सिंह फसाए सी.
1: मुद्दा क्या था? कुछ भी नहीं.
0: एनीवेज यू कैन कॉल मी. दिस इज द क्वेश्चन. ये तो मैंने एक पॉइंट सामने रखा. अब मैं चाहता हूँ आप अपने अंदर झांके. मेरे आने का मकसद तभी है यहाँ पे सक्सेसफुल जब आप और मैं इस चीज़ को जान पाते हैं. अक्सर हम एक ताल्लुक, एक अच्छे रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं और वो उसकी वजह क्या होती है हम शायद समझ नहीं पाते अगले बंदे को. और कभी हमारी अना इस कदर बड़ी हो जाती है कि हमें समझ ही कुछ नहीं आती. एनीवेज और इसके अलावा किसी को समझने में क्या रुकावट होती है, आई वांट यू टू टेल मी। अक्सर दिल टूट जाते हैं बाद में, रोती रहती हैं, रोते रहते हैं, ओ यार ओ नहीं बड़ी चंगी होंगी सी यार, ओ नहीं यार मैंने उसके साथ जाती की नहीं, यहाँ पे मैं गलत था। लड़कियाँ भी कह रही होती हूँ मेरे से बहुत गलत हो गया ना, नहीं वो बहुत अच्छे थे, वो ख्याल करते थे। बाद में याद आता है भाई पहले कर लेना, पहले आप तराजू लेके फिरती रहती हैं, फिरते रहते हैं, नहीं ये तुम ऐसे करो ये ऐसे करो, कहीं पे अपनी ईगो को सामने रख के फड्डे बनाए रखते हैं और समझते नहीं हैं, फिर जब चला जाए तो फिर बैठ के गोडियां जैसे देख रोंदे रहते। एनीवेज मैं ठीक हूँ जी, आप सरताज, थैंक यू वेरी मच जी, विटामिन की गोली नॉट कमिंग स्लो, कमिंग स्लो जी। आले नूर ने हाय किया, हेलो हाउ आर यू। अच्छा जी अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, गाना लगाते हैं, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए, कहाँ कहाँ से गुजरे, रेडियो के पास से भी कभी गुजरे तो कुछ लेते आइएगा। अच्छा जी आपके लिए, आपकी शख्सियत के लिए, आंखें तेरी दीद का कासा लिए हुए फिरती हैं दर बदर फकीरों की तरह। हेलो ऐ की गाल लोई, ऐ की कहता है। अच्छा आपकी आंखें फेरी हैं, मेरी तो नहीं ना भाई, ठीक है। अच्छा जी ठीक हो गया, अभी मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर होगी जी। स्ट्रीम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। निखते गुलाब आई एम फाइन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज जी, व्हाट अ नेम। और अभी आई टेक योर कॉल जी 04221100101। दिलचस्प होता है इंसान का अंदाज जब वो खुद में मगन हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मेहरबानी जी, जनाब अली
4: आप ठीक है? सबसे पहले जो आपके मेहमान हैं उनको शामिल कहते हैं
0: जी। ठीक ठाक जी, बड़ी मेहरबानी।
4: हाँ तो राहत भाई, राहत वाली बातें कर रहे हैं तो, लेकिन ये जो अभी आपने ये जो तमहीद बांधी है ना ईगो की, अना की, ये हमारे उर्फ में, हमारे हाल में, हमारे बाजी में हम इसको प्रॉपर एक साथ चल रहे होते हैं, इसकी वजह से हम सामने वाले को समझ नहीं पाते। सामने वाला जितना मर्जी कहे कि जी मैं वैलिड हूँ या मैं ये हूँ, वो जब ईगो आ जाती है ना बीच में, जब हम खानदानी कहते हैं कि जी हमारे खानदान के बड़ों ने भी ये किया, हमने भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलना है, तो फिर हम एक दूसरे को जज नहीं कर पाते।
0: बिल्कुल सही।
4: उसकी वजह से हम जो डरते रहते हैं, तो अगर हमने बात की तो वो ना आएगा हमारी नाक काट के, ये बड़ा बड़ा इशू है नाक का।
0: ईगो अना
4: जी,
0: बिल्कुल सही।
4: हाँ जब तक हम खानदानी गुलामी नहीं ना छोड़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते।
0: खानदानी गुलामी से मुराद ये रसूम और रिवाज जो चले आ रहे हैं
4: जी, यानी कि एक ना मिसाल के तौर पे कि हम हमारे अबू हैं, उन्होंने किसी से अपने भाई से झगड़ा किया, तो ये जरूरी नहीं है कि आके जो मैं हूँ और मेरा कजन है यानी कि चाचू का बेटा या ताए का, ये जरूरी नहीं है कि हम भी लड़े। इसको हमने छोड़ना है। अगर उन्होंने किसी वजह से कोई उनकी एलिगेशन होगी या कोई प्रॉब्लम बन गया, वो उनका मैटर है। ये नहीं है कि वो कह रहे हैं जी हम भी लड़ते रहे, आप भी लड़ते रहे।
0: बहुत अच्छी बात।
4: हमने ये कत्ल किया यानी कि हमने किसी को टेंशन दिया कि आप भी टेंशन नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये शर्त नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात।
4: हम इसको साथ लेके चल रहे हैं। या हमारे अम्मी ने ये किया, हमारी अम्मी ने, या हमारे अब्बू ने, या हमारे भाई ने टेंशन झीलियाँ, हमने भी वही काम जो उसने किया, हमने भी टेंशन लेनी है और देनी है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे, हमको नहीं पता चलेगा कि सामने वाला असल है कि नकल है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की उस्मान भाई, छा गए, थैंक यू वेरी मच।
4: उसकी वजह यही है कि जब अनाज छोड़ेंगे, जब हम अपनी जिद्दें छोड़ेंगे ना, कि हम अपनी जात से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के देखेंगे कि बाहर का माहौल क्या, फिर हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे क्या करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल ठीक, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की, थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। और बड़ा अच्छा आपने कहा कि जी बिला वजह के खानदानी रसूम और रवाज और उसको लेके नहीं चलना चाहिए कि साड़ी नक ना कटी जाए। बहुत अच्छी बात की,
4: ये नाक को हम जो जब तक हम नाक को छोड़ेंगे ना नहीं ना छोड़ेंगे हम ऐसी हम असल और नकल की पहचान नहीं करेंगे, चाहे सामने वाला सोने का बन जाए, सामने वाला हीरे का बन जाए, चाहे दलीलें दे या आसमान पे चला जाए, जमीन पे चला जाए, जहां मर्जी चला जाए,
0: मैं मुछा समेत रखी हुई ऐनक भी लगी हुई है, रख लै ऐनक मुछा वाली नाक है तू ला लै,
4: इसके ऊपर कलर भी लगाए ना।
0: हाँ नहीं है वो अगले उसकी मर्जी है ना जी, वो खुश होता रहता है, मैं ओदी नाक रख लई जे
4: क्योंकि वो ऐसे फिर हो जाएगा ना, अगर कलर होगा ना तो फिर उसको पता है यार मेरा जैसा कलर ऐसी मेरी नाक है, जैसे का मैं वैसे के सामने वाली नाक है, फिर एक बैलेंस हो जाएगा एक।
0: चले उस्मान भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी, बहुत शुक्रिया
4: जी, ओके
0: ओके अल्लाह हाफिज़। अभी यहाँ पे कुछ लगाते हैं जी, पहले मैं 4471 के मैसेजेस पढ़ लूँ और आज का सवाल फिर से दोहराता जाता हूँ जी। अक्सर हम जिंदगी में लोगों से मिलते हैं, कहीं प्यार मोहब्बत का सिलसिला, कहीं पे लाइफ पार्टनर चुनना, कहीं पे बिजनेस पार्टनर चुनना, कहीं पे दोस्त चुनना, कहीं पे काम नौकरी, किसी से सीखना, किसी को उस्ताद मानना, कुछ भी इस तरह के मामला चल रहे होते हैं जहाँ पे हमें अक्सर लोगों को समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी जगह पे आपको तकलीफ पहुँचती है, आपके इमोशंस हर्ट होते हैं, आप रेड फ्लैग बहुत ज़्यादा देखे जा रहे होते हैं, आप बाद में छोड़ देते हैं, रेड फ्लैग है यार फ़र्क करो इसे, ऐसे है ये बंदा ठीक नहीं है, बंदी ठीक नहीं है, या दोस्त ठीक नहीं है, ये पार्टनर ठीक नहीं है। वी शुड लर्न कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंदर से वो क्या चीज़ है जो हमें बता सकती है कि ये चीज़ रुकावट है, इसको अगर दूर कर लें तो हम किसी शख्स को समझ सकते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू टेल मी, इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0422111010421100001। और अगर इंटरनेट की रसाई नहीं है आपने SMS करना है 101 लिख के पैगाम लिखना है आपने और इसको भेज देना है 4471 पर, और आपका मेरा साथ अभी होगा, रहमान अनवर नहीं आएंगे तो लंबा चलेगा। अभी मैसेज पढ़ता हूँ, ईमान ने लिखा था हाय हेलो, आपगीन ने लिखा रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं, दर्द भी बहुत था, दांत का दर्द हो ना रात को वाकई नींद नहीं आती आपगीन। आपको दांत का दर्द तो नहीं था?
1: मैदे में दर्द था।
0: अच्छा मगर हम रोए नहीं। अच्छा रोए क्यों नहीं, क्या वजह? वो दांत के दर्द में होता है चौधरी साहब, रोना नहीं निकलता, डॉक्टर ने क्या होता है ये रुई जो है ना दांत के नीचे रख के दबा कर
1: टाइमली पेन क्लियर भी ले लेना फिर भी ऐसा।
0: अच्छा कहती हैं कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे कि सोए नहीं, जाग रहे हो किसके लिए और किसके लिए सोए नहीं, आज बता ही दें आपने, खैर बताना तो है नहीं किसके लिए नहीं सोती आप। सलाम है मोहब्बत, वाह क्या बात है, मैं असमा, अच्छा मैं आरजे डॉक्स, कैसी हैं आप, कैसे हैं चांद, मैं ठीक हूँ चंदा, आप सुनाएं ईद कैसी गुजरी, ईद अच्छी गुजरी, अभी बताया लड़ते हुए गुजरी, दुआ है खूबसूरत होंठों की स्माइल हमेशा सलामत रहे, आपकी आवाज़ बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है, ये वाला अंदाज ठीक नहीं सी, खाली बहुत लिखना सी, ये तो मैं वो डायलॉग याद आ जा, बहुत बहुत मज़ा आएगा। नवाज आपको बहुत मुबारक हो ईद गदीर की, आपको भी मुबारक हो जी, सबको मुबारक हो और अल्लाह सब की मुरादें पूरी करे। वो भी अपने ना हुए फॉर्चूनर भी गया हाथों से, वाह वाह वाह वाह क्या बात है अहमद। KPK से सुन रहे अब्दुल नूर आशमी साहब रिवाज गार्डन से कहते हैं आदाब तस्लीम, मेहर फातिमा सुन रही है इस्लाम किया है, वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर, मैं बड़ा मस्त उड़ रहे हैं। फायजा हैदराबाद से, असद मेरा आज खुशी मड़ा, आज खुशी है मड़ा, किस चीज़ की खुशी है आपको, आप लॉन्ग शो करोगी मड़ा, आज हम लॉन्ग शो करेगी, बहुत लॉन्ग शो करेगी, सिस्टर भी साथ शो सुन रही है, सिस्टर का नाम बताओ और सिस्टर से कहो हमको कॉल करे जरा, अभी
1: यहाँ ये नहीं बोले सिस्टर भी कॉल सुन रहा है।
0: अब वो उसने लिखा। अच्छा जी बशारत अली डोगर लालू वाला से, राहत साहब ने सच्ची बात की, क्या बात,
1: क्या बात, गुआहियां मिल रही है।
0: हेलो क्या हाल है, हाय मैं ठीक हूँ, आप बताएं, नाम ने लिखा। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत, आपका हुस्न समात है। आगे मैसेज है, सर लोगों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ये है कि आप अगले को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो वो बात हुई, अक्सर आप समझ रहे होते हैं चाल को, लेकिन आप कहते हैं कोई गल नहीं है, खुश हो जाए, ये वो वाली बात है।
1: ये तो अड़े वाली गल है,
0: खैर
1: यही एंड पे है, खैर है वो चुका
0: है। ओए ओनो की मेनू किन्ना के नुकसान हो गया। सर जी हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। मेरा ख्याल है कि तू मेरा ख्याल है, ऐ मरकज़े ख्याल तेरा क्या ख्याल है, आता है तू ख्याल में कितने ख्याल से, तुझे मेरे ख्याल का कितना ख्याल है। वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। एनीवेज गोना प्ले ट्रैक, यहाँ पे सुनते हैं गाना और उसके बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं है जाना। 11:36 आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आज़र डॉक्स। आके कॉल्स लेते हैं और मेरे साथ है राहत हेडेक। या अंग अंग दुख रहा आज, जाना नहीं है कहीं, वापस आके बात करते हैं। सवाल वही है, किसी शख्स को पहचानने में रुकावट क्या चीज़ बनती है, मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ व्यू अपने अंदर से ढूंढो। जब आपको दगा मिला, धोखा खाया, पहली मर्तबा किसी ने दिल तोड़ा, पहली मोहब्बत जब छूट गई या आपको दगा दे गया, आप जिसके ख्वाब सजाती थी या सजाते थे, पता लगा वो किसी होर नाल ब्याह करके निकल गई या ताल्लुक बना के भाग गई या भाग गया, या पहली दफ़ा बिजनेस वेंचर किया और पता लगा सारे पैसे खा गया और आपको कहा नुकसान हो गया, कुछ भी कहने थे, जस्ट थिंक अंदर से, अपने अंदर से सोचें फिर बताइए मुझे। अगर इंटरनेट की रसाई नहीं है, आप SMS करें, अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस ने अपना नाम और पैगाम लिखें, इसको भेज दें 4471 पर। वापस आकर FM 101 लाहौर और FM 101 चैनल पाकिस्तान वाले मैसेजेस को शामिल करूंगा और मेरी लाइव स्ट्रीम पे आप आके कमेंट कर सकते हैं। RJ DOX डॉक्स लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरी लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों के कमेंट्स मैंने नहीं पढ़े, माजत की कबूल कीजिए, अभी पढ़ता हूँ आके। N04221100101, दिस इज द नंबर यू कैन डायल एंड टॉक टू मी, आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड कॉल्स एज वेल। डोंट गो एनीवेयर, कभी खाक हुए उनके कदमों की, हार्ट टचिंग है यार कलाम।

0: अरे जी वेलकम बैक। वक्त हो चुका है जी 11:47 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरा साथ होता है जी बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। और आज ये साथ आपका मेरा चलने वाला है तकरीबन 1 बजे तक। हाल नूर कह रही है लाइव पे सब सुन लिया मैंने। मैं कह रहा हूँ अब आपने पोस्टर बनवाने हैं, वो पोस्टर बनवा के ना सारे शाया कर देने हैं जो जो आपने सुना, ठीक है। मुझे भी पता था इतनी के बाद जा रही है, मैंने भी वो बातें की हैं जो मैं बताना चाहता था। जुबैर साहब ने ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं और मेरी जुबैर साहब के साथ बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं और जुबैर साहब से मेरा यहाँ आके तारुफ हुआ। सच अ लवली पर्सन, सच अकोमोडेटिंग पर्सन, और बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला, हमने बड़ा काम किया साथ। और ये जितनी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही हैं जो 101 में हुई, इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जुबैर साहब की है। और जहाँ पे बाकी सारी टीम तो है ही है, ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन एक होता है कि बंदा उस आइडिया को एग्जीक्यूट करे और अच्छे तरीके से सारों को लेके चले। और मैं समझता हूँ जुबैर साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है जी। सर अस्सलाम वालेकुम।
1: आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, बहुत ज़्यादा एहतराम देते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, तो ये आपकी मैं कह सकता हूँ आपका हुस्न नज़र है, वरना मुझ खाकसार में ऐसी कोई बात नहीं जो आपने सारी पूरी फहरिस्त बताई।
0: मैं अगर लड़की होती ना तो जिस तरह का बंदा मुझे पसंद होता वो शायद आप जैसा ही होता।
1: वाह वाह वाह।
0: लेकिन एक फ़र्क होना था, मैं कहना सी जा के ना पहले रनिंग करया कर रोज।
1: वो मैंने कर लेनी
0: है, मैं पतला क्राक ही
1: थे मैं कर भी लेनी सी।
0: माशाल्लाह जुबैर साहब की जवानी की फोटोस, ओए क्या बात है। और जुबैर साहब बहुत अच्छे हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं, बहुत क्रिएटिव आदमी, पाकिस्तान से बाहर भी सर्व करके आ चुके हैं, वॉर ट्रांसमिशन में भी आप लोगों ने सुना, और इसके अलावा अक्सर इनके अहम जो इवेंट्स होते हैं 101 का जो पेज है वहाँ पे अक्सर आप इनको देखते हैं। अभी जुबैर साहब आए हैं, इन्हें मैंने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की कि सर बैठे ना ज़रा इंटर्नशिप पर भी छेड़खानी करें।
1: बिल्कुल, इंटर्नशिप से पहले ना एक आपको बड़ी मैं अच्छी बात और अच्छी खबर ये देना चाहता हूँ कि अभी आपने मार्क हक का जिक्र किया, वॉर ट्रांसमिशन की बात की, तो आज हमारा एक आर्टिकल जो रेडियो पाकिस्तान का मैगजीन है आहंग उसमें छपा है।
0: अच्छा,
1: उसमें आपकी मेरी ज़िया की तस्वीर लगी है और वो तमाम रुदाद ये आप देख सकते हैं radio.gov.pk पे।
0: यार मुझे बताएं ना, मैं अपने को नंबर ही टंगा।
1: बिल्कुल जनाब, radio.gov.pk पे आप जाएं और बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आपको आहंग लिखा हुआ नजर आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें
0: पोस्ट करेंगे ना,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब,
0: राइट कॉर्नर
1: वो देखिए, वो ये नीचे आपको नजर आ रहा थोड़ा सा ये।
0: अच्छा,
1: तो इसमें जनाब वो उस रात की सारी रुदात, किस तरह हमने नशियात शुरू की और किस तरह फिर हम लोगों को साथ साथ एंगेज करते चले गए, तो इस पर पूरी जनाब तफसील छपी है। और दूसरा इंटर्नशिप प्रोग्राम का बहुत ज़बरदस्त हमें अब तक का रिस्पॉन्स है, अल्हम्दुलिल्लाह 70 का फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं ऑफिशियली। आज हम ऑन एयर पहली दफ़ा ये बता
0: अच्छा,
1: रहे हैं, 77 के करीब लोग अब तक हमें रिस्पॉन्ड कर चुके हैं,
0: मतलब वो जिन्हें आपने कंसिडर किया, जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन किया,
1: यानी जिन्हें हमने रब्ता किया दोबारा, यानी बाकी तो सबमिशन तो बहुत ज़्यादा हैं, तो
0: देख लेना कीता, मैंने अक्सर मैसेज आया
1: नहीं रब्ता कर रहे हैं जनाब, जिन्हें नहीं हुआ अगले एक दो दिन में जी बिल्कुल हो जाएगा। आज हमने मैक्सिमम लोगों को जिन्हें हमने इन्वाइट करना है उनसे हमने रब्ता किया है।
0: अच्छा, ये मार्क है हॉकी, ये तो बड़ा
1: स्पेशल नंबर है,
0: ये पूरा चला है जी इसमें
1: जी बिल्कुल,
0: और ये पूरा सारा ही है कंप्लीट। हमारी फोटो किस पेज पे
1: आगे जाएंगे आप,
0: मैं अपनी फोटो देखना चाहता हूँ, केड़ी वाली फोटो लाई
1: जाएंगे, वही वही जो हमारा इसमें इश्तिहार था वो उसमें छपा है,
0: इश्तिहार छपा है हमारा,
1: जो हम
0: तलाश गुमशुदा का, तो नहीं
1: तलाश गुमशुदा का, ये आ गया जनाब, ये देखिए
0: आप, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, हम तैयार हैं, बड़ा चासा आती है।
1: और ये याद मुझे आया जवानी की तस्वीर से, आपने कहा ना जो तस्वीर मेरी लगी हुई है आप वो देखे ना, ये पुरानी 2015 की तस्वीर लगी है उस पर,
0: ओए चासा आ गई यार, कल अब ये ना मुझे PDF में डाउनलोड करके भेज दे, क्या बात है, क्या बात है, मैं शो मारनी हूँ। हाँ जी ज़ुबैर साहब, इंटर्नशिप के हवाले से जी हम बात कर रहे हैं, सवाल तो है ही है, मौजू जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इंटर्नशिप ये है, रेडियो पाकिस्तान इज़ अ प्राउडली अनाउंसिंग ऑलरेडी अनाउंस्ड एन इंटर्नशिप प्रोग्राम, और जिसमें हम अकोमोडेट कर रहे हैं जी 28 साल की उम्र तक का जो एज ग्रुप है उसको, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। और रेडियो पाकिस्तान जैसा इदारा, जो एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी पाकिस्तान की जहाँ से पहले बनने की अनाउंसमेंट हुई, जहाँ से आप ये कहें कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो गया वो गया ही रेडियो पाकिस्तान से, टेलीविज़न बना रेडियो पाकिस्तान से, टेलीविज़न के अंदर जो आर्टिस्ट गए वो सारे रेडियो पाकिस्तान से ट्रेंड होके, और बाद में भी एक बहुत बड़ी खेप जाती रही उन्हें बोलने का अंदाज़, उन्हें गुफ्तगू करना, उन्हें आवाज़ के ज़रिए से एक्ट करना, ये रेडियो पाकिस्तान ने सिखाया। और आज जबकि डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, इतना कुछ आ गया, इतनी ऑप्शंस, स्टिल वहाँ पे आपको बोलना आना चाहिए। एल्गोरिथम का एक अलग रोल है, आपको बोलना भी आना चाहिए, आपने क्या बात करनी है, किस तरह से करनी है, अपना कोई आइडिया बेचना, अपने इमोशंस बेचने हैं, कोई एक्ट करना है, कुछ भी कुछ समझाना है। उसके अलावा भी कहीं दफ्तर में नौकरी करते हैं, काम कारोबार कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो रेडियो पाकिस्तान आपको कम्युनिकेट करना सिखाएगा इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में, जो आगे चल के आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। और जिन लोगों ने अभी सुना है उनके लिए बताता जाऊं, आपने FM 101 लाहौर जो है फेसबुक पे सर्च करना है, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर्म पिन किया हुआ है, ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं है तो वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको फिल करके भी भिजवा सकते हैं, और ये भिजवाना है आपने स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर स्टेशन शिमला पहाड़ी, वहाँ पे आप भिजवा सकते हैं। और 12 तारीख लास्ट है जी। और इसमें सवाल ये था कुछ लोगों का कि जी अगर इंटर कर रहे हों लेकिन हमें बोलना बड़ा अच्छा आता है, तो उन्हें मैंने कहा था आप भी सबमिट कर दें, आपका फिर थोड़ा सा इंटरव्यू हो जाएगा, अगर आप में कोई एबिलिटी हुई तो आपको बिल्कुल अकोमोडेट कर लिया जाएगा, एटलीस्ट आप समझने के काबिल तो हों। ये नहीं है कि आपको बोलने का आर्ट आता हो, बहुत अच्छा बोलते हों तो ही आए, नहीं, अगर आपको नहीं आता तो ही तो हम बुला रहे हैं,
1: बिल्कुल ऐसे
0: क्या है ना, हम बोलना सिखाएंगे आपका, फिर जहाँ दिल करे जाके उसको यूटिलाइज।
1: अच्छा, इसमें ना आपके साथ मैं बड़े ज़बरदस्त फिगर्स शेयर करना चाहूँगा, इस पर मैं स्टैट्स जो हैं वो इकट्ठे कर रहा हूँ साथ साथ, तो आप हैरान होंगे सुन के कि इस वक्त 65% ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं, या उनका अपना यूट्यूब चैनल है, या किसी जगह पर वो माइक पे मौजूद है।
0: अच्छा,
1: ये बड़ी मेरे लिए हैरान कुन चीज़ है इसमें।
0: फिर साड़ी बिस्ती ना हो जाए। वो आके साड़ी बिस्ती ना कर दे। ओ नहीं नहीं, आपसे तो बेहतर मैं बोल लेता, जाके मेरा वीलॉग देखें, वीलॉग सुने,
1: वीलॉगर्स बने हैं जी उसमें,
0: है ना। पर हम भी कहें अच्छा ये मैं हूँ, ये रेडियो है, यहाँ पे बिस्ती हो रही है हमारी।
1: नहीं इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़बरदस्त जिस तरह आपने प्लान किया है, और इसकी जब एग्जीक्यूशन होगी तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होंगी,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: और हम तो ये दावा ही नहीं करते कि हम किसी को सिखाएंगे, ये म्यूचुअल लर्निंग होगी, हम उनसे सीखेंगे जो हमारे पास कुछ थॉट्स हैं अपनी उनके साथ शेयर।
0: और ये 2 महीने का प्रोग्राम होगा, 1 महीना ऑफ माइक है, 1 महीना ऑन माइक है, और इसमें बिल्कुल आपको एंड पे सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं तो आपको ये इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, और आपकी क्रेडिट्स में कंसिडर की जाएगी बिल्कुल, और क्योंकि एक इदारा है, सरकारी इदारा है, और सेकेंडली अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, कम अज़ कम बैचलर आपने किया हो, डू अप्लाई फॉर दैट, एंड वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर हियर फॉर यू। अच्छा जी, लेट्स कम टू द पॉइंट जी, टॉपिक आज ये है, ज़ुबैर साहब आप भी मसरूफ़ हैं मुझे पता है, मौजू ये है, अक्सर हमें ज़िंदगी में ना धोखे मिलते हैं, अक्सर लोगों को समझने में दिक्कत होती है हमें, और हम समझ नहीं पाते कि वो शख्स जिसके साथ हम अपनी उम्र का एक ख़ास हिस्सा गुजार देते हैं, या उसके साथ हमारे दिल के मामलात इमोशनल होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, कुछ भी होते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, हमें किसी न किसी मकाम पर धोखा मिल जाता है, तो वो किसी को समझने में जो रुकावट पैदा करती है वो क्या चीज़ होती है।
1: अच्छा, मैं खुद इस मामले में बड़ा खुद कफील हूँ धोखे खाने में, तो ये जो आपकी तरबियत है बुनियादी तौर पर दूसरे को इज़्ज़त देने की और कहीं पर भी सामने वाले को अंडरमाइन ना करने की, ये चीज़ आपको अक्सर इस सूरत हाल का शिकार करवा देती है। जो लोग कहते हैं उन्हें धोखे नहीं मिले, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो खुदगर्ज़ मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं दूसरे को
0: धोखेबाज मिलेंगे।
1: नहीं, धोखेबाज होना हो, लेकिन जो सामने वाला है वो उसको वो ड्यू ऑनर नहीं देते, तो उस वजह से उन्हें धोखा नहीं मिलता। हम जो धोखे खाते हैं कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे, तो सामने वाले को हम एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, वो लेवरेज दे रहे होते हैं कि नहीं ठीक है ऐसा नहीं हो सकता, तो वो चीज़ फिर एट दी एंड आपको नुकसान देती
0: नुकसान
1: है। लेकिन उसके बावजूद हम, चूँकि एक हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम उन लोगों की है जिन्हें चीटिंग जिनके साथ होती है, धोखे होते हैं, वो ये करते रहेंगे।
0: अभी आपसे पहले शुरू में सबसे पहले ये सवाल मैंने राहत से किया, राहत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। राहत ने कहा आजकल बनावटीपन जो बहुत है, हम लाइक शेयर के चक्कर में इस कदर पड़ गए हैं कि हम सिर्फ वो दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, असलियत कुछ पा लेते हैं, फिल्टर्ड लाइफ गुजार रहे हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: फिल्टर्ड लाइफ की वजह से अगर कोई शख्स आपको देखता है तो वो आपकी फिल्टर्ड सेल्फ को देख रहा है, उस जात को देख रहा है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, और छुपी हुई चीज वो पीछे है कहीं असल। और यहाँ पे मुझे वो बात याद आती है, सरकार रिसालत माब ने फरमाया कि किसी शख्स को अगर समझना है, मफहूम है उसका ये कि उसके साथ लेन देन का मामला करो, सफर करो और खाओ पियो, तो आपको पता चलता है वो शख्स कैसा है। तो आप राहत साहब क्या ऐड करना चाहेंगे फर्दर इसमें?
2: मैं इसमें यही कहूँगा कि जिंदगी में कुछ असूल अपने वजह करने पड़ेंगे तो फिर इस मामले से ज़रा बचा जा सकता है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप अपने रिश्तों के मामले में थोड़ा सा रिश्तों को टाइम दें।
0: अच्छा जी।
2: जो भी किरदार आपकी ज़िंदगी में जिन्हें आप परखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा टाइम दें।
0: बिल्कुल सही कहा है, रिश्तों को टाइम दें, फरिश्तों को टाइम देने से पहले
2: बेहतर है। वो वक्त के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं। दूसरा एक मैं समझता हूँ कि कभी भी, अब क्योंकि मीडिया में इतने ज़्यादा हो गए हैं, जज्बात में या गुस्से में कभी भी फ़ोन पर या मैसेज पर लड़ाई नहीं करें। चेहरा जो है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता, इंसान झूठ बोलता है, चेहरा झूठ नहीं बोलता। तो जो भी ऐसे मामला आते हैं, अपनी बातें क्लियर करनी है, वो आमने सामने एक दूसरे के साथ बैठ के करें।
0: चेहरा झूठ नहीं बोलता, अक्सर लोग चेहरे पे मुंह पे बैठ के झूठ बोल देते हैं,
2: लेकिन उसमें साथ अगर आप वक्त देंगे ना तो वो चीज़ भी कदरे क्लियर हो जाएगी।
1: अच्छा राहत साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा लेकिन ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा, मैं खुद आजकल अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि आपने अगर किसी से लड़ना है या किसी को आपने कोई ट्रिब्यूट पेश करना है तो फ़ोन पे बिल्कुल नहीं करना,
2: नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा, उसकी वजह क्या है? आप तो और लॉजिक दे रहे हैं, जो मैं लॉजिक पेश करने लगा हूँ वो ये है कि आजकल सिग्नल इतने पुअर हैं हमारी ये जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं इनके, कि आप कहना कुछ आ रहे होते हैं सामने वाले को कुछ और समझ आ रहा होता है। तो अभी अभी जो मैं यहाँ पे रात के इस पहर आपके पास पहुँचा हूँ, अभी असद साहब के साथ मैंने कुछ कन्वर्सेशन करनी थी, तो मैंने कहा ये मोबाइल के हाथों ख्वार होने से बेहतर है कि मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँ और हम मिल के बात कर लें।
2: मैंने अपना एक्सपीरियंस एक्चुअली शेयर किया।
1: सही।
2: तो फ़ोन पे मैं समझता हूँ कि फ़ोन पर कोई ऐसी जो सीरियस बातें हैं या कोई ऐसे मशवरे हैं वो आपको, और स्पेशली जब आप गुस्से में होते हैं ना, तो फ़ोन पर बात या मैसेज पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही बात कि चेहरे के जो तासरात हैं वो इंसान को बयां कर देते हैं, अल्फाज बाजुकात वो काम नहीं कर सकते। तो रिश्तों को टाइम देना चाहिए, और साथ मैं ये भी कहूँगा कि बी अ गुड लिसनर Rather than a good speaker।
0: हाँ, लड़कियों को ये चीज़ें बहुत पसंद है जो बंदे सुन रहे हैं, उनके लिए टिप है, अच्छे लिसनर बने। और कहते हैं कि मर्द वही शादीशुदा जिंदगी में भी कामयाब है जो अच्छा लिसनर।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो अपने तजुर्बे से ही आपको बता सकता हूँ।
0: और सिर्फ वो नहीं है, वो जो रिलेशनशिप में है वो भी तभी कामयाब।
1: अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ अपने तजुर्बे से। वो टिप ये है कि आपको अगर किसी पे गुस्सा आया किसी भी बात पे, आप
0: खुश हो गए शायद पैसे देने लगे,
1: वो वाली टिप नहीं। अच्छा जी, तो आप अपना जो रिएक्शन है उसको अगले दिन के लिए उठा रखें, तो आप ये देखेंगे मामला टोटल आपके 180 डिग्री पे चेंज हो जाएंगे। यानी अगर फौरी आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप अंडर द प्रेशर ऑफ दैट स्ट्रेस करेंगे जो कहीं ना कहीं बिगाड़ पैदा करेगा, तो इसको आप रोक लें नेक्स्ट डे के लिए।
0: बड़ी बात सही कहा जबरदस्त।
2: मैं इसके साथ ही अपनी ना बात खत्म करता हूँ, एक दो लाइनें और।
0: जी बिस्मिल्लाह कीजिए।
2: मेरे मतलब लिसनर्स के लिए मशवरा है कि ज़िंदगी को आसान बनाएं, और जिनको आप आपकी ज़िंदगी में जो रिश्ते क्लियर हैं, जिनका आपको पता है कि ये बिना किसी मुफाद के और प्यार वाले रिश्ते आपकी लाइफ में हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, माँ बाप तो बिलाशुबा बगैर किसी मुफाद का ही रिश्ता होता है, तो उनको अपनी ज़िंदगी से कभी ना जाने दें। जब भी आपको एक बंदे के वो क्लियर हो जाए तो उसको अपनी लाइफ का के साथ जोड़ के रखना, चाहे वो ज़बरदस्ती है, वो अब आपके हाथ में है। ऐसे बंदे को अपनी ज़िंदगी से कभी ना जाने दें।
0: बिल्कुल सही।
2: इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे कहीं पहुंचना है।
0: कुछ सुनाएंगे जाते जाते?
2: बिल्कुल
0: वो कर दिया मैंने, ठीक उसने ख़राब कर दिया था, भाग जाओ यहाँ से। हेलो, छुट्टी नहीं करनी अभी। हाँ जी, अच्छा, बिस्मिल्लाह हजूर।
2: सच्चे दिल की बात जो थी वो चेहरे पर भी आई है।
0: सच्चे दिल की बात जो थी,
2: सच्चा बात में आ जाएगा, अभी सच्चा है।
0: अच्छा,
2: सच्चे दिल की बात जो थी वो चेहरे पर भी आई है। हमने तो मुखलिस लोगों की ऐसी ही पहचान बनाई है।
0: वाह, हमने तो मुखलिस लोगों की
2: ऐसी ही पहचान बनाई।
0: अच्छा,
2: है
0: ये आपके अकवाले जरी हैं?
2: जी बिल्कुल।
0: क्या बात है ज़बरदस्त। सजाद अली लाडला कह रहे हैं, हाय हुए सदके ज़ुबैर सर की किस्मत तो खुली होगी जिनको आज डॉग सर आप मिल गए। अच्छा जी, पाया ना वो मैनू लब्बे ने जिनको हज़ारों नहीं लाखों दुनिया चाहती है। क्या बात है। मैं ज़रा बंदा सी ऑफ कर लाँ, गाना सुने, इसके बाद आके आप लोगों से बैक टू बैक कॉल्स लेते हैं और फिर आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं। दिस इज़ आरजे डॉग्स, डोंट गो एनीवेयर प्रोग्राम नाइट थेरेपी। और सवाल मैंने जो किया वो आपसे वही है, सिंपल सा सवाल है लेकिन एक बहुत बड़ी उलझन है ज़िंदगी के हर मामले में। उम्र के आप किसी भी हिस्से में हैं, आपको ज़रूर वास्ता पड़ता है, अक्सर आप धोखा खा जाते हैं और आप दूसरों को देख के सीख रहे होते हैं, फलाने ये किया। और मैंने पहले भी अर्ज किया, दूसरों को देख के मत सीखें। जो चीज़ किसी के लिए आसान है आपके लिए मुश्किल है, जो आपके लिए आसान है किसी और के लिए वो ऐन मुमकिन है कि मुश्किल चीज़ों में से हो। हर किसी की एबिलिटी डिफरेंट है और हर किसी की रुकावटें डिफरेंट है। आप अपने अंदर झांकें और फिर बताएं कि आपको क्या लगता है किसी को पहचानने में रुकावट क्या चीज़ बनती है। तो ऐन मुमकिन है आप जैसा कोई और भी सुनता हो उससे बेनिफिट हो जाए। एंड डेफिनेटली आई एम गोना टॉक अबाउट इट इन डिटेल। दिस इज आरजे डॉग्स, डोंट गो एनीवेयर, यू कैन कॉल मी आफ्टर दैट ट्रैक 04221100101। एंड इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट यू कैन सेंड मी द SMS। अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, SMS करें, एक सिर्फ एक लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पर। एंड यू कैन हिट मी ऑन माई लाइव स्ट्रीम RJ_DOX, वहां पे आए और कमेंट कीजिए। I'm here। आए दर्द हल्का है, दर्द हल्का है, गम भारी है। अजीब काली सी रात है जो देर से जारी है।

0: ऑल राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12:13 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और जो लोग रहमान साहब का इंतज़ार कर रहे थे, लेट मी टेल यू, फॉर सम रीज़न वो नहीं आ पाएंगे, तो मुझे बर्दाश्त कीजिए, अभी आगे एक घंटा और। और रहमान साहब के हवाले से कोई पैगाम हैं, कोई मैसेजेस हैं, आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल उन तक पहुंचा दूंगा। और सवाल मेरा जो था वो वही है कि हम किसी को पहचानने में जो रुकावट आती है किस चीज़ से आती है। ज़हीर अहमद साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, क्या खूब बात कही, बहुत शुक्रिया जी। आकाश अली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज जी। ओके, लेट मी रीड सम मैसेजेस फ्रॉम 4471, उसके बाद कॉल लेते हैं। असलम बलोच साहब लियारी से सुन रहे हैं। अरे भाई कैसे हैं सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। हम इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखते हैं सर, बड़ी मेहरबानी अगर आप सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हसनैन शहजाद हैं और डिस्ट्रिक्ट झंग से सुन रहे हैं आप प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर, थैंक यू वेरी मच जी। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, आपका शो बहुत अच्छा है। अली डोगर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। कबीर साहब है, कबीर पाशा साहब। सर जी कहते हैं ना कि दोस्त वो जो मुश्किल में आपके काम आए, वो वाले मुश्किल के बाद आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, आइडेंटिफाई तो इस तरह किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले क्या तरीका कार है जिससे आप समझ जाएं कि बंदा इस काबिल है, इस पर ट्रस्ट किया जाए कि नहीं। ये ना हो बाद में आप जिन पर तक किया था वही पत्ते हवा देने लगे। मेहर है सर, आपका शो स्टार्ट हुआ था तब आपकी आवाज़ आई थी, अब 11:49 पर आवाज़ आई है, सिग्नल नहीं आ रहे थे। अब जब आप ये कहा कि आप 1 बजे तक शो करेंगे, मैं खुश हो गई। चले आप खुश हो गई, चले ज़बरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम।
1: बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपकी?
0: जनाब शहजाद साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी।
1: बहुत आपकी मेहरबानी, जो अच्छी बातें हो रही हैं जी। देखेंगे पहचान तो इंसान की जो है ना वो बाद में ज्यादातर पता चलता है जी।
0: अच्छा जी,
1: पहले हम तो यकीन करके इतमाद कर लेते हैं, लेकिन इतमाद को ठेस जब पहुंचता है ना,
0: हाँ जी,
1: तो पता फिर ही लगता है।
0: बिल्कुल बजा फरमाया।
1: तो मेरे साथ जो घरेलू जो मसला था ना, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ
0: जी।
1: मैं जब अपने वो संभाली, मेरी 5 बहनें थी।
0: अच्छा जी।
1: और मुझसे जो भी भाई जो पूछ के चलते थे,
0: ओके,
1: तो मैंने माशाल्लाह मेहनत की, जो कुछ भी अपना मजदूरी की, जिस तरह भी हो अल्लाह ताला ने उनके नसीबों का दिया जा जैसे भी है। हर तरह मुझसे पूछ के चलते थे, भाईजान ये काम कर ले, भाईजान ये काम कर ले, मतलब किसी तरह के मेरे पीछे नहीं थे।
0: बिल्कुल ठीक है जी।
1: वो मैंने अपने फर्ज अदा कर, मैं फर्ज ही बोलता हूँ।
0: बिल्कुल सही है जी।
1: के भाइयों की भी शादी की, पैसे पल्ले से लगाए, क्योंकि कोई बात नहीं, ये मेरे भाई है तो कोई ऐसी बात तो बहने हैं। लेकिन अब जो वक्त आ गया ना, अब जो आपस में रिश्ता कर रहे हैं या एक दूसरे को बुलाते हैं या एक दूसरे की तरफ जाते हैं, हमें नहीं तो इसकी वजह क्या कि अब मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं रही।
0: बिल्कुल सही।
1: तो बात यही है, तो मेरा ना एक जगह जो ना काम था ना, वो मैं जो काम था ना, वो जो हमारी बचत थी ना आधी आधी
0: जी,
1: तो पैसे उनके थे ये जरूर, मेरा मैंने 1 रुपया नहीं दिया। उनने मुझे ऐसा काम देखा, ईमानदारी और दयानतदारी देखी, उन्होंने कहा तुम्हें आज ही 25 मिलेगी, जो भी काम, कपड़े का काम था। और मैं काम करने लगा और माशाल्लाह उसमें मैंने पैसा कमाया, उनको भी बचा।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही।
1: दूसरे जेड़े लोग थे ना, दूसरे
0: जी जी,
1: वो
0: जी,
1: कहते थे कि हमसे कर लो आप बिजनेस, पैसा भी हम लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन वो उस आदमी ने ये कहा, जब मैंने एक को जमा लिया, दूसरे को नहीं अजमाऊंगा।
0: बिल्कुल ठीक,
1: ये बात होती है। तो अल्लाह ये जब समझ आती है ना, जब सर पे पड़ती है तब भी समझ आती है।
0: तब समझ
1: आती है। अपनी अगला बंदा तो आप हमको खींचेगा जी, हम ऐसे हैं, मैं ऐसे, लेकिन नहीं, इतमाद नहीं रह गया,
0: इतमाद नहीं रह गया। बिल्कुल,
1: वो मेरे वाले साहब एक बात बताते थे कि एक बूढ़ा आदमी हो गया ना, किसी का बाप था बूढ़ा हो गया, तो उसने कहा इसने क्या गंद पाया, चलो इसको फेंक आते पानी में।
0: अच्छा
1: देखे वो उठाया उसने तो उसको फेंकने जब चल गया ना नहर पे, तो वो उसका बाप कहता बेटा थोड़ा सा आगे करके फेंकना मुझे।
0: हाँ।
1: वो कहता क्यों, किस लिए आगे करके, ये यहाँ पे मैंने अपने बाप को फेंका था,
0: हाय हाय हाय,
1: अब तुम मुझे फेंकना तो आगे फेंके। तो अल्लाह ताला ने ऐसा दिन में आया कि यार ये अपने बाप को फेंका, मैं अपने बाप, कल मेरी औलाद होगी वो भी मुझे फेंकने आ जाएगी। बात सिर्फ अल्लाह ताला हमें जो है ना वो देखे नजरों से, लेकिन हम पहचाननी बहुत मुश्किल है।
0: हाँ यार कितनी अच्छी आपने बात की है शहजाद साहब। अच्छा
1: जी, देखे वैसे तो मैं आपके शो में ताबे दौड़ के इसलिए लगाता हूँ, मैं खुद दुखी रहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए खुशियाँ देता हूँ जी। तो मैं मेरा जो अंदर है ना जो दिल जो वो कहता है कि किसी को अच्छी उधर कितना मजा किया है माशाल्लाह, बड़ा मजा आया, लेकिन वो आपके रंग में रंग लिया मैं।
0: हाँ।
1: ये बात है जी, अल्लाह ताला सबको अपने मान में रखे, और हमें किसी के साथ ऐसा काम करना नहीं चाहिए जहाँ अगले को ठेस पहुंचे।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
1: बहुत मेहरबानी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, और जितने भी आरजे है ना सबसे प्यारे और मोहब्बत है, दिल से सलूट है जी।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: ओके जी, अल्लाह।
0: शहजाद साहब थे जी, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की और एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी उन्होंने, क्या बात है ना। लेट्स टेक बैक टू बैक कॉल्स। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
2: पहचाने मुझे, मैं कौन?
0: पहचानने कोशिश जी
2: मेरे के सर, आप मुझे पहचाने में कौन हूँ?
0: कोशिश कर रहा हूँ, पहचान में आ नहीं रही।
2: ईद पे फर्स्ट टाइम बात हुई थी आपसे।
0: हाँ, क्या नाम था आपका भला सा प्यारा सा, अच्छा सा। लंबी सी कॉल थी आपकी, और आपने कहा मैंने बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है, आज मैं लंबी बात करूंगी, है ना?
2: यस, मैंने इसी माने आपसे पूछा था, मैंने मन्नत मांगी है, मैंने मीठा बांटना, तो वो मैंने बांटा था।
0: अच्छा, मिन्नू तक खवाया नहीं फायदा की।
2: मैं इतनी भूल जाती थी, दस मिनट नाम आप पहचान ना मुझे,
0: क्या बिस्मा था? बिस्मा
2: ना।
0: नहीं, अच्छा हमना। क्या हम बिस्मा, हमना, शहजादी, कबल, फिजा,
2: डॉग भाई, मुझे इतनी खुशी होती है आपसे बात करके सर, मुझे यकीन माने मैं आपको एक साल से सुन रही हूँ, बिल्कुल खामोशी से सुनती हूँ, टॉपिक आपका समझ आए ना आए बस सुनती हूँ।
0: हैरत की बात है, आप कैसे एक साल से बर्दाश्त कर रही है मुझे।
2: यकीन माने मैंने कभी आपको मैसेज नहीं दिया, और सबसे
0: आपकी फ्रेंड भी सुनती है? आपकी फ्रेंड भी सुनती है?
2: यस, हम आप यानी कि हर वेडनेसडे और हर थर्सडे पार्टी करते हैं, ठीक है, 20-21 लड़कियां बैठ के आपको प्रोग्राम सुनती हैं एक जगह पे।
0: 20-21 लड़कियां एक जगह पे बैठ के सुनती हैं?
2: यस, हम यानी कि एक ग्राउंड है उसमें बैठ जाती हैं, ठीक है, और पार्टी करती हैं, बड़ा मजा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं, हर वेडनेसडे और हर थर्सडे हम करती हैं।
0: और ये कहाँ पे है ग्राउंड?
2: ये हम जर्मनी में यानी कि दिल्ली हमारा घर है ना, ठीक है, उसके साथ ही पार्क बनी हुई है, वहाँ पे हम बैठ जाती हैं और वहाँ पे सुनती हैं आपको प्रोग्राम बैठ के।
0: वाह वाह वाह वाह, 20-21 लड़कियाँ मुझे बैठ के सुनती है, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है।
2: वो बात नहीं करती, वो भी सुन भी रही है आप, और वो इतना आपकी बहुत बड़ी फैन है, हम सब लड़कियाँ और हम इतना मजा आता है हमें सुनने का, सिर्फ वो आपका प्रोग्राम सुनती है, मैं सबके सुनती हूँ, वो कहती है सिर्फ आगे डॉग्स का प्रोग्राम हमें अच्छा लगता है बस।
0: 20-21 लड़कियों कैसी हो सारी अगर सुन रही हो, अच्छा 20 होंगी ना, 21वीं तो आप है, 20 लड़कियां कैसी हैं?
2: वो हंस रही है आज से।
0: थैंक यू वेरी मच, अगर आप सुन रही हैं सारी, थैंक यू वेरी मच।
2: वो भी आपको, सब आपको सलाम कह रही
0: है। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। फिर जिंदगी में कितनी दफा धोखा खाया आपने?
2: मैंने, ये जो मेरे साथ बैठी है ना, इन्होंने मुझे धोखा दिया।
0: बहुत धोखेबाज हैं, दोस्तों होते ही धोखेबाज।
2: ये सारी बहुत धोखेबाज है।
0: किस तरह का धोखा दिया
2: जी? क्या कह रहे हैं सर?
0: किस तरह का धोखा दिया आपको?
2: मुझे बहुत तरह का इन्होंने धोखा दिया। ये बुरे चुप करवा रही है।
0: अभी ये मेरे सामने एक मैसेज भी है फेसबुक पे, हमना उस्मान, ये आप हैं?
2: एक साल से मैं इनका कहना मान रही और मैंने नहीं किया आपको। मैंने कहा नहीं, अब मैंने अपनी मर्जी करनी है, मैंने करनी है बात, करनी है सर से मैंने।
0: थैंक यू वेरी मच। आपने उन्हें भी कहो ना, वो भी किया करें।
2: वो नहीं करती, कहती है हमें जरूरत ही नहीं करने की, बस सुकून से सुना करो, तुम्हें बस कॉल करने की पड़ी होती है, मैसेज करने की, चुप करके सुनो। ये मुझे टोकती है, मना करती है, मुझे गुस्सा आता है इनके ऊपर। मैंने रेडियो तोड़ दिया था अपना पकड़ के, इसकी वजह से
0: शदीद गुस्से
2: में हम सब, फिर हम सब ने नया खरीदा। इन्होंने फिर मुझे वो इन्होंने फिर मेरी चुकाई की, कहती तुमने रेडियो तोड़ दिया, हम तुम्हें तोड़ती है।
0: सही है, कुछ कहना चाहेंगे?
2: बहुत मजा आता है। आज मेरी बर्थडे है।
0: हैप्पी बर्थडे अमना, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, यू वांट मी टू विश यू। अभी आप बंद करेंगे फिर मैं कुछ चलाता हूँ आपके लिए ना।
2: हाँ जी, मेरे कवर कवर सर को कहूंगी मुझे विश करें।
0: आपको विश कर देते
2: हैं। थैंक यू सो मच सर, मेरी बर्थडे थी तो मैंने प्रोग्राम फिर भी आपका सुना है, मैंने इतनी तवज्जो ही दी अपनी बर्थडे पे। मेरे को नहीं, प्रोग्राम सुनना बनता है, छोड़ो।
0: मैं हुने कुछ ला देना, एड्डी गड़ी गल है, टेंशन वाली क्या बात है इसमें। सुने

0: थैंक यू वेरी मच अमना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल।
1: जरूर कॉल करूंगी आपको, जर्मनी में जितनी भी लड़कियां हैं ना, मैंने उन्हें रेडियो पे लगा दिया और आपको प्रोग्राम पे लगाया, बस मैंने कहा कि लोग सुनना है आपने।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत
1: सब आपको क्रिसमस सलाम कह रही हूँ।
0: सारी तो नहीं यार, जे डॉक्स भाई कहती
1: नहीं, वो सर मुझे कह रही है सर कहो, भाई कह रही
0: हूँ। चलो ठीक है अपना, थैंक यू वेरी मच
1: डॉक्टर भाई, वो मुझे कह रही है तुम सर कहो।
0: थैंक यू
1: जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
0: थैंक यू अपना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, अल्लाह हाफिज।
1: थैंक यू,
0: अल्लाह हाफिज। Okay, see, that was the second call from Hamna. Thank you very much. And I'm going to read some messages from Lahore, FM 101 Lahore Post. Ji. Sir, I think jo banda hamari marzi ke mutabik nahi hota, usse hum hamari samajh kabool nahi karti. Wohi red flag hamare liye jo fayda mand sabit ho, usse hum kehte hain ke banda samajh mein aa gaya. Yaar, arbab, kitni pyari baat kar di hai. Noor Rafe, Hamna Usman from Lahore. I'll read your message. After this call, hello, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam, sir, kya haal hai?
0: Allah ka shukr ji, kaun hai hamare saath?
2: Muhammad Javed from Sialkot.
0: Kaise hai Javed saab?
2: Alhamdulillah sir. Sir, badi gall hai, Allah le saada te number lag gaya.
0: Kinne da lagga je?
2: Ded ghante baad lag gaya
0: saada. Main samjha shayad prize bond da number lag gaya je.
2: पहली
0: दफा आपकी कॉल मिली है जावेद साहब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी पहली मर्तबा मेरे से बात हो रही है, मेरी आपसे पहली मर्तबा बात हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा
2: है।
0: मैं बड़ा वो ना उनके ट्रिक है, उन्होंने दो मोबाइल रखे होते हैं, वो उसमें करते ही हैं नंबर ना डायल करके सामने रखा होता है, जैसे ही यहाँ से कॉलर कह रहा होता है ना कि मैं अच्छा जी टेक केयर, वहाँ जैसे ही पता चलता है ना, थोड़ी ऑन एयर आवाज़ थोड़ी सी लेट जा रही होती है, सेकंड का कोई डिफरेंस होता है, जैसे ही उन्हें पता लगता है कॉल कटने लगी है, वो फौरन मिलाते हैं, तो जब वो कॉल कटती है ना तो फौरन उस वक्त जिसका आ जाता है वो मिल जाता। मैं कह रहा जवेद भाई, मैं आप किसी नु कॉल करनी हो नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल होता है, फिर मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं चोर तरीका ढूंढता हूँ, मैं नंबर पे कॉल कर देता हूँ, यार नंबर से ही ऑन एयर कर दो,
2: क्योंकि मोबाइल ही
0: Such a lovely caller, Noor Rafe, Hamna Usman from Lahore, listening. Thank you very much for listening. Kehti, I want to discuss that, how to understand the meaning of one's individual life in any of your shows. Okay. चले इस पे करेंगे बात, इस पे अगले मुझे याद जरूर करवाइएगा, और अगर एक दिन पहले शो से मुझे रिमाइंडर मिल जाए, कोई भी एनीवन लिसनिंग, मुझे याद करवाइएगा कि मौजू जो था वो नूर राफे ने कहा था कि अपना मकसद हयात जो है अपनी ज़िंदगी को समझने का मतलब, अपनी ज़िंदगी का मतलब, मीनिंग ऑफ वन्स इंडिविजुअल लाइफ, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को समझा जा सकता है, तो मुझे याद करवाइएगा। इन थर्सडे शो मैं सोच रही थी कि पहले गज़ल गो शायर का नाम पूछना चाहिए था, afterward I thought कि क्या लक है, क्वेश्चन भी सोचा, आंसर भी पता था, कॉल भी कनेक्ट हुई लेकिन अटेंड नहीं हुई. दिस इज सैड, आई एम सॉरी दैट करंट टेक योर कॉल. आई वाज थिंकिंग हर ग्लस वुडंट इट बी बेटर के मैंने सोचा होता या एटलीस्ट आंसर ना पता होता, है ना. व्हाट अ कोइंसिडेंस, हाँ है ना, हाँ ना. नहीं अच्छा किया आपने शेयर किया यार. ये एक्सेस फीलिंग मेरे साथ भी होती है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं, पता भी होता है चीज़ें आप एड करते हैं लेकिन एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते. एंड इस पे शो पे जो आपने बात की इस पे डेफिनेटली आई टॉक अबाउट इट. हमारा फयाज, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम. मौ सदीक डार साहब, शादी भी कर लो नहीं होती यार. हसनैन दाऊद, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम. मरी से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. बहुत टाइम बाद फिर से सुना, बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. फ्रॉम मीगल फ्रेंड्स ग्रुप कोयटा, बहुत शुक्रिया. जशदाद अली लाडला साहब, यहाँ पे भी आप मौजूद हैं, सलाम किया. पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद. मोहम्मद अवैस ने, हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम. अकबर खान साहब, मेरे बड़े प्यारे लिसनर हैं, कराची से सुनते हैं, मिजाज अच्छे हैं, आप बताइए. कल्ब मोमिन है, सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम. हुमैरा फयाज, जब भी आप जब भी हंसने के ज़माने आए, जख्म फिर याद पुराने आए. हाय हाय हाय हाय हाय. पिंतर सदीक, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम. गुड शो, कल्ब मोमिन ने पसंद किया. झुगनू जूनियर है, देख रहा हूँ टूटे कंगन, देख रहा हूँ टूटे कंगन, सोच रहा हूँ किसने तोड़े, तोड़ दिए तो फेंके क्यों है, फेंक दिए तो अब रो रो हलकान हुआ है, ऐसा भी क्या नुकसान हुआ है. देख रहा हूँ उलझी माला, सोच रहा हूँ किसने छोड़ी, फूल तो ताजा है फिर डोरी किसने तोड़ी, क्या फूलों से छलनी ये दामन हुआ है, ऐसा भी क्या नुकसान हुआ है. देख रहा हूँ सहमे सपने, सोच रहा हूँ किसका डर है, डर तो है पर डर का सेहरा किसके सर है, जो सपनों का बरपा एक तूफान हुआ है, ऐसा भी क्या नुकसान हुआ है. देख रहा हूँ सूखे पत्ते, सोच रहा हूँ पतझड़ का दुख, एक शबाबी हिद्दत के मौसम का आखिर और बुढ़ापा जैसे वारिदे जान हुआ है, ऐसा भी क्या नुकसान हुआ है. हुए हुए हुए यार, इतना लंबा नुकसान लिख दिया आपने, बार बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच. एंड ओके, कमलनाथ वगैरह आप वहाँ पे आई, सलाम किया. जुगनू जूनियर ने, भाई मौसम कैसा है लाहौर का, लाहौर में टका के गर्मी आया, सुबह बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी थी. बरकत जमाली साहब, थैंक यू वेरी मच जी. अकबर खान साहब ने, ओके. वसीम साहब, जया साहब और जैनब, जूबिया नायाब, शीबा सोबिया, इनको मैसेज किया है, सलाम दिया, वालेकुम अस्सलाम. नाइस शो, ज़बरदस्त शो, थैंक यू वेरी मच जी. आज डॉग साहब, किसी इंसान को जानना है तो उसके साथ खाना खाओ, सफ़र करो या चाय ही पी लो, आप काफ़ी हद तक उस इंसान को जान जाते हैं. ठीक कहा आपने. एंड अहमद मलिक, थैंक यू वेरी मच जी. सजाद अली लाडला साहब, बहुत शुक्रिया. एंड FM 101 लाहौर इज़ ऑल्सो वॉचिंग मी, ओके. हेलो, यहाँ पे गाना लगाता हूँ और उसके बाद आके फिर मैं मौजू पे बात कहता हूँ. आई शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू. वक्त हो चुका है 12:35. दिस इज आरजे डॉक्स, प्रोग्राम नाइट थेरेपी. और सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है, हमें जिंदगी में अक्सर बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है. आपको पता है फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि हर बंदा अपनी जिंदगी में 50,000 से लाख तक लोगों से मुलाकात करता है. कम अज कम, कम से कम 50,000 होते हैं, 1,00,000 या उससे प्लस भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाले लोग जो होते हैं, आपकी मुलाकात होती है. उनमें से 1,000 से 5,000 तक की जो है ना रेशो, वो है जिनके एक्चुअली आप इंटरेक्ट करते हैं प्रॉपरली, जिनके नाम से आपको तारुफ भी हासिल होता है. याद रहे या ना रहे ये एक अलग बात है. और उनमें से तकरीबन 100 से 300 लोग वो होते हैं, ये रिसर्च बेस्ड बात है, 100 से 300 लोग वो होते हैं जिनके साथ आप थोड़ा सा गपशप लगाते हैं, अच्छे लेवल पे जाके इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ी देर तक उनके साथ गपशप रहती है आपकी. और 10 से 20 लोग हर शख्स की एक एवरेज लाइफ में वो होते हैं जिनके साथ वो दुख सुख भी करता है, जिन्हें वो अच्छे तरीके से जानता है, समझता है. लेकिन मुद्दा ये है उन्हीं 10-20 में ऐसे भी आते हैं जो आपका दिल तोड़ जाते हैं, और आप फिर कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया, कई साल साथ गुजारे, मेरे साथ ये हुआ। गो के फलसफा ये कहता है, मीरदाद की गुफ्तगू से मुझे याद आता है, जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हो तो उसी लम्हे में आप किसी को गलत कहते हैं, उसी लम्हे में आप भी उसके लिए गलत हो जाते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के गलत हैं तो ठीक कौन है? पर कहता है कि हर शख्स दूसरे का आईनादार है, मैंने किसी में अगर गलती देखी तो शायद वो मेरा अपना रिफ्लेक्शन था। So this is how it is. और फिर हम ये कहते हैं मैं समझ नहीं पाया। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो उसे मौका आपने दिया, मुझे दिया, मैंने मौका दिया, क्यों कभी जानते हुए कि धोखा दे सकता है, कभी मुझे पता ही नहीं चला, उसने ऐसा लपेट के मारा, समझ नहीं आया। और ये मोहब्बत का सिलसिला हो, लव अफेयर हो, ताल्लुक हो, नौकरी हो, कारोबार हो, दोस्ती का रिश्ता हो, हर जगह होता, पहचानने में मसला होता, वो जो रुकावट होती है उस पे आज की बात है, वो मेरा सवाल है, और उस पे आके गुफ्तगू करते हैं। दिस इज आज डॉक्स, जाना नहीं है, वक्त हो चुका है 12:37 और 4 तारीख हो चुकी। आपका मेरा साथ होता है बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। एंड अगर आप सुन रहे हैं इंटरनेट पे रसाई है तो rj.docs लिख कर सर्च करें, मेरी वीडियो स्ट्रीम मिल जाएगी, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा SMS कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई नहीं। लेट मी नो यू गाइस आर लिसनिंग। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पे, और FM 101 चैनल पाकिस्तान दोनों जगह पोस्ट है, वहाँ पे भी कमेंट अभी मैंने शामिल किए। किंग फजल खान साहब का भी मैसेज है जी, एक खबर पे लिखा था मैं अहम था यही वहम था। सदीक डार साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी, ऐसे ही है। एनीवेज आके बाकी पैगाम शामिल करते हैं, और ये गाना सिर्फ ये वो नहीं है, ये हर बंदे की स्टोरी लगती है। कोई भी बंदा इस वक्त उम्र के किसी भी हिस्से में है, मेरे साथ जुबैर साहब बैठे, या वो कोई सुनता होगा जो उम्र के काफ़ी ज़्यादा आगे हिस्से में, जैसे सलमा साहिबा सुन रही होती है। आप जिंदगी में कई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लोगों की फेस करते हैं जो उनकी होती है, लेकिन फेस आपको करना पड़ता है। गाना भी उसी तरह का है, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसने फेस ना किया। इसी को तो कहते हैं कि यार मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था जो तुमने मेरे साथ किया। अगर किसी को समझ आ जाए वो मिसअंडरस्टैंडिंग कह देता, अगर ना आए तो हम अगर अच्छा सोचे तो कहते हैं उसने मिसअंडरस्टैंड किया, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। हियर यू गो।

ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12:45 एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरे साथ होता है बुध जुमरात की शब 10 से 12 बजे तक। ओह माय गॉड, आज तो लंबा ही हो गया जी। एनीवेज, द क्वेश्चन वाज के हमें ज़िंदगी में अक्सर लोगों से टकराव होता है, मिलते हैं, तो हाउ टू अंडरस्टैंड, किस तरह से हम लोगों को पहचान सकते हैं और क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से, वो क्या चीज़ है वो जो आड़े आती है, रुकावट क्या होती है जो हम पहचान नहीं पाते किसी को। तो इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं 04-2111-0101। और आज रहमान अनवर की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आए। अच्छा जी, मैसेज है 4471 पे, तितली सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तमाम खूबसूरत समातों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज डॉक्स वाइब्स कह रही हैं खाना खाने से कैसे जानते हैं। खाना खाने से जब आप किसी के साथ बैठते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों से पता चल जाता है वो कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देता है या अपनी प्लेट में डाल लेता है। पैसे की दफ़ा सारा आप पे डाल देता है या कहता है मैं दूंगा।

0: किस तरह से चलता है। हमारा एक बड़ा अच्छा स्कूल का दोस्त था और बड़ा अरसा उसके बाद भी हमारे साथ रहा, हम इकट्ठे बैडमिंटन खेला करते थे बड़ा अरसा। हमने खेली एक दिन, शुरू से मशहूर था कंजूस रहमत, शायद बाद में बदल गया होगा लेकिन माशाल्लाह वो बाद में भी वैसे ही रहा। और बड़े अरसे के बाद उसने एक दिन, हम बैडमिंटन खेल के फारिग हुए, कहा चल यार चल के खाना खा के आते हैं, सारे चलते हैं। मैंने कहा क्या खिलाएगा, पिज्जा शिज्जा खाते हैं। मैं कहा चलो डन करो। मैं कहा पैसे तुम दे रहे, कहते नहीं सारे अपने अपने देंगे। मैं कहा तुम कंजूस के कंजूस ही रहना तो बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं इस तरह से। हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
1: डॉक
0: जी, जी
1: सलमा बात।
0: अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैं मरीज से बात कर रही
0: हूं। माशाल्लाह ठंडे ठंडे मौसम से बात कर रही हैं, दिन चला रही है।
1: और ये मेरी 150 दफा मैंने डाइट किया।
0: अल्लाह
1: फोन पे आ रहा
0: है। अच्छा, ओए होए होए
1: जी,
0: ये तो बड़ा गलत हुआ। कैसी हैं मैडम आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक।
0: मौसम कैसा है पहले बताएं?
1: मौसम बहुत ठंडा ठंडा है।
0: ठंडा ठंडा है,
1: कल ओले पड़े, बारिश हुई।
0: अल्लाह
1: बहुत मजा आया।
0: क्या बात है, आप दिल जला रही
1: हैं। नहीं दिल ठंडा रहा
0: सही कह रही है मैडम, आप मजा फरमा रही हैं।
1: गर्मी बहुत है लाहौर में,
0: बहुत ज्यादा। आज सुबह मीटिंग के लिए मैं जाना था, मैं सिर्फ निकल के नहा के ना मैंने चेंज किया और मैं सिर्फ गाड़ी तक आया हूँ चल के, और थोड़ा सा जरा रुका हूँ गाड़ी क्योंकि गर्मी में, चाहे आप उधर उसे शेड के नीचे ही खड़ा किया, हीट तो होती है ना, खोल के दरवाजे, थोड़ी देर एसी चलाया, उस उतने टाइम में ही मेरे कपड़े भी गीले हो गए। एंड आई वाज लाइक यार बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा। हाँ जी, अब देखें जून में भी, अब मैं हैरान था, कल भी ऐसी हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे, अभी ये नारोवाल वाली साइड पे, सियालकोट वाली साइड से, कल आई वॉज ट्रेवलिंग एक्चुअली, तो मैं वापस आ रहा था, बहुत तेज़ रास्ते में बारिश थी, लाहौर में कम थी मौसम, दैट वॉज रियली प्लेजेंट, बट अगले दिन फिर गर्मी कुछ समझ नहीं आ रहा, चल क्या रहा है, बहरहाल कुछ तो चल ही रहा है। हाँ जी, क्या गाइड करेंगे मैडम?
1: बच्चे बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि वो एक बचपन में गाना सुना करते थे, चेहरे पे कई चेहरे सजा देते हैं लोग।
0: अच्छा जी,
1: अब जब तुम लोगों को मिलते हैं ना
0: जी,
1: या तुम्हें डील करना पड़ता है ना
0: जी,
1: डील करने से पता लगता है, चेहरों से नहीं पता लगता।
0: सही बात है,
1: गुफ्तगू से नहीं पता लगता।
0: हाँ जी,
1: रहा प्या जानो या
0: वहा प्या जाने, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात।
1: और कोई इसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कि हम जज कर सके कि बंदा कैसे
0: है ना। मुझे लगता है बाय द टाइम, मतलब आई हैव स्पेंट लॉट टाइम विद डीलिंग पीपल, और मेरी कोई नेचर ऑफ जॉब ऐसी, उसके बावजूद हर बंदा जो आता है एक नए रंग में आता है, समझ नहीं आती कि मतलब अच्छा ऐसे भी होता है।
1: मतलब जब मैं स्कूल चलाती थी या मेरे जो लाइफ के जितने एक्सपीरियंसेस हैं जी, मेरी रोज की कम से कम 10-15
0: हाँ, वो आपका तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: और फॉर 40-50 इयर्स मेरा प्रोफेशन ऐसा था, मुझे लोगों से डेली बेसिस पे डील करना पड़ता।
0: बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही, अनडाउटेडली आपका तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है। मतलब कोई वो ऐसा कोई नहीं है जिससे हम पैरामीटर सेट कर लें कि ये है तो ऐसे है, ये है तो
1: ऐसे। एक पैरामीटर है कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मियां आज नेकों की बात कर ली। वी कैन ओनली प्रे घर से निकलने से पहले,
0: दैट्स इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स,
1: नेकों की बरकत डालनी, अगर तो कुछ नहीं पता लगा।
0: बिल्कुल सही, और इसके अलावा कोई और वो नहीं है हमारे पास, पैरामीटर नहीं है जिससे हम,
1: पैरामीटर नहीं है, और दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल
1: ना
0: सही।
1: आप किसी को एज अ फ्रेंड जज कर सकते हैं, ना एज अ कुलीग जज कर सकते हैं, ना एज अपने आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी हो तो आप लोग हायर करने हो तो उससे आप जज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: मतलब इवन आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बच्चों के साथ भी जब भी डील नहीं किया होता, उनके साथ डील करना पड़े तो आपको समझ आती है कि मतलब कुछ नहीं पता लग सकता ना। पहले कहते थे कि खानदानी होनी चाहिए, पीछे से रजे पूजी होने चाहिए, जी फलाना होना चाहिए, कुछ नहीं।
0: बिल्कुल सही। और मैडम एक चीज़, मैं अब आप मेरे साथ ऑन कॉल हैं, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। नफ्सियात जो है ना, साइकोलॉजी सेज के हम सुनते कम हैं, फ़र्ज ज़्यादा करते हैं लोगों के बारे में। इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है?
1: मतलब आप के बारे में पेशेंस नहीं,
0: पेशेंस नहीं,
1: किसी से मिलते हैं, पेशेंस से नहीं मिलते।
0: मतलब अगर कोई बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा फॉर सम रीजन, अगर रबते में नहीं आ रहा है, किसी बात का जवाब नहीं दे रहा, हम सपोज कर लेते हैं खुद से,
1: क्योंकि हम अफरा तफरी है ना, हम अफरा तफरी के दौर के लोग हैं।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
1: हम एक वक्त में तीन तीन टास्क कर रहे होते हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: किया जाता है चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे हम अपना काम कर रहे हो, एक एक वक्त में चार चार जगह भी हमारा दिमाग इन्वॉल्व होता है, मैनेजमेंट में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, फाइनेंसिस में भी, हर चीज को देख रहे होते हैं, कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हैं, वन कंट्रोल के तहत हम सारे काम करना चाहते हैं, हम डेजिग्नेटिंग किसी को करना चाहते हैं, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते किसी को।
0: आप 110% इसको आपने सही पॉइंट आउट किया। आजकल एक थ्योरी बहुत ज़्यादा चल रही है, सोशल मीडिया थ्योरी जिसे मैं कहता हूँ, वो ये है कि जी यू मस्ट कीप ऑलवेज 1, 2, 3, 4 बैकअप प्लान्स, मल्टीपल टास्क एट अ टाइम करें, मल्टीपल बिजनेस करते रहें, ये करते रहें, वो करते रहें। आई बिलीव कि मल्टीपल टास्क एकदम से आप समझें कि आप परफॉर्म कर लेंगे और बड़े अच्छे कर लेंगे, ये हो नहीं सकता,
1: हो नहीं सकता। हमें डेजिग्नेट करने पड़ेंगे काम के अंदर लोगों को, और हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा ताकि मतलब हर किसी को एक्सपीरियंस मिले। तो आपका एक्सपीरियंस आपके साथ चले, मेरा मेरे साथ चले, तीसरे बंदे का उसके साथ चले, हम सारे अपने एक्सपीरियंस से एक एक टास्क परफॉर्म करें और उसको उससे ज्यादा बेहतर हमें रिजल्ट मिलते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। सो आपका पॉइंट ये है कि पूरा हम एग्जैक्ट कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं कर सकते जिससे हम किसी बंदे को जांच लें, जान लें। हर बंदे की समझ, अकल, उसका एक्शन और रिएक्शन मुख्तलिफ होता। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा मैडम कुछ कहना चाहेंगी? बांटने की तौफीक दे, दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन, वन कुड डू। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत अच्छा लगा। आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैडम सलमा थी, और मैडम का काफ़ी एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर में और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहा, और उन्होंने कहा कि कोई एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है, हर बंदा एक नए रंग में आता है, और कुछ फंडामेंटल्स हैं जिन पे जाहिर है वो भी एग्री करती हैं, जिन पे मैं भी एग्री करता हूँ, और जिस पे ओवरऑल नफ्सियात की अगर बात करते हैं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात ये करते हैं कि हम उसमें एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि हम सुनते कम हैं और हम जो है ना फ़र्ज ज़्यादा कर लेते हैं। मतलब वो बात नहीं दे रहा तो नाराज़ होगा, वो खामोश है तो बड़ा ही ईगो वाला बंदा होगा, मगरूर होगा, और जबकि आपकी इंटायरली हकीकत जो होती है ना, इससे डिफरेंट होती है। और इसके अलावा फिर एक और बहुत बड़ा मुद्दा होता है इसमें कि जो रुकावट बन रही होती है, अब बाहर वालों को तो छोड़े, मैं अपनी बात करूंगा ना, मैंने बार बार यही जिक्र किया कि मैं अपने अंदर झांकना चाहता हूं, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ, कि हम क्या करते हैं, मैं, आप, शायद आप भी, हम जो है ना लोगों को उनके मुताबिक नहीं देखते। मैं अपने तराजू पे तोलता हूं, मैं अपनी तवक्कुआत को देखता हूं कि मैं चाहता हूं कि अगर मुझे इस वक्त पानी पीना है तो सारे कहें हाँ हम पानी पियेंगे, अगर मैं कहूं कि मुझे खाना खाना है तो जो मेरे हल्का अहबाब में सबके सब कहें कि हाँ खाना खाना है। शायद ये भी एक वजह है, हम किसी शख्स को ना वैसे देखना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं कि वो हो, और वो कोई भी मामला हो, चाहे वो मोहब्बत का मामला ही क्यों ना हो, तो हम, मेरा ख्याल है, अपनी तवक्कुआत, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सारी चीज़ें देखते हैं। आकाश अली, ओके, गॉट इट। अच्छा जी, सजाद अली लाडला, शोहर ने रास्ते में रुककर बीवी को पान खरीद कर दिया। बीवी बोली, आपने अपने लिए क्यों नहीं लिया? शोहर बोला, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। आप इजी हो जाएं, आप इजी हो जाएं यार, मैं तो बैठा देर तक। अच्छा बाबर अयूब खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आज आपने आना था लड़के, आए नहीं, मिले नहीं यार। सो आई वाज टेलिंग यू कि कुछ फंडामेंटल्स हैं उस पर बात, नफ्सियात के मुताबिक जो मैंने कहा कि अक्सर रुकावटें जो है चंद एक फंडामेंटल्स हैं जिन पर मैंने कहा कंक्लूड करने से पहले बात कर ली जाए ना, हम सुनते काम है, फर्ज खुद से ज्यूम कर लेते हैं, ऐसे हुआ तो ये हुआ होगा, ऐसे हुआ तो ये हुआ होगा, और उसके अलावा फिर हमारी तवक्कुआत होती हैं कि यार मैं चाहता हूँ ऐसे हो तो ऐसे होना चाहिए, और ऐसे क्यों नहीं है। अपनी मर्जी के मुताबिक हम चाह रहे होते हैं हर बंदा हो जाए, और फिर हकीकत जो होती है, रियलिटी, हर किसी की रियलिटी डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है रियलिटी। नीचे जो है ना, एक बहुत बड़ा नाम फलसफे में, फलसफे की अगर बात की जाए, जिन्हें फलसफे का पता है, नीचे उसमें एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, वो कहता है हकीकत से ज्यादा अहम हमारी उस हकीकत की तशरीह होती है, यानी रियलिटी से ज्यादा वो रियलिटी की जो डेफिनेशन होती है, जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं, वो ज्यादा अहम होती है हमारे लिए, क्योंकि हर किसी का रियलिटी को देखने का अंदाज, हर किसी की रियलिटी डिफरेंट उसके अपने तजुर्बात पे होती है। दो लोग एक ही वाकये को देखते हैं, उसे मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन करते हैं। और आजकल की अगर बात की जाए, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप है, ताल्लुकात हैं, दोस्ती यारी बिजनेस ये वो, अभी तो आजकल सोशल फलसफा चल रहा है ना, सोशल मीडिया ने हर चीज़ बदल दी हुई है ना, हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को एडिट करके बयान करते हैं, हर चीज़ एडिट हो रही होती है लाइफ में, आपका दिल करता है जो चीज़ दिखानी है दिखा देते हैं, जो चीज़ छुपानी है छुपा लेते हैं, और यही बात है जो पहले राहत ने भी की। हमारे अंदर बहुत सारे तासुबात होते हैं, जब किसी के बारे में तासुब है तो फिर हम उसे सुनना ही नहीं चाहेंगे, अगर कोई अंदर इमेज बना लिया हम उसे जानना ही नहीं चाहेंगे, और तासुब अगर बन गया वो शख्स कैसा है कैसा नहीं है भी एक बहुत बड़ा मसला है, फिर खौफ एक बहुत बड़ा मसला है, और फिर हमारे माजी के ट्रामास, ओहो वो भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है जो हमें उलझा के रखते हैं। ये वो चीज़ें हैं, चंद एक फंडामेंटल रुकावटें हैं, बाकी इसके अलावा तो रा प्या जाने तो वाह प्या जाने। अब किसी का दिल टूटा, किसी को तकलीफ पहुंची, और किसी को दगा मिला, फिर कोई अच्छा भी आया उसने हाथ थामने की कोशिश की तो आगे से जवाब होता नहीं, क्योंकि मैं पहले से डर चुका हूं या डर चुकी हूं, मसला बन जाता है खौफ, यही वजूहात हैं, या फिर तवक्कुआत आपकी होती हैं, अच्छा अब अगर कोई ऐसे होगा तो फिर ये काम करूंगा या करूंगी वरना नहीं करूंगी, तवक्कुआत। हेलो,
2: ओ जोर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजर था सोचा सलाम करता चलूं।
0: जनाब अंसारी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है
2: जनाब, अली खैरियत से है, तबीयत सही आपकी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अब वो मकसद मैं पुराने गिले करूं या खत्म कर दूं?
0: गिले नहीं किया करते, खत्म कर देते होते।
2: सिर्फ खुदा की कसम, आपकी शक्ल देख के, आपकी आवाज सुन के, आपके आपके लिए शेर है, कसम खुदा की मोहब्बत में अकीदत है, दयार है, दिल में बड़ा एहतराम है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आप भी छा गए आप।
2: वरना यानी जिस तरह उसने मेरी काल काटी है
0: यार, फिर वही बात कर दी यार। देखे मैं आज तो मौजू भी वही है, जाने पहचाने वक्त गुजारे बगैर आप कैसे किसी के बारे में राय कायम कर सकते हैं।
2: सर मेरी गलती ठीक है सर, वो जो काल काटी है उसने, देखिए आपके बादशाह में अल्लाह हो अकबर।
0: नहीं, नहीं, नहीं। वो यकीन करे, मैं अगर आपसे कह रहा हूँ ना कि यार वो बहुत अच्छे हैं दोनों, तो मान ले अच्छे हैं, बाकी जाती तौर पे तो बेशुमार कमियां मेरे अंदर भी हैं।
2: सर मैं आपके बात मान सर, एक बात, अगर कोई लिसनर आपको कहे कि मुझे डॉग्स पसंद नहीं है तो आप बाल काट देंगे?
0: नहीं वो कोई मसला नहीं है, पसंद नहीं है वो एक अलग बात है।
2: यही तो कहा था नहीं, आपने कहा कि ये मेरे दो भाई बैठे हुए हैं, ये मेरे
0: हाँ तो बस ठीक है ना, फिर आप कह देना अच्छा ठीक है आपके भाई हैं, बस ठीक है फिर मेरे भी भाई हैं, इसी में बात खत्म हो जाती है। आप मुझे कल को कहेंगे ना कि फला बंदा यार वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहूंगा अच्छा आप कह रहे हैं तो मेरे लिए भी अच्छा है, फिर बात ही खत्म कर दी मैंने। चले आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं नहीं मेरे लिए आप भी काबिल एहतराम है, वो दोनों तो मेरे बड़ी हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, और गलतियां कोताहियां सारों में होती हैं, हर जगह होती हैं, मेरे में भी बेशुमार है।
2: मैं आपके खाते हर बात को खत्म कर रहा हूँ, वरना अगर ऑफ एयर ले लो
0: ओ पायल की करना सी यार, छोड़ दियो फिर केड़े पासे तौर पे अंसारी साहब, फिर शो कुछ और है, बात कहीं और जा रही है।
2: अच्छा अब मुझे बताए क्या करेंगे, क्योंकि मैं जब से वो माशाल्लाह राहत भाई की सुन रहा था, उनके वजह से मैंने खत्म के जो उनके गुफ्तगु में था ना कि बात खत्म करनी चाहिए।
0: सही कह रही,
2: समझे मुझे उनका भी एहतराम था पहले दफा उनके गुफ्तगु सुनने, मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छे गुफ्तगु थे, और अब आप मुझे बताएं कि यानी क्या जिस तरह वो कर रहे थे ब्रांडेड
0: जी
2: यार, ब्रांडेड में फिर वही मेरे दोस्त का नाम आएगा जैसे मेरी गाल काटी है तो कर दूं मैं वो जो ब्रांडेड 350 रुपए का जूता,
0: और नहीं जी क्या कर रहे हैं
2: 3500 का जूता, 3500 की पेंट, 750 की शर्ट पहन के बैठा हुआ था यार, वाह माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे।
0: अंसारी साहब ना करें ना यार, ना करें,
2: नहीं कर रहा,
0: ना करें, नहीं कर रहा, फिर अब देखें बरमला, फिर मुझे भी कुछ चीज बुरी लगना शुरू हो जाती है ना, फिर
2: आपकी मेहरबानी। आइंदा प्लीज जरा कह दीजिएगा कि यार देखो मेरे साथ ये दो दफा हो चुका है आपकी हुकूमत में, खुदा के कसम।
0: अंसारी साहब बात वही की वही है, क्या फायदा आपको और मुझे यहाँ पे, अब शो से कम ये बहस मुबासा लगना शुरू हो गया।
2: खत्म कर दी मैंने, अब आप कहीं सुनाऊं या कुछ, मेरे तो उस पे जब ब्रांडेड पे तो फिर मुझे कोई मेरा भाई याद आ गया था, अब आप कहें तो कुछ सुना दूं मैं आपको।
0: जी सुनाइए सुनाइए।
2: अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरे तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, दर्द मिलता रहा दर्द सहते रहे, रोज मरते रहे रोज जीते रहे, जिंदगी भी हमें आजमाते रहे और हम भी उसे आजमाते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे मुस्कुराते।
0: क्या बात है अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। वसीम साहब आ चुके हैं और अब मैं इजाजत लूंगा जी आप लोगों से जनाब, यही तो सवाल है जी। और सजाद अली लाडला, इनसे पहले मेरी कॉल थी, ओके वो इश्क जो हमसे रूट गया उसका हाल बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, एक हिजर जो हमको लाहक है तादेर उसे दोहराए क्या, वो जहर जो दिल में उतार लिया फिर उसके नाज उठाए क्या। क्या बात है बिंत सदीक, बड़ी अच्छी आपने गजल भेजी। ओके, इंसान अपना टूटा हुआ मान ला हासिल दुआ और बे इंतहा मोहब्बत कभी नहीं भूलता, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं, थैंक यू वेरी मच जी। मैं अगर जरा मैसेजेस तो शामिल किए जाऊं, मैं आकाश अली गाना चला के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी तुमने। हाय ओए, शो कुछ हो रहने दिया करें। سیرت فاطمہ سلام کیا, وعلیکم السلام, فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس کیا ہے, بہترین پروگرام کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ, ٹاپک سر ہمیشہ ہم سے لوگ اس لیے پہچانے نہیں جاتے کیونکہ منافقت ہے اسے کیسے پہچانے. بہت اچھی بات کی ہے, منافقت ہے, منافق کی پہچان بھی بتائیں سرکار ساتھ میں آپ, بہت ساری باتیں ہیں. اور کرو یار سجاد, یار تم کیوں دل چھوڑ بیٹھے ہو یار, کرو گور. ہیلو,
2: السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام.
2: سر کیا بات ہے, انہیں کہا رات کا شو موڈ ہو گیا سٹ, ڈاکٹر صاحب تو دو ہتھاں نال سلوٹ ہے بودی جٹ دا. سر
0: کیا بات ہے جی, جٹ صاحب آپ کیسی طبیعت ہے, ٹھیک ہیں آپ؟
2: ہاں جی سر شکر اللہ دا, زبردست ہوں, زبردست ہو گئی سر, میں دو دوانے کھا گیا جی توڑ کے.
0: اوئے ہوئے رات ہی نہیں کھائی دے, ٹڈ خراب ہو جاندا.
2: کیا بات ہے, گانا لایا نا سر شروع
0: زبردست کرم
2: جی. ہاں جی بالکل سر زبردست, کیا بات. شاعر نے کیا نا لگا, مت دے کسی کو حقارت کی نظر, ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے
0: نا.
2: ہاں جی سر دیکھو نا, چہرہ کا کھلی کتاب ہے سر.
0: صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
2: ہاں جی سر ایک فقیر نے سر مینوں کہا سی, انہیں کہا بھی بیٹا جیڑا انسان منہ دا میٹھا ہوئے گا نا جب دا,
0: بہت اچھی بات ہے بودی صاحب, بہت سونی گل ہے, منافق دی بڑی وڈی پہچان جے. منافق دی سب تو وڈی پہچان جیڑی ہے وہ جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ حضرت علی کا قول ہے اس کا, وہ نا جدا مفہوم ہے وہ دی کسے نال دشمنی نہیں ہوندی, وہ کھل کے دشمنی کرتا ہی نہیں, سارے نال یاری رکھتا ہے.
2: او خیر ہوے سر تواڈی, ویکھو نا ساداں نوں کی لگے سواداں نال.
0: ہاں تے جدے جڑا بندہ منافق نہیں ہے نا او دے نال اختلاف ضرور ہوئے گا.
2: ہاں جی سر بالکل ایسی گل ہے, ایسی گل,
0: لوگوں کو آپ کے ملنے میں والوں کو اختلاف کہیں نہ کہیں پایا جائے گا, اور جو منافق ہوگا نا وہ جدے کول جائے گا ادھا ہی ہو جائے گا.
2: ہاں جی سر, ہاں جی گل ہے کہ کیا بات ہے.
0: سورہ بقرہ میں بات کی نا منافقین کی, اب اس سے آگے اور کیا وضاحت کرے, خالق کائنات نے کہا جب وہ تمہارے پاس بیٹھتے ہیں تو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں, جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان سے مذاق کر رہے تھے, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. منافق ایسے ہی کرتا ہے, اور نہیں میں اتنے بیٹھا سی, میں تو ایویں بس سننے واسطے بیٹھا سی, شغل کر رہا سی میں تو تہاڈے نال.
2: سر بالکل اس جی گل جی, تہاڈی گل ویکھو وڈی کر دے تے کٹ دے. سر ویکھو کئی بندے گل بات کرن دے انداز دے وچ انج دے گل کرن دے سنجیدگی نال کہ کھڑے او کڈے کو عاجز نے تے لیکن دل دے کوڑے اپنے دل دے.
0: بہت اچھی بات کی بہت زیادہ, بڑا مزہ آیا جی, تھینک یو ویری مچ فار یور کال جی.
2: سر کہہ رہے ہیں سر تہاڈی تے شہزاد علی لاڈلا صاحب ساڈے بڑے سونے ویر نے جٹ شہزادہ بالکل چھا گیا, ویکو نا شہزاد لاڈلا صاحب زندہ باد. تو آج جی ڈاکٹر صاحب تو دو ہتھاں نال سلوٹ ہے, سر وسیم ہری نے, ضیاء انجم صاحب نے, مصطفیٰ صاحب نال تے جدوں گل ہوندی نا یقین منو سر انج نشہ ہو جاندا انہاں دی گل سن کے, کیا بات ہے جی سر. ساری آج جی ماشاء اللہ خوبصورت نے, اللہ پاک تہن تندرستی صحت دے, این جی سانو گلاں سنا دے رہے ہو سر, اج یقین منو بڑا خوش جی جن من گل جی سر.
0: پاکستان زندہ باد.

0: हाल नूर कह रही है सर आपके सर में दर्द है, आपके सर में दर्द नहीं, ये लिखा आपके सर में दर्द। हाँ मेरे सर को बहुत दर्द है, घर जाए ना जाऊंगा। हेलो वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसे आप? मैं तो हिम्मत हार दी थी बस,
0: मैं
1: बस हो चुकी थी, खत्म हो गई थी आधी तो। अच्छा? आधी नहीं पूरी।
0: अच्छा
1: हाँ, आज तो मैं बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार करी थी, मैंने कहा आने दे दोस्त को, आज बताती हूँ। तो मैं कॉल कब से कर रही हूँ, ये एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि मैं डेढ़ घंटे, भाई आप तो भाई हो, मैं बहन हो के ढाई घंटे से कॉल कर लूँ फिर देखो। हाँ और मैं बहुत सैड थी, तो क्या कहते हैं, मैं इतना हंसती हूँ, इतना हंसती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने एक काम किया ना उसकी वजह से मैं खुश हो गई।
0: अच्छा?
1: मतलब मैं आई भी नहीं हूँ शो में और आपने मेरा नाम ले
0: ना, मैंने मैंने बोला बिस्मा।
1: हाँ हाँ हाँ, इतना मैं हंस रही थी ना उस टाइम, मैंने कहा देखो जरा वो बेचारी अपने नाम से कि जरूरी लगाती है मतवजा हासिल करने के लिए। मैं सोची थी मैं आज ना मैं बोलूंगी मैं बिस्मा स्विट्जरलैंड से बात कर रही हूँ, ताकि आरजे जो आते हैं उनको भी फील आ जाए कि यार स्विट्जरलैंड से भी कुछ सुन रहे हैं इनको, और मुझे भी मजा आ जाए कि चलो कभी ना कभी पहुंच ही जाऊंगी ना मैं स्विट्जरलैंड, ऐसे ही करते करते कि यार एक लड़की आती है स्विट्जरलैंड से, बिस्मा नाम याद रहे ना रहे स्विट्जरलैंड तो याद रह जाएगा ना लोगों को।
0: हाँ नहीं सही कह रही हैं आप, आइंदा के बाद आपने कहना है मैं चीचू की मलिया से बिस्मा बोल रही हूँ।
1: क्या
0: चीचू की मलिया से? सारों को याद रहेगा
1: चीचू की मलिया।
0: हाँ कहना मैं चीचू की मलिया से बिस्मा बोल रही हूँ।
1: मैंने तो पहले तो भाई
0: ये बड़ा अच्छा मुल्क है
1: चीचू की मलिया।
0: हाँ ये एक मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है चीचू की मलिया, वहाँ पे अगर आपको कभी मौका मिले ऑन अराइवल वीजा मिलता है। हाँ हाँ और वो मतलब इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को एंट्री अलाउ है। हाँ नहीं उधर एंट्री वो नहीं, उधर सिर्फ यहाँ शादीशुदा मर्द हजरात जा सकते हैं, खूबसूरत लड़कियाँ।
1: आप सच बोल रहे हैं,
0: मेरा यकीन करें, मेरा बड़ा दिल है वहाँ जाने के लेकिन मैं जा नहीं पाता ना, इसी वजह से मुझे पता चला वहाँ पे बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, दुनिया की हसीन तरीन लड़कियाँ वहाँ पे जाती हैं।
1: अच्छा तो फिर आप इसे राजे
0: मैंने बड़ी दफा कोशिश की है लेकिन वो जा नहीं सकता ना मैं, क्योंकि क्या
1: देखना चाहते हैं वो दुनिया में नहीं मिलनी, मरने के बाद मिलेंगी जन्नत में जा।
0: नहीं नहीं तो लाहौर में है ना जी, तीन दरवाजे हैं जहाँ से हूरे निकलती हैं, जो यूनिवर्सिटी में हम कहते थे जेल रोड पे, और वो तीन जन्नत के दरवाजे हम दोस्त छेड़ा करते थे, एक लाहौर कॉलेज, अपवा कॉलेज, कनेड कॉलेज, दोपहर को जाए अंदर से ऐसे हूरे निकल के आ रही होती है। बोला था बात है वो हूरे पता नहीं है किसके नसीब में। वसीम साहब साथ हंस रहे हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम तमाम लिस्टर्स को। वो पता है क्या है, वो वीजा देने के लिए चूंकि मैं बैठा होता ना चीचों की मलियों का।
0: हूरे तो बड़ी हैं, देखें हूरे बहुत हैं, हूरे मिलती है नहीं मिलती है एक अलग बात है,
2: मगर हूरे है ना सर वो लंगूर की बगल में हूरे है।
0: मैं लंगूर ही है ना जी, पाए लाभ दी नहीं।
1: हूर किसे कहते हैं आपकी नजर में,
0: हूर
1: कौन होती है?
0: हूर वो होती है जो आपकी होती है, बस वही
1: हूर
0: होती है।
1: ग्रेट। बात है, आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आजकल।
0: आजकल? हाय अल्लाह।
1: नहीं मतलब ये वाली बात है, जो आपकी है वो हूर है, जो आपका है वो हूर पड़ा है।
0: हाँ
1: उसके पास ही सारे लंगूर हैं।
0: हाँ हाँ सही बात है, जो आपका होता है ना, जो जो फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका है वो लंगूर है।
1: नहीं नहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ये बात नहीं है, मैं कहती हूँ जो बस ऐसा हो जिसकी मैं सोलमेट हूँ और जो मेरा सोलमेट हूँ, जिसे मैं पसंद आ जो और मुझे वो पसंद आ जाए, बात ही खत्म।
0: वो तो मैं तो कहना कुड़ियों की तो वैसे ही चांदी है।
1: क्या
0: कुड़ियों की तो वैसे ही चांदी है, मसला तो हम बंदों को होता है, हमें कोई नहीं पसंद करती है, लड़कियों को तो पसंद करने वाले बेशुमार है। आपके डीएम में, आपके सोशल मीडिया पे बीसियों मैसेज आए होते हैं।
2: सही बात,
0: सानू तो एक नहीं आया होता, असि तो देख रही यार हमें भी कोई मैसेज करो ना यार, क्या है
1: आप मेरी सुनेंगे?
0: हाँ सुनाएं।
1: ढाई घंटे से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, अभी भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, दिल कर रहे एक जरा फ्लाइंग उठता हुआ होता है ना वो भेजूं यहाँ से।
0: अच्छा जी पक्की गल है? मैं समझ लूं जो समझना है। मैं
1: ढाई घंटे से मैं कॉल कर रही हूँ, लड़की हूँ मैं, क्या हूँ?
0: वसीम साहब
2: जी
0: क्या बात है, मुझे खुश कर दिया लड़की ने, ये बात कह
2: सही बात है, सही बात है।
1: अच्छा, मैं खुश कर रही थी, आप क्या कहते हैं, आप एक डायलॉग तो मेरे वाला बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं मेरी अंदर की लड़की को ना जगा, मैं ऐसे मेरा डायलॉग, मैं कहते मेरे अंदर के मर्द को ना जगाना, ठीक है? तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं अच्छी जी जैसी तुम्हारे अंदर के मर्द की, तुम लड़की हो लड़की बन करो, अच्छी लगती हो, लड़की ही अच्छी लगती है।
0: तो होते हैं ना, खवातीन के अंदर मर्द होता है, बंदों के अंदर औरतें होती हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ हाँ,
1: मुझे लगा कि हम लड़कियों में मुझ में ये चीज है, तो जब आपको मैंने सुना ही कहते, मैंने कहा कितनी हैरत वाली बात है, ये मेरे डायलॉग बोल रहे हैं, ये ऐसे मैं बोलती हूँ,
0: फिर इसका मतलब है आप मेरे से पहले आई हैं दुनिया में।
1: हाँ हाँ, आपकी कभी जैसे रूह होती है, रूह मेरी पहले आ गई होगी, जिस्म बाद में आया होगा।
0: आपकी रूह यहाँ पे बदरू बन के फिर रही थी, जिस्म ढूंढती किस जिस्म में मैंने घुसना है,
2: बदरू
1: बदरू हुआ से आप बदरू हो गए।
0: हाँ, तो खुद ही कह रही हैं आप कि मेरी रूह यहाँ पे पहले आ गई थी।
1: मैं बदरू नहीं बोला, रूहें अच्छी भी तो होती है ना, फरिश्तों की भी होती हैं, अच्छे अच्छे बुजुर्गों की भी।
0: जितनी मर्जी अच्छी हो ना, मैं राती कल्ला बैठा हूँ, एकदम सामने आएगी ना, मैं तरा ही मेरा निकलेगा, मैं तो चीख के कहना अम्मी।
1: कहना था बट वो आपने क्या कहते हैं कोहली एंड साइड से मेरा दम निकल गया, और वो जो लड़की थी ढाई घंटे से बोल रही थी कि नंबर बिजी है बिजी है, उसने मुझे कह दिया कि बहन जाओ पानी पी लो सांस ले लो, तुम तो चमर गई हो, इधर ही हो गई हो, तुम मर ना जाना, तुम पागल ना हो जाना। मैंने कहा तुम मुझे ना बस वो टूट आवाज सुना दो, ठीक है, तुम्हारा काम बस तू तू हो, और फिर बाकी अल्लाह वो हदायत दे जिसके तरफ जा रही है उसे वो उठा ले, बस वो कॉल मेरी पिक कर ले बस, ठीक है।
0: आप इंटर्नशिप प्रोग्राम पे आ रही हैं?
1: मैं यही तो बताना था, मैं बहुत सैड हूँ, मैंने पापा से बात की है, पता नहीं वो कैसे कैसे बातें कर रहे थे, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और मम्मा से भी बात नहीं थी, तो क्योंकि
0: मैंने तो कहा था पापा को भेज दें इंटर्नशिप करने के लिए।
1: अच्छा, हम तो आ नहीं रहे तो पापा हमें तो भेज नहीं दे रहे, तो आ ही
0: चलो कोई नहीं बाहर वंस अगेन आई टेल एवरीवन, जी जो अभी सुन रहे हैं उनके लिए रेडियो पाकिस्तान पर इंटर्नशिप प्रोग्राम हो रहा है, 28 साल जिसकी एज लिमिट है, और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 मंथ ऑफ माइक है और 1 मंथ ऑन माइक है जी, और 2 मंथ्स का ये हफ्ते में 2 दिन है, बहुत दूर जुम्मे
1: वो ये कह रहे थे सबमिट, मतलब हम कर रहे हैं लोगों को ऐड कर रहे हैं, तो मींस के जो फॉर एग्जांपल 1000 लोगों ने सबमिट कर दिया है फॉर्म, ठीक है, उसमें क्या सारे आ जाएंगे या उनको जो ग्रुप में ऐड होंगे जिनको मैसेज जाएगा वो तशरीफ लाएंगे?
0: हाँ जी, ऐसे ही है जी, ऐसे ही।
1: अच्छा, तो फिर उसमें मेरा नाम ही ना आया तो फिर मैं कहाँ से आगे बदरू ही बन के आऊंगी फिर, तो मैं जब भी आऊंगी।
0: आपके तो अब्बा ने परमिशन ही नहीं दी, अब क्या फायदा नाम आए ना आए।
1: हाँ, तो फिर नाम तो आया ना, मुझे ये तो ओके चलो मैं इस काबिल तो थी, मैं नाम आया और मेरे अबू शहजादे बादशाह बंदे ने मुझे जाने नहीं दिया, मेरा नाम तो आया था ना, जैसे आपने मेरा नाम लिया मैं आई।
0: वसीम साहब से बात करवाइएगा, वसीम साहब उन्हें कन्विंस कर लेंगे।
1: मैं
2: हाँ, मुझसे बात करवाइएगा।
1: मैं तो कहती हूँ जूबी आप ही से मम्मा की बात करवा दो।
0: हाँ, करवा दे।
1: जब उनके शो में कॉल करके मैं कहूँगी जूबी आप ही ऐसा मतलब दीन वाला लेक्चर देना ना, मन मान जाए वो बिजनेस वो उनको ना, मतलब ये ना कह देना कहीं कि हम इनको बोलना सिखाएंगे, वो तो पहले मुझे कहती
0: हूँ पहले ही बड़ा बोल दिए।
1: हाँ, वो आप ही भी कहते तुमने कवरे खाए हुए, उस दिन भी मैं बड़ी सैड थी, और मेरे पास एक ना मैडम आई थी, पता नहीं सलमा नाम था ये साइमा नाम था, बड़ी अच्छी बात थी, मुझे बच्चों को भी सुनना चाहिए, मीन्स कि मेरे पापा कह रहे थे ना कि तुम्हारी फील्ड देखो बेटा मेडिकल की फील्ड है, तो आप किधर जा रहे हो, पता नहीं कौन लोग हो कैसे हो, ये
0: कहना मैं मेडिकल की फील्ड है बोलना सीखूंगी ज्यादा लोग मेरे कस्टमर बनेंगे, और डॉक्टर बोल के ठीक कर देंदी है, अद्धा मस्त गला नाल ही ठीक कर देंदी है, गली बाती है बड़ी वड्डी।
2: गली बाती डॉक्टर
0: है, बोली जाती है मैं दस रहा मेरे ढिड़ से दर्द है, कहंदी नहीं आपको देख कर लग रहा आपके सर में भी दर्द है, इनको सर दर्द की भी दवाई दें, इन्हें टीका लगाया, मैं टीका होने लगा के आया नहीं, अब आपको एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच बिस्मा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो भूल ही गया था ऑन एयर। मैं समझे कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है। थैंक यू वेरी मच। नहीं मैं तो सजाद की भी कोशिश कर रहा था, सजाद अली लाडला कॉल करते हैं बड़े अरसे से, हमें उनकी नहीं मिल रही तो मैंने कहा उनकी शायद हो। बहरहाल थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल मेरी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया।
1: थैंक यू। और वसीम भाई आपको भी मेरा सलाम है, प्यार है, अब आपका शो सुनने लगे हैं हम, मजा आएगा।
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक
2: यू,
0: अल्लाह हाफिज। और जी वसीम साहब कैसे हैं आप?
2: जी आप सुनाए सर, फर्स्ट क्लास हैं माशाल्लाह, बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप।
0: अस्तगफिर
2: इतनी लंबी और मजे की कॉल हुई है अभी थोड़ी देर पहले,
0: ये रिफ्रेशिंग करने के लिए जरूरी था। जरूरी था इधर,
2: मगर जो उसमें जो बात थी ना बदरू वाली, वो बड़ी मजे की थी।
0: हेलो
3: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: अब्दुल साहब ये राज साहब बैठे हैं?
0: नहीं जी, ये वसीम साहब बैठे हैं।
3: अच्छा सर, राज साहब। अच्छा साहब, आपको वसीम साहब को तमाम सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।
3: मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, सन्नाबाद लाहौर से।
0: कैसे हैं भट्ट साहब आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी,
3: अल्लाह का शुक्र। दो तीन दिन पहले भी ईद पे भी बात हुई।
0: हाँ जी हाँ जी, आपने बताया था कोई, आपने मेरा ख्याल है 20-25 साल क्रिकेट खेलते रहे आप, और आपके बच्चे भी अब जवान हो गए, आपने बताया था।
3: हाँ अल्लाह, हाँ जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का।
0: मेरा ख्याल है उस दिन बात तो हो रही थी शायद दूसरी शादी के हवाले से,
2: मेरे को प्रोग्राम में कॉल आई थी उनकी,
3: वो एक ही भुगत रहे हैं।
0: अच्छा अब ये बताए, ताबेदारी से भुगत रहे हैं या अकड़ के?
3: ये जब के रिटायर हुए, किचन संभाला हुआ है।
0: क्या चीज अच्छी बनानी सीखी है आपने?
3: नहीं वो तो मैं शुरू से ही बनाता हूँ, मैंने इनको
0: क्या मतलब क्या शुरू से बंदों का तो काम है
2: बातें बनाना।
3: भाभी को, भाभी साथ ही बैठी हुई है आपकी, इन्हीं को मैंने सिखाया था।
0: अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ये आपका बंदा बहुत तंग करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
4: ठीक हूं।
0: आप खैरियत से हैं?
4: जी ठीक हूं बिल्कुल।
0: ओ लास्ट शो में आपसे छुप के कह रहे थे मैं दूसरी शादी का सोच रहा हूं।
2: और अपना प्रोफाइल भी शेयर किया था शायद।
4: इन्होंने नहीं करनी दूसरी शादी, ये वैसे शौकिया तौर पे करते
0: रहते हैं, है ना? ये शौकिया बंद कराए ना जरा इनकी।
2: शौकिया शोखा शोखा पूरा।
0: अभी ये मेरा ख्याल है माशाल्लाह आप बेटे की उस दिन बात कर रहे थे आपका, माशाल्लाह बेटा
3: मेरी कितने साल का? मेरे बेटा मेरा मैं 35-36 साल का।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह।
3: वो मैंने ये आप जो टॉपिक रखा हुआ था, मैं कह रहा था कि कोई भी पेरेंट्स हो ना, वो बच्चों से तकरीबन 20-25 साल बड़े होते हैं, जैसे हम बड़े हैं अपने बच्चों से, तो ये धोखे से बचता इंसान इस तरह है कि बड़ों के पास बैठे, माँ बाप कभी धोखा नहीं करते, माँ बाप के साथ बैठे बच्चे और शुरू से सीखें उनकी बातें, जो जो माँ बाप ने वक्त गुजारा हुआ ना, जो माँ बाप ने धोखे खाए हुए हैं, वो बच्चे सुने सीखें, उस्तादों से सीखें, फिर ये है कि बंदा काफी हद तक धोखों से बच जाए।
0: बहुत अच्छी बात की आपने सर।
3: दूसरा ये है कि जो मोमन होता है ना, मोमन से गुस्सा आता है, और जो मुखा जो होता है वो आपने दूसरा कह रहा था मुनाफिक, हाँ उसे तो गुस्सा आना है, उसने तो जिसके पास बैठना उसी का ही हो जाना है, मोमन को गुस्सा आता है। मोमन इसीलिए तो मोमन शहीद होते हैं, अल्लाह की राह में जान दे देते हैं।
0: सही कह रहे हैं।
3: तो बाकी ये है कि बच्चों को माँ बाप के पास बैठना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, और सासा के पास फिर काफी हद तक इंसान धोखों से बच जाता है।
0: ये मैं तो
3: आपकी और भाभी और मैं इस वक्त सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम मेरा ज्यादा लंबे टाइम का है।
0: हाँ मैंने बड़ी कोशिश की दोनों में, आज थोड़ी सी झड़प हो, भाभी आपको डांटे हैं कि तुसी को मेरे पीछे।
3: वो मैंने आज ही एक दूसरे 93 पे एक आलम से सुना, मैंने कहा किसी ने, मैंने सवाल किया, मैंने कहा जिन मियां बीवी की सारी जिंदगी लड़ाई रहती है क्या जन्नत में? कहते नहीं, जन्नत में जो दाखिल होगा ना वो दिल सबके पाक साफ होके जाएंगे, वहाँ वो साथी होंगे, यहाँ बेशक लगते रहे उधर जाके एक दूसरे के साथी होंगे।
0: आपने सवाल ठीक नहीं पूछा। तो कहना चाहिए किबला, मेरा सवाल ये है कि आपको जन्नत में भी आपकी दुनिया वाली बीवी मिलेगी? फिर वो सही जवाब देते।
2: नहीं।
0: ऐसे नहीं होने वाला,
2: अब दोबारा
3: ये जो बीवी वाला तजर्बा है ना, तजर्बा ये इधर ही बंदा भुगत लेना बड़ा है ये तो कभी जिंदगी में कभी ऑफेयर हुए तो फिर बातें करेंगे और बताएंगे आपको।
0: थैंक यू,
3: लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना जी, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना जी, ऐसे ही बड़ी मेहरबानी है।
0: थैंक यू जी, वालेकुम
3: अस्सलाम।
0: यार राती 1:30 बजे दे टाइम किस तरह की गुफ्तगू यार, ये करने की गुफ्तगू है कॉलर के साथ इस तरह की, पहले इतनी संजीदा संजीदा। वसीम साहब को देख के ना चेहरे पे जरा रौनक आ जाती। अस्सलाम वालेकुम जी।
5: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: आओ जी आओ जी।
5: खमार वो नहीं जो फक्त आंखों में उतर आए।
0: आहा वाह वाह वाह वाह।
5: वो नहीं जो फक्त आंखों में उतर आए, कुमार वो है जो रूह में उतर कर घर कर जाए।
0: ओए होए होए।
5: जहाँ सांस महकते हों, जहाँ अल्फाज निखरते हों, वही तो दिल ठहरता है, वही खुमार कहलाता है।
0: वाह वाह
5: वाह। बहुत शुक्रिया कि किसी की याद का मौसम, किसी की बात का जादू, जो देर तक ना उतर पाए वही खुमार कहलाता है। And assalamualaikum, satbismillah to GIN Islam, welcome to the show.
0: मैंने आपकी वजह से देखें कॉल्स ली इतनी सारी, देर तक थोड़ा बैठा हूं कि हर दफा आपका गिला होता है, आज मैं बैठूं।
5: सर आपकी मोहब्बत, आपकी प्यार का बेहद शुक्रिया, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है।
0: अब अहकाल देना हूं फिर। अच्छा
5: अभी
0: अब अहकाल देना मेरे। जड़ी खमारी तुसी रूह दे विच लाई है ना, एदी मैनू समझ नहीं आई। अच्छा चलो सुनाओ सजाद।
5: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लगता है आपको सुन के। आज ही मैं थे वैसे कह रहे थे मैं सत्ता जमाऊंगा।
0: अच्छा
5: मेरी गाल नहीं लगती है, मैं क्या अगले शो बाद से ना मैं सदका हूँ, बाकी मैं सदका देना बन रहा क्योंकि मेरी साल मिल गई।
0: हाँ बनता बनता।
5: और सिंह सर तानू भी वेलकम, कैसे शाम जी ते अस्सलाम वालेकुम।
2: थैंक यू थैंक यू।
5: सर जी तुसी अज जी गल कर रहे था कि असि किसी दी रिकवर किस तरह बन जाने। नहीं नहीं
0: असि रिकवर्ट नहीं बनदे पाए ना। मतलब आप डायरेक्ट कबाब में हड्डी बनाए जा रहे हैं, मैं कबाब बनने के मूड में हूँ, आप हड्डी क्यों बना रहे हैं मुझे, मैं रुकावट नहीं बनता। किसी को पहचानने में जो रुकावट है वो कौन सी होती है कि हम बंदे को पहचान नहीं पाते।
5: वो ही मैं कह रहा हूँ।
0: हाँ
5: हम जब लबादे को दरअसल अपनी अना दी
0: सही बताएं, बात पूरी करें, आप बात पूरी करें।
5: जी सर मैं कह रहा था कि हम सब रिश्तों के बारे में दरअसल अपनी अना के खरीदार हैं।
0: हुई हुई।
5: हम एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक हंसे, हमारी मर्जी के मुताबिक रोए, और हमारी अना को रोज ये यकीन दिलाए कि तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं।
0: हाँ ना।
5: जहाँ सामने वाले ने अपनी अलग पहचान या मर्जी दिखाई वही हमारी मोहब्बत दम तोड़ देती है।
0: वाह वाह वाह वाह वा।
5: और जिसमें शुरू हो जाता है और ये रिश्ता जेनी ग्रामी का मुतालबा है। मतलब कि सर जी उसे जो अस कहने ना साढ़े मियार से पूरा नहीं उतरता कोई साड़ी उसे जी होंगे ना मोहब्बत या उस इंसान के ना तलकात होंगे उठी दम तोड़ दूंगी। अरे इसके हवाले से एक पोएट्री भी है मेरे साथ।
0: सुनाएं सुनाएं सुनाएं।
5: अगर आपकी इजाजत हो। चलो कहते हैं कि पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी, और नजर आता है जो वैसा नहीं होता, कोई शख्स खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी।
0: नजर आता है जो बैठा नहीं होता,
5: नजर आता है जो वैसा नहीं होता,
0: वैसा नहीं होता, अच्छा
5: खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी, और एक दीवार उठाई थी बड़ी उजलत में,
0: एक दीवार उठाई थी उजलत में,
5: उजलत में
0: उसको गिराने में बहुत देर लगी,
5: गिराने में बहुत देर लगी,
0: वाह वाह।
5: और आज ही आग थी और लोग बहुत चारों तरफ, अपना तो ध्यान ही आने में बहुत देर लगी।
0: हाय हाय क्या बात है, छा गए लड़के,
5: बहुत शुक्रिया कि सर जिस तरह हम कभी होना ही नहीं चाहते थे खुद को फिर वैसा बनाने में बहुत देर लगी।
0: हाय क्या बात है लड़के,
5: बहुत शुक्रिया कि ये हवा तो ये हुआ तो कि हर एक शहर की कशिश मानत पड़ी मगर उस मोर पे आने में बहुत देर लगी।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह मानंद पड़ी,
2: क्या बात,
0: छागे थैंक यू, राजी है भाई, राजी है।
5: मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर दफे राजी हूं, गिला नहीं हूं, मैं सिर्फ यह दस रहा हूं कि सर्दी में कोशिश कर रहे हैं थोड़े ना गल करने।
0: चलो ठीक है, थैंक यू सजाद, थैंक यू,
5: अल्लाह
0: हाफिज, अल्लाह हाफिज। लो जी वसीम साहब थैंक यू वेरी मच जी, अब मैं आपसे जा लूंगा, जाते जाते
2: सर बैठे, मैं तो कहता हूं 4 बजे तक आज बैठे,
0: पैर मेरे सिर च दर्द है, मैं तो पहले बड़ी मुश्किल नाल बैठा जी, यकीन करो मैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद सिर,
2: आपके साथ कभी कभी मौका मिलता है शो करने का, हाँ ए गिला है जी,
0: हाँ नहीं सही कह रहे, सही कह रहे, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम,
0: हाँ ये अमित गुल साहब,
6: आप ठीक हैं, खैरियत से हैं,
0: बड़ी देर बाद आए हैं जनाब मोहतरम,
6: मैं गूगल पे तलाश कर रहा था कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कॉल जल्दी मिल जाए, कल नहीं दसिया बाबा जी,
0: अच्छा
6: हाँ वसीम साहब आपको और असल भाई आपको ईद मुबारक हो,
2: थैंक यू, थैंक यू मुबारक सर,
6: वो बात हो रही थी धोखे पे,
0: हाँ जी जी,
6: हाँ और पैरामीटर पे भी जाते
0: नहीं है, जी जी जी जी,
6: धोखा बड़ी मजेदार चीज है सर, है ना,
0: हाँ नहीं स्पाइसी होता बड़ा
6: तो किसी का शेर
0: इतना स्पाइसी होता है आंसू निकल आते हैं यकीन करें,
6: हाँ हाँ नहीं हंसने से भी निकल आते हैं बाद का,
0: लेकिन धोखे से तो लाजमी निकलते हैं ना, स्पाइसी ज्यादा होता है, आंसू ज्यादा लाजमी निकलेंगे धोखा खाने से,
6: हाँ हाँ वो,
0: और जितना ज्यादा खाएंगे उतने ज्यादा निकलेंगे,
6: हाँ नहीं कभी कभी नहीं ज्यादा खाने वाला धोखा बेवकूफ होता है, एक दो दफा ज्यादा नहीं खाया जाता धोखा,
0: सर आप ठीक कह रहे हैं,
6: मोजे होता है सही,
0: नहीं आप सही कह रहे हैं, मैं अब महसूस कर रहा हूँ मैं बेवकूफ
6: असल में बात यह है उस्ताद का शेर है कि मैं भी कितना भूखा हूँ धोखा भी खा जाता हूँ,
0: सही बात है, बहुत अच्छा,
6: डिपेंड करता है सर,
0: बहुत अच्छा सर,
6: हाँ डिपेंड करता है, और पैरामीटर पे देखिए निदा फाजली ने कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना, अब देखें सर के हम पैरामीटर तो नहीं सेट करते, हाँ, नहीं कर सकते किसी की मतलब, जैसे आपने कहा फर्ज कर लेते हैं,
0: हाँ,
6: तो फर्ज तो मैंने भी एक नज्म अपनी की हुई है
0: सर, सुनाएं,
6: लेकिन वो सुनाते हैं आपको,
0: सुनाइए,
6: लेकिन मैं सुनाऊंगा आपको, मैं थोड़ी अपनी बात मुकम्मल कर लूं,
0: जी कीजिए,
6: मैं ये कह रहा हूँ असद भाई कि निदा फाजली ने जब ये शेर कहा तो मैंने किसी जमाने में शायद आज से 10-15 साल पहले जब ये यूट्यूब का जमाना था, ये फेसबुक वगैरह नहीं थी जमाने में, हम तक ये शेर पहुंचा,
0: जी जी,
6: बात यह है कि पैरामीटर सेट कर सकते हैं आप, किसी का नहीं कर सकते आप
0: जी,
6: अपना जरूर कर सकते हैं,
0: अपना जरूर कर सकते हैं, वेरी
6: ट्रू। आप अपना पैरामीटर सेट करें।
0: सर बात ये थी ना मेरी कि हमने तो अपना सेट करना है ना।
6: हाँ हमने अपना सेट करना, वो फिर थोड़ा आपको मसले आसान हो जाते हैं समझने के लिए। और मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, आज एक वाक्य से हम गुजरे एक जिरगे में, जिसमें इस किस्म की बात सामने आई एक धोखे की, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा वो क्या वाक्य था, लेकिन मैंने वहाँ बात करते हुए कहा कि हमने अपने बच्चों से काउंसलिंग करना छोड़ दी।
0: सही कह रहे हैं आप,
6: जिसकी वजह से हमारे बच्चे धोखे का शिकार हो रहे हैं।
0: सही कह रहे हैं।
6: या उनमें कहीं लालच, देखें लालच का आना भी एक धोखा है।
0: सही कह रहे हैं आप,
6: मतलब आपका कहीं फरेब खाना जो है, या आप मतलब बहरहाल कहीं ना कहीं पे आप धोखा खा ही जाते हैं।
0: सही कह रहे हैं सर,
6: एतमाद है, भरोसा है, कहीं ना कहीं आपका टूट जाता है, ये होता है जिंदगी में
0: सर। सर
6: तो
0: सर,
6: ये है कि हम अपने बच्चों को इसकी सबसे, मैंने जो देखा मेरा बेटा है कि अल्लाह उसको जिंदगी दे, मेरी दो बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आमीन आमीन।
6: आपकी तो मुलाकात हुई है मेरे बेटे से?
0: जी बिल्कुल हुई, जी बिल्कुल हुई,
6: उकाशा से, मोहम्मद उकाशा। मैंने अपने बेटे को एक ही बात समझाई थी, आजकल वो सऊदी अरब में होता है माशाल्लाह, अल्लाह उसे कामयाब करे। मैंने कहा जो भी करना हो ना मुझसे पूछ के करना, चाहे कितना बड़ा काम क्यों ना हो, कितना सख्त काम क्यों ना हो, और कितना आसान काम क्यों ना हो,
0: बिल्कुल
6: मुझसे मशवरा जरूर करना। तो उसने कहा कि अबू मैं अगर ये कहूँ कि मैं फलां शख्स से झगड़ा करने लगूं, मैंने कहा मुझे वो भी बताना तुम।
0: अच्छा
6: क्यों? उसने कहा अबू वो आपको क्यों बताऊं? मैंने कहा इसलिए कि मैं तुम्हें फिर झगड़े का तरीका भी सिखाऊंगा।
0: बहुत अच्छा।
6: अच्छा इसमें एक बात ये थी कि मैं उसे झगड़े का तरीका नहीं सिखाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा कि उसके जहन में क्या चल रहा है, मतलब ये जो एतमाद हम है ना, हमने अपने बच्चों को एतमाद से बहुत दूर कर दिया है।
0: ठीक कह रहे हैं।
6: इसी वजह से घरेलू जो है बच्चे आजकल शिकार हैं, बच्चे अपने माँ बाप से बात करते हुए डरते हैं, बल्कि अब तो माँ बाप बच्चों से बात करते हुए डरते हैं, थोड़ा सा मामला उल्ट भी कहीं ना कहीं चल रहा है। वो शहीद दोषी का शेर है ना कि वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होंठों से।
0: वाह वाह।
6: वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होंठों से, ज़ईफ बाप को बेटे से बात करना थी। ये एक लम्हा है, बहरहाल ये नज़्म मैं आपको सुना के इजाजत चाहता हूँ। आज आप बड़ी देर तक माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं,
0: बड़े अरसे के बाद आज मैंने 3-3.5 घंटे किए।
6: नहीं हमें वो लाहौर वाली जो जब आप आए थे तो वो याद आ गया। अच्छा
0: जी
6: आपसे बात होगी, नज़्म सुना के इजाजत, पाठ करने पे हमने भी कहा था लेकिन देखिए मैंने अपने ऊपर इल्जाम नहीं आने दिया।
0: शायर
6: एक लिखारी का ये कमाल होना चाहिए बकौल अनवर सलीम कि वो अपने पे कोई बात रहने ना दे।
0: सर, सर,
6: मैंने कहा सर अगर रह जाए तो उसने कहा वो बड़ा बेवकूफ लिखारी होगा। मैंने कहा अच्छा सर ठीक है। तो मैंने नज़्म कही थी कई दफा पढ़ी है, आपने भी सुनी होगी कि चलो कुछ फर्ज करते हैं, चलो कुछ फर्ज करते हैं, यूं ही कुछ अर्ज करते हैं, वही वाजिबी सा एक जुमला, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो क्या तुम मान जाओगे, मोहब्बत जान पाओगे,
0: मोहब्बत जान पाओगे,
6: चलो कुछ फर्ज करते हैं। तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं फर्ज करना भी बड़ा जरूरी है।
0: बिल्कुल सही।
6: और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ असद भाई के ये सारी दुनिया गलत है
0: जी,
6: मैं ठीक हूँ। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये सारी दुनिया ठीक है, मैं गलत हूँ
0: जी।
6: ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे,
0: दोनों सूरत हाल अच्छी है,
6: जो आप किस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक बात है।
6: और कभी कभी ये लगता है कि ना मैं ठीक हूँ ना ये ठीक है, दुनिया ठीक है,
0: ये सारे बेवकूफ है, मैं भी बेवकूफ,
6: हम सब बेवकूफ हैं, बल्कि हम सब कबूतर हैं बकौल आपके।
0: बड़ा याद रखा आपने, सही कह।
6: नहीं मुझे याद है, मैं तो इसको कहीं ना कहीं इस आपके इस जुमले को किसी नज्म में ऐसे ही खूबसूरती के साथ पेट करूंगा कि ये लगेगा कि हम सब कबूतर हैं।
0: सर सर सर
6: तो इसने वसीम भाई प्रोग्राम करेंगे, उनके साथ शायरी इंशाल्लाह शेयर करेंगे।
0: सर थैंक यू,
6: ठीक है ना सर,
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर,
2: थैंक यू,
6: अल्लाह हाफिज़।
0: لیں جی بغیر کسی تمہید کے کنکلوڈنگ کوئی ریمارکس نہیں ہے, جو میں نے بات کر دی تھی وہی ہے, ہماری انا, ہماری نفرتیں, ہمارے تعصب, ہمارے فیئر, ہمارے خوف, ہمارے ماضی کے تجربات, اور خود سے فرض کر لینا کسی کو سنے بغیر اس طرح کے معاملات, اور حقیقت کو اپنے انداز میں ڈھال لینا. یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے کسی کو سمجھنے میں بہت بڑی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے. جب کسی کو سمجھنا ہے تو سمپل سا ایک جملہ ہے, کوئی لمبی بات نہیں ہے وسیم صاحب میرے نظر میں.
2: جی
0: کسی کو اگر سمجھنا ہے نا تو کوئی تھیوری, کوئی چیز کچھ نہیں, صرف اپنی ذات کے سامنے وہ فارمولا رکھیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھا جائے.
2: صحیح صحیح.
0: اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی جانے, کس طرح سے جانے, اسی طرح سے کسی کو جاننے کی کوشش کریں تو جان جائیں.
2: بالکل ٹھیک,
0: باقی ساری باتیں سیکنڈری. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میں مائک ہینڈ اوور کر رہا ہوں جی وسیم صاحب کے.
2: تھینک یو
0: سر. یہ کال لے جانے, کس طرح سے جانے, اسی طرح سے کسی کو جاننے کی کوشش کریں تو جان جائیں.
2: بالکل ٹھیک,
0: باقی ساری باتیں سیکنڈری. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.

0: स्पेशल वाली।
1: हाँ वाकई में अब उसी की जरूरत है, सही बात है।
0: ये तो जरूरी हो गया।
1: वसीम आपके साथ बैठे होने भी अस्सलाम
0: वालेकुम वसीम।
1: वसीम आज मेरे डॉक्टर प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा
2: जी शुक्रिया लगा। ठीक हूं
1: चलिए अल्लाह का शुक्रिया। वो जो आए थे आपके साथ कौन?
0: राहत राहत।
1: उनके बाद जो आए थे,
0: उनके बाद आए थे जुबैर साहब।
1: जुबैर साहब भाई कमाल गुफ्तगू की उन्होंने भी, राहत साहब ने भी और इन्होंने भी, बहुत इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। मगर डॉक्टर मुझे बड़ा पता है, जरा सा एहसास होता है कि जब रेडियो की शुरू से बात चल रही हो तो जैड बुखारी साहब का नाम नहीं आता कभी,
0: क्योंकि मेरा तारुफ नहीं है और मैं ना इस हवाले से इल्म मेरा कम है पुराने लोगों
1: के। किताबों में ही पढ़ा है डॉक्स और सुना भी है उनके बारे में। हमने कहा वो जमाना देखा नहीं देखा, लेकिन बनाने वालों में से थे वो और सिखाने वालों में से थे वो।
2: सही सही ऐसे ही है,
1: जरूर बनाना चाहिए उनका नाम भी ना, मुझे थोड़ा सा एक रहा दिल में वो। लेकिन खैर प्रोग्राम आपने इतनी देर तक किया, आप अपनी भावों को भी दबाते रहे, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि शायद सर में दर्द हो रहा है। वो एक कॉल जो आती है वो तो आपका सर ही दुखाती होगी यकीनी तौर पे, लेकिन आपके जज्बे सब्र को मैं सलाम पेश करती हूँ। कैसे आप बात को निभा देते हैं और किस तरह से, भाई कमाल है आपका। इतनी पेशेंस हमें नहीं है, हर किसी भी नहीं है, इसीलिए तो बस ये मामला चल जाते ना गड़बड़ वाले।
0: अब बस ऐसे ही
1: वाकई आपको, आपको तो सलूट है, बर्दाश्त के बादशाह हो गए आप। पता नहीं किस किस चीज़ों के, अब मैं यहाँ क्या बोलूँ, आपको शर्म आ जाएगी।
0: ताज्जुब की बात है।
1: जी जी।
0: कहते हैं बादशाह की बादशाहत की तकमील तब तक नहीं होती जब तक मलका पहलू में ना हो।
1: अच्छा।
0: बादशाह का लफ्ज इन्वेंट तब होता है जब मलका हो। अगर मलका नहीं है तो बादशाह को भी किसी शय में मलका हासिल नहीं है।
2: बिल्कुल ठीक है, उसको मलका हासिल नहीं है।
1: ये तो बड़ी जाती हो गई ना, हर किसी का अपना अपना टैलेंट है, कोई यूं ही कामयाब है और कोई दो होकर भी कामयाब नहीं हो पाता।
0: वाह वाह, मुझे दो के साथ नाकामी कबूल है।
1: क्यों कहते हैं अपने साथ ऐसा जुल्म?
0: हाय हो ही जाने दे ऐसा जुल्म, मैं तो कहता हूँ दो वाला।
1: हाय हाय हाय, नहीं नहीं आप बिल्कुल वो करें और अपनी एंजॉय करें अपनी लाइफ को, दूसरों को तो इतनी मोहब्बतें बांटते हैं, प्यार देते हैं, हर तरह से खुश रखते हैं, आपको भी तो हक है ना, आप अपने दिल को भी खुश करें।
0: हाँ बिल्कुल,
1: आप कहिएगा मेरी कॉल के बाद ना, जरा इनको कहिएगा डॉक्टर को, समझाइएगा
0: समझाइएगा वसीम साहब समझाइएगा।
1: हाँ ना, काश ये किसी की सुन ले, मेरे पास तो कोई ऐसा मौका नहीं है, मतलब मैं बैठ के ना मुँह दरूँ जरा बात करूँ, तो खुदा के वास्ते कर लें भाई, अपने आप को भी खुशियाँ दें थोड़ी सी। क्या क्या आपकी तहरीरें मैं पढ़ती रहती हूँ, जो आवाज भी मैंने एक पढ़ी है बहुत, ओह हो कमाल।
2: हाँ, ये तो वो बहुत कमाल है, बहुत कमाल।
1: हाँ सच में पता नहीं क्या, मेरा तो बस मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ा दिन लगता है डॉक्स की बातें हम पढ़ पढ़ के जो डालते रहते हैं। अच्छा कल रिया ने भी बहुत अच्छा शो किया था और आज रहमान की तबीयत ख़राब हो गई, बड़ा दुख है मुझे, क्यों बार बार रहमान की तबीयत ख़राब हो रही है, टेस्ट वगैरह करा रहे हैं भाई अपने।
0: सही बात।
1: अच्छा डॉक्टर, वो जो बात कर रहे थे आप लोग अना पे और ईगो पे बात हो रही थी ना, तो मुझे पता नहीं किसका बहुत पुराना सा एक शेर मेरे दिमाग में आ रहा था कि देखिए आप अकड़ हो यहाँ पे और अना किस तरह बर्बादी फैलाती है, कि मैं अना का देवता तुमको मनाने आऊँगा, मैं अना का देवता तुमको मनाने आऊँगा, तुमने ये कैसे सोचा, मैं सर को झुकाने आऊंगा।
0: बहुत आला।
1: मैंने कहा ये देखिए ये जो अना है ना, इसी से मैं आपको बताती हूँ, अब आपके पास टाइम है या नहीं, वरना मैं आपको एक सुनाती बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल, इसमें भी अना का ही जिक्र आएगा, आप कहें तो सुनाऊँ वरना नहीं सुनाऊँ, अगर आपके सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप चले जाइए।
0: नहीं मैं कानों से सुनूंगा।
1: नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन असर तो होगा ना दिल दिमाग से।
0: बड़े अरसे बाद आपकी कॉल मिली है आप।
1: बहुत इंतजार के बाद, यकीन करें मेरी तो खत्म हो गई थी आज। ये है कि तुम्हारी भीगती पलकों से मैंने बारहा पूछा कि क्या मानिंद शीशा पत्थरों में बाल आता है, असर अंगेज है अब तक मोहब्बत का वही जज्बा जो ऐसे होशमंदों को भी यूं पागल बनाता है। तुम्हारी भीगती पलकों से मैंने बारहा पूछा, मिजाज हुस्न में यूं यक ब यक क्या इनकलाब आया, सितारा देखना और देख कर अफसुरदा हो जाना, बड़ी ताखिर से तुमको सितारों का हिसाब आया। तुम्हारी भीगती पलकों से मैंने बारहा पूछा कि तरके ये देखिएगा कि तरके रब पर क्या मुझसे वैशी याद आते हैं, ताल्लुक तोड़ना आसान था तो आँख क्यों नम है, अना परवर जफा पेशा भी यूं आ

0: सुभाते हैं।
1: तुम्हारी
0: पलकों से मैंने बारहा पूछा कि जलने और जलाने में भला क्या लुत्फ आता है, कि जलने और जलाने में भला क्या लुत्फ आता है, बस एक झूठी अना के वास्ते बर्बाद हो जाना, खुदी के जोम में इंसान कितने दुख उठाता है।
1: क्या बात, एक झूठी अना के जोम में
0: कितने दुख उठाता है इंसान, और वाकई उठाता है। हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेना और किसी को डिग्रेड करते चले जाना। वैसे ये भी है, डॉग्स के भरोसा भी करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। हम इंसान को नहीं समझ सकते। मेरे ख्याल में मुश्किल तरीन काम है दुनिया का कि किसी के बारे में हम कह दें हाँ ये 100% परफेक्ट बंदा या बंदी है, नहीं कह सकते।
1: बिल्कुल,
0: मुझे तो आप यकीन करें कई दफ़ा मैंने धोखा खाया है दोस्तियों में, और मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे बहन भाई भी मेरे साथ वाकई सच्चे हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मेरे सामने कुछ कहते हैं और बाद में कुछ बुरा मानते हो मेरी बात का। तो मुझे मेरा एतमाद तो बहुत टूटा है, यकीन करें आप। तो ऐसा वाकई वो मुझे कहते थे मेरे भाईजान कि तुम ज़रा सा देख लिया करो, सोच लिया करो, कोई ज़रा सा तुमसे हंस के मिला और तुम पागल हो गए। तो मुझे यकीन करें, मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, क्या भाई जन को मुश्किल पड़ी, हर वक्त यही कहते रहते हैं, इन्हें कोई अच्छा ही नहीं लगता। और लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मेरे भाई बिल्कुल सही कहते थे,
1: बिल्कुल सही
0: हकीकत। तो बस बड़ी मुश्किल से ये तजर्बात होते हैं डॉग्स, और आते आते आते आते अकल आ ही जाती है। अब अल्लाह करे कि आपको भी अकल आ जाए और अपने बारे में आप कुछ सोच लें। हाँ, वरना मैडम शर्मा से भी कहूँ मैं कि वो ज़रा आपको सिखाएं, हाँ ज़रा डांट लगाएं आपको। उनके आप बहुत बात मानते हैं ना, अच्छी खातून है, बहुत अच्छी खातून।
1: नहीं, बहुत अच्छी खातून।
0: चले, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि बहुत अच्छे के बाद आपसे बात भी लेकिन हो गई। कल मैंने जिया के प्रोग्राम में बड़ी कोशिश की, नहीं भाई इतना ज़बरदस्त कल जिया ने प्रोग्राम किया है, बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार था
1: जिया। माशाल्लाह, जिया तो फिर जिया है,
0: बहुत बाकी उनके पास भी अल्फाज का खजाना है और खूब ही बोलते हैं, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। अभी अब रहमान बेचारे नहीं हैं, ठीक है मालूम करेंगे, पता चल जाए उनकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच
1: मैडम, आपका बहुत शुक्रिया।
0: और वसीम का देखें, अब ये शुरू करेंगे, पता नहीं आप मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, लेकिन चलिए उनसे बात हो गई। आपके लिए बहुत सारी दुआएं और आपको अल्लाह का भी वास्ता कि आप अपनी जात के बारे में भी सोचें।
1: जी बिल्कुल, ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच,
0: चले अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह
1: All right, जी, this is RJ Doc signing off, और वसीम साहब के हवाले कर रहा हूँ जी, माइक डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहें FM 101।

0: listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

मेरी रूह में जो उतर सकें वो मोहब्बतें मुझे चाहिए। मेरी रूह में जो उतर सकें वो मोहब्बतें मुझे चाहिए। जो शराब हों न अजाब हों वो रफाकतें मुझे चाहिए।

मेरी रूह में जो उतर सके वो मोहब्बतें मुझे चाहिए, जो शराब हो ना अजाब हो वो रफाकते मुझे चाहिए, उन्हीं सातों की तलाश है, उन्हीं सातों की तलाश है जो कैलेंडरों से उतर गईं, जो समय के साथ गुजर गईं, वही फुर्सतें मुझे चाहिए, उन्हीं सातों की तलाश है जो कैलेंडरों से उतर गईं, जो समय के साथ गुजर गईं, वही फुर्सतें मुझे चाहिए, कहीं मिल सके तो समेट ला, कहीं मिल सके तो समेट ला मेरी रोज शब की कहानियां, जो गुबार वक्त में छुप गई वो हिकायतें मुझे चाहिए, कहीं मिल सके तो समेट ला मेरी रोज शब की कहानियां, जो गुबार वक्त में छुप गई वो हिकायतें मुझे चाहिए, जो मेरी शबों के चिराग थे, जो मेरी शबों के चिराग थे वही मेरी उम्मीद के बाग थे, वही लोग हैं मेरी आरजू, वही सूरतें मुझे चाहिए, जो मेरी शबों के चिराग थे वही मेरी उम्मीद के बाग थे, वही लोग हैं मेरी आरजू, वही सूरतें मुझे चाहिए, तेरी कुर्बतें नहीं चाहिए, तेरी कुर्बतें नहीं चाहिए मेरी शायरी के मिजाज को, मुझे फासलों से दवाम दे तेरी फुरकतें मुझे चाहिए, तेरी कुर्बतें नहीं चाहिए मेरी शायरी के मिजाज को, मुझे फासलों से दवाम दे तेरी फुरकतें मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ये दुआएं हैं मेरा साहिबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ये दुआएं हैं मेरा साहिबा, कड़ी धूप में जो मिल सकें तो यही छतें मुझे चाहिए, मेरी रूह में जो उतर सकें वो मोहब्बतें मुझे चाहिए, जो शराब हो ना अजाब हो वो रफाकतें मुझे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन, 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से ये आवाज आपकी जानी पहचानी, आपके अपने मेज़बान आरजे वसीम अहमद की, और प्रोग्राम आपका जाना पहचाना गुंचा शौक। रात के इस पहर में, जिस पहर में हम अगले दिन की जानिब बढ़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं, यानी रात के 2 बजे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा जो है वो वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जाता है, और जब हम प्रोग्राम ख़त्म कर रहे होते हैं ये करके बाहर निकलते हैं तो हल्की हल्की सी सफेदी जो है वो आसमान पे हमें दिखाई देना शुरू कर दे थोड़ी देर बाद, मतलब पूरा दिन गुजरा, पूरी रात गुजरी, और रात के ये खूबसूरत पल जो आपके और मेरे दरमियान मौजूद होते हैं इनको सेलिब्रेट करते, उनको मनाते हुए हम दूसरे दिन में दाखिल हो जाते हैं। कहिए कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अभी आरजे डॉक्स के साथ मैं मौजूद था, उनके प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं शामिल हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में। बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब शो उनका होता है, और सुनने बैठें तो आप जब तक ख़त्म नहीं होता आप कहीं नहीं जा सकते, ये एक मैग्नेट है, मकनातीसी कशिश है उनके शो में। तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में मधु किया, शामिल किया, कुछ हम थोड़ा बहुत हंसे भी, और कुछ कॉलर्स की कॉल्स भी मुझ तक पहुंची, क्योंकि उनकी आवाज़ क्लियर मुझ तक नहीं आ रही थी, मगर
बहुत अच्छा लगा आपका उस प्रोग्राम में भी शामिल होना, और मेरा भी, मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगा, अपने आप को बहुत अच्छा लगा कि मैं उनके प्रोग्राम में शामिल हुआ। बात करने का मतलब ये है कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ तकरीबन 1:15 से या 20 के करीब से लेके तकरीबन कंटिन्यू किया हमने प्रोग्राम को। एनीवेज, जिन लोगों ने अभी अभी सुनना शुरू किया उन्हें दिल की गहराइयों से कहूँगा वेलकम टू 101 FM पाकिस्तान एंड वेलकम टू गुंजा शौक। FM 101 के लाहौर स्टूडियो से ये इंटरनेशनल प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है, जो कि हमारे नेटवर्क पे ऊपर भी मौजूद है, और जहाँ जहाँ पे FM 101 के स्टेशन हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ वहाँ तक हमारी आवाज़ जो है उन इलाकों तक पहुँच रही है जिन शहरों में ये हमारे 101 FM के रेडियो स्टेशन मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान के, और जिन इंजीनियर्स ने हमारे प्रोग्राम को उठाए हुए हैं उनका बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ आप इसे लाइव स्ट्रीमिंग पे भी इंजॉय कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारा जो रेडियो पाकिस्तान का ऐप है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर, और रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स को आप जब चाहें इंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके साथ साथ आप रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट www.radio.gov.pk पे जाके भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर सकती हैं, और बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, और न्यूज़ के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप प्रोग्राम में शामिल कैसे होंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप फेसबुक पर आएंगे, फेसबुक का पता है www.facebook.com/FM101Lahore। इसके साथ साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, भेज दीजिए 4471 पे, यानी 4471 पे। टेलीफोन नंबर आपका जाना पे जाना 04211100101। आई रिपीट, अगर पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 मिलाइएगा, उसके बाद लाहौर का कोड मिलाइएगा 42, उसके बाद हमारा टेलीफोन नंबर 1111000101। और आपके फ़ोन्स कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स जैसे ही हम तक पहुंचते हैं तो यकीन मानिए प्रोग्राम की खूबसूरती बिल्कुल इस तरह बढ़ जाती है जिस तरह के एक गुलाब का फूल होता है ना, खुशबू से भरा हुआ देसी गुलाब का फूल, क्या बात है। उस फूल की जो महक है चारों ओर फैल जाती है, चारों तरफ फैली होती है। ज़रा जहन में लाइए कि फूलों का, गुलाब के फूलों का एक बगीचा है तो कितनी खुशबू वहाँ पे होती है। बिल्कुल आपके मैसेजेस इसी तरह से हैं, आपके कमेंट्स इसी तरह से प्रोग्राम को महका देते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके मैसेजेस सितारों की तरह जो आसमान पे फैले होते हैं, तो अपने कमेंट्स, अपने मैसेजेस ज़रूर भिजवाया कीजिए। क्योंकि रात के इस वक्त आपको ये कहना कि जनाब आप फेसबुक खोलें, ये करें वो करें, थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर फिर भी जो मोहब्बत करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो अपने होते हैं, वो अपनों के लिए कुछ ना कुछ तो कष्ट उठा ही लेते हैं ना। सुनते रहिए 101 FM पाकिस्तान, अपने मेज़बान वसीम अहमद के साथ। और सबसे पहली बात में ये कहूँगा कि जी ट्रेनिंग जो है कोर्स 101 FM के लाहौर स्टेशन पे आपके लिए जारी है, RG ट्रेनिंग्स इंटर्नशिप, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए उम्र जो है वो 18 से 28 साल तक है। और आप आके किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है, रेडियो पे जो ज़ुबान का उतार चढ़ाव है वो कैसे होना चाहिए, जो आपके जज्बात हैं उसकी अक्कासी कैसे हो सकती है अपनी आवाज़ के ज़रिए, किस तरह अपनी बात दूसरों तक ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचाई जा सकती है, कैसे बोला जाए, कैसे आवाज़ के अंदर वो सारी लौश भी आए, वो चमक भी आए, वो नरमाहट भी आए, वो नरमी भी आए, वो खूबसूरती भी आए, और किस तरह से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस ट्रेनिंग को हासिल करने के लिए आप रेडियो पाकिस्तान के लाहौर सेंटर पर तशरीफ़ लाएंगे, और जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं है। तो एज ग्रुप मैंने बताया कि 18 से 28 साल तक, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 16 जून। तो उसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए, सीखिए कैसे बोलना है, किसे बात कहनी है, किस तरह बात दूसरे के दिल तक पहुंचेगी, उसके कानों में से होती हुई कैसे होगा, ये सब कुछ, ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। लाइव स्टूडियो की ट्रेनिंग भी शामिल होगी उसमें, और हफ्ते में मेरा ख्याल नहीं कन्फर्म है कि 2 दिन आपको आना पड़ेगा।
सुनते रहिए 101 FM पाकिस्तान अपने आरजे वसीम अहमद के साथ। ओके जनाब, प्रोग्राम जो है वो बेस करता है पोइट्री के ऊपर, शायरी के ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शायरी सुनाई जाए और आपसे ज़्यादा से ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा शायरी सुनी भी जाए।

कहते हैं कि जो आपके रवैये होते हैं, जो आपके एटीट्यूड होता है, जो आपके रवैये होते हैं, जिस तरह से हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हमारे चेहरे के तासुरात जो हैं वो दूसरे तक पहुंचते हैं, हमारे अल्फाज बाद में पहुंचते हैं, हमारे तासुरात जो होते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है वो पहले दूसरा शख्स महसूस कर लेता है। हमारा जो रवैया होता है वो बता देता है कि हम क्या कहने वाले हैं। कुछ लोग बहुत ही कमाल के लोग होते हैं, वो अपने रवैये और अपनी लैंग्वेज को अलग अलग करने की महारत रखते हैं। दिल में कुछ, चेहरे पे कुछ, होंठों पे कुछ, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो इन चीज़ों को पहचान लेते हैं, क्योंकि वो आंखों में झांक के देखते हैं और आंखें जो बोलती हैं वो सच बोलती हैं। कहते हैं कि लोगों के जो रवैये होते हैं ना, या हमारे जो रवैये होते हैं वो दूसरे के दिल तक पहुंच जाते हैं, और वो जो दिल तक पहुंचते हैं रवैये, अगर वो अच्छे रवैये नहीं हैं, अच्छे तासुरात नहीं हैं, अच्छे अंदाज नहीं हैं, तो यकीन मानिए रवैयों की तकलीफ अगर दिल में उतर जाए तो बाद में अल्फाज जो होते हैं उसका मुदावा नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के रवैये से आपका दिल टूट गया, आपके दिल के अंदर दरार आ गई, आप उदास हो गए, आपके जज्बात को ठेस पहुंची, तो फिर बाद में वो जितने मर्जी मीठे अल्फाज बोले, मीठा रवैया दिखाए, वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ है, वो दिल से नहीं निकल सकती। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि या तो हम उस बंदे से मिले ही नहीं जिसके साथ हमारी बनती नहीं है, हम उसको मजबूरी में भी ना मिले, ताकि उसे हमारा जब रवैया नजर आएगा, जब हमारे चेहरे पे उसको उलझन नजर आएगी, तो डेफिनेटली उसके दिल तक वो पहुंचेगी। और अगर उसको पता ही नहीं है कि आपके दिल में उसके लिए क्या है, फिर आपके चेहरे से उसको ऐसे तासरात मिलेंगे, आपकी बातों से ऐसा महसूस होगा कि आप शायद उससे, आपका रवैया उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी बात से, किसी भी बात पे हो सकता है, तो फिर आप बाद में चाहे लाख मीठे मीठे लफ्ज बोले, मीठी मीठी बातें करें, वो तकलीफ खत्म नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से किसी बंदे के साथ गुस्से से बोल जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ओहो ये तो मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आप चाहे जितना मर्जी कर लें, मगर जो उसकी आंखों के अंदर जो पानी आ गया है, जो आंसू की नमी हमने देख ली है, वो किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं हो सकती। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो लोगों से उम्मीद करते हैं वैसा ही हम बन के दिखाएं। हर एक जख्म का चेहरा गुलाब जैसा है, हर एक जख्म का चेहरा गुलाब जैसा है, मगर ये जागता मंजर भी ख्वाब जैसा है। ये तल्ख तल्ख सा लहजा, ये तेज तेज सी बातें, ये तल्ख तल्ख सा लहजा, ये तेज तेज सी बातें, मिजाज यार का आलम शराब जैसा है, मेरा सुखन भी चमन दर चमन शफक की फवार, मेरा सुखन भी चमन दर चमन शफक की फवार, तेरा बदन भी महकते गुलाब जैसा है, मेरा सुखन भी चमंदर चमन शफक की फवार, तेरा बदन भी महकते गुलाब जैसा है, बड़ा तवील नहायत हसी बहुत मुफहम, मेरा सवाल तुम्हारे जवाब जैसा है। तू जिंदगी के हकायक की तह में यूं ना उतर, तू जिंदगी के हकायक की तह में यूं ना उतर, किस नदी का बहाव चनाब जैसा है, तेरी नजर ही नहीं हर्फ़ आशना वरना। काबिले गौर शेर है, तेरी नजर ही नहीं हर्फ़ आशना वरना,
हर एक चेहरा यहां पर किताब जैसा है। चमक उठे तो समंदर, बुझे तो रेत की लहर। मेरे ख्याल का दरिया शराब जैसा है। चमक उठे तो समंदर, बुझे तो रेत की लहर। मेरे ख्याल का दरिया शराब जैसा है। तेरे करीब भी रहकर ना पा सकूं तुझको। तेरे करीब भी रहकर ना पा सकूं तुझको। तेरे ख्याल का जलवा हबाब जैसा है। तेरे ख्याल का जलवा हबाब जैसा है। खूबसूरत कलाम आपने सुना मोहसिन नकवी का। और साहब आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कशन करेंगे, अभी तो हमने बात की थी कि जो रवैये होते हैं वो दिल में उतर जाते हैं, और हमारे जो रवैया अगर कोई ऐसा रवैया है कि जो किसी दूसरे के दिल को दुखा सकता है, तो फिर हम जितने मर्जी मीठे मीठे लफ्ज बोने बाद में, उस जो शीशे पे लाइन पड़ जाती है उसको मिटा नहीं सकता। और यही बात अगर रिश्तों में लेके जाएं तो हम पूछेंगे आपसे कि क्या रिश्तों में वजाहतों की जरूरत होती है? क्या कहते हैं आप? वजाहतें देनी चाहिए। मुझे आपसे मोहब्बत है, आपको मुझसे मोहब्बत है, बता दिया ना, कह दिया, अब नजर भी आ रही है, प्रैक्टिकल में भी दिखाई दे रही है, हमारी बातें, हमारा मेल जोल, हमारे एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना, सब कुछ बता रहे हैं। उसके बावजूद क्या वजाहत देने की जरूरत है? क्या ये कहना बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं और हमें एक दूसरे को चाहते रहना चाहिए? तुम इससे दूर क्यों जा रहे हो? तुम्हें मेरी बात को गौर से सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। क्या ये वजाहतें जरूरी हैं? क्या ये जरूरी है कि हम वजाहतें दें? मेरा ख्याल है कि मेरा जाती ख्याल है कि अगर आप एक दफा कह देते हैं तो वो दैट्स इनफ, वो काफी है। दूसरा शख्स खुद ब खुद महसूस करेगा आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को, आपके जज्बात को, जो आपके दिल में छिपी हुई बातें हैं उनको वो खुद ढूंढ निकाल लेगा, खुद पहचान लेगा, खुद देख पाएगा। मोरम एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। आज के प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, जो टॉपिक है, जो डिस्कशन हम करेंगे जिसके बारे में, वो ये है कि क्या रिश्तों में वजाहतों की जरूरत होती है।

जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। प्यार ने हम में कोई फर्क नहीं छोड़ा बाकी, प्यार ने हम में कोई फर्क नहीं छोड़ा बाकी। झील में अक्स तो मेरा हो नजर तू आए, झील में अक्स तो मेरा हो नजर तू आए। मशगला अब है मेरा चांद को तकते रहना, बड़े बड़े मशगले होते हैं जिंदगी में, मगर मोहब्बत के साथ जुड़े हुए जो मशगले होते हैं वो भी अजीब मशगले होते हैं। मशगला अब है मेरा चांद को तकते रहना, रात भर चैन न मुझको किसी पहलू आए। जब कभी गर्दिश दौरा ने सताया मुझको, जब कभी गर्दिश दौरा ने सताया मुझको, मेरी जानिब तेरे फैले हुए बाजू आए। जब भी सोचा कि शबे हिज्र ना होगी रोशन, जब भी सोचा कि शबे हिज्र ना होगी रोशन, मुझको समझाने तेरी याद के जुगनू आए। जब भी सोचा कि शबे हिज्र ना होगी रोशन, मुझको समझाने तेरी याद की जुगनू आए। कितना हसास मेरी आस का सन्नाटा है, कितना हसास मेरी आस का सन्नाटा है, कि खामोशी भी जहां बांध के घुंघरू आए। कितना हसास मेरी आस का सन्नाटा है, कि खामोशी भी जहां बांध के घुंघरू आए। मुझसे मिलने को सरे शाम कोई साया, मुझसे मिलने को सरे शाम कोई साया सा, मुझसे मिलने को सरे शाम कोई साया सा, तेरे आंगन से चले और लबे छू आए। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत शेर। मुझसे मिलने को सरे शाम कोई साया सा, तेरे आंगन से चले और लबे जू आए। उसके लहजे का असर तो है बड़ी बात कतील, उसके लहजे का असर तो है बड़ी बात कतील, वो तो आंखों से भी करता हुआ जादू आए। जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए।

वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, मेरे हर ख्वाब की ताबीर बने बैठे हैं। क्या रिश्तों में वजाहतों की जरूरत होती है? वक्त बताता चलूं कि जनाब 2:32 हो चुके। कुछ आपके फेसबुक पे देख लेते हैं, अगर कोई आपने तकलीफ की है थोड़ी सी पैगाम भेजने की तो ठीक है, अगर आपने नहीं की तो आपसे मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आएं और कम से कम एक आधा कमेंट तो ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारे सुनने वाले जो हैं वो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो जनाब आपकी बहुत मेहरबानी कि आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं और प्रोग्राम को लाइक किया है मलिक नासर ने, मलिक उस्मान मलिक ने। बहुत शुक्रिया जनाब मलिक साहब, हमारे प्रोग्राम में आए हैं दो मलिक और मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, ये भी हैं, तीन मलिक हो गए। सज्जाद अली लाडला भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं, इन्होंने प्रोग्राम को लाइक किया है। हमीद गुल साहब, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत शायर और खूबसूरत शायरी की महजबी, हमारी बहुत रेगुलर कॉलर लिसनर, कॉलर तो नहीं है लिसनर हैं, और कभी कभी इनकी कॉल भी आ जाती है मगर इनके मैसेजेस आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम की वैल्यू बढ़ा देती हैं। जुगनू जूनियर हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं और बहुत अच्छे कॉलर भी हैं, आपके कुछ पैगाम आते हैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। आप अगर पोइट्री भेजेंगे तो यकीन मानिए मुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत लुत्फ आएगा अगर आप पोइट्री भेजेंगे। हमीद गुल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, इनकी पोइट्री भी हम तक पहुँचने में कोशिश करता हूँ, अगर वो रीडेबल है यानी पढ़ी जा सकती है तो मैं उसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत बारीक है। चले मैं कोशिश करता हूँ इसको पढ़ने की। हमारी सोचें तुम्हारी सोचें, किसी सजा याफ्ता मुजरिम की तरह एक पांव पर खड़ी बेयकीनी की फिजाओं में गुम है। हमारी सोचें तुम्हारी सोचें, किसी सजा याफ्ता मुजरिम की तरह एक पांव पर खड़ी बेयकीनी की फिजाओं में गुम है। गम ही गम है, अजब सी खलबली मची है, वहम के सारे खाने पुर हैं, मुझे ये डर है कहीं ख्वाब गिर ना जाए, यूं ही बेमौत मर ना जाए। वाह, मुझे ये डर है कहीं ख्वाब गिर ना जाए, यूं ही बेमौत मर ना जाए, मगर मैं ये सब किससे कहूं और कैसे कहूं, मगर मैं ये सब किससे कहूं और कैसे कहूं, अब और क्या लिखूं। सच तो ये है हमारी सोचें तुम्हारी सोचें सजा की मुस्तक है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, खूबसूरत पोइट्री आपने इनायत की। और मलिक नासिर अस्सलाम वालेकुम, मलिक सज्जाद अली लाडला अस्सलाम वालेकुम, सात बिस्मिल्लाह जी आयानू वालेकुम, वेलकम टू द शो, उम्मीद करता हूँ सर आप ठीक ठाक होंगे, तमाम सुनते समातों को सलाम टू ऑल पाकिस्तान पंजाब एंड पाकिस्तान आर्मी। बहुत शुक्रिया सज्जाद अली लाडला, आप इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप हुआ करें, आप गायब होते हैं ना तो फिर मैं आपको मिस भी करता हूँ, ठीक है ना। अभी आरजे डॉक्स के प्रोग्राम में वो भी आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप हमारे भी लाडले बन चुके हैं ना। मलिक उस्मान मलिक कहते हैं सो गुड, बहुत शुक्रिया मलिक उस्मान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। महजबी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वसीम, वालेकुम अस्सलाम महजबी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, और आपकी पोइट्री भी हम तक पहुंची, कतीर शिवाई का कलाम आपने भेजा है, प्रोग्राम में शामिल करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पोइट्री। पता क्या है कि शायरी जो है वो एक ऐसी चीज़ है, वो ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है शायरी के अंदर कि हम बहुत सारी बातें हम डायरेक्ट कहना चाहते हैं मगर हम कह नहीं पाते, तो जब हम इन लफ्ज़ों को पकड़ते हैं, इनको पिरोते हैं, एक लड़ी बनाते हैं, एक हार बनाते हैं, तो उसके अंदर फिर वो सारी चीज़ें हम बहुत आसानी कह भी लेते हैं, अपने जज्बात का इजहार भी कर लेते हैं और मोहब्बत का इजहार भी कर लेते हैं, किसी के साथ जो हमारी चाहत है उसका इजहार भी कर लेते हैं। कोई हमें नहीं मिलता ना मिले मगर हम उसकी उम्मीद तो कर सकते हैं। वो मेरा हो न सका तो मैं बुरा क्यों मानूं, उसको हक है वो जिसे चाहे उसे प्यार करे, कल तलक मैंने सुने जिसके धड़कते नगमे,
और कोई भी तो इस दिल में समा सकता है। कल तलक मैंने सुने जिसके धड़कते नगमे, और कोई भी तो इस दिल में समा सकता है। एक मैं ही तो नहीं प्यार का हकदार, यहाँ वो किसी और को भी अपना बना सकता है। क्यों फकत मुझसे मोहब्बत का वो इकरार करे, प्यार कहते हैं जिसे वो है दिलों का सौदा, किसी धड़कन पे किसी दिल पे कोई कैद नहीं, हम सफर अपना बना ले वो जिसे भी चाहे, सोच आज़ाद है मंजिल पे कोई कैद नहीं, उसके रास्ते में खड़ी क्यों कोई दीवार गिरे, उसके रास्ते में खड़ी क्यों कोई दीवार करे, सिर्फ वो मुझको ही चाहे ये जरूरी तो नहीं, वाह, सिर्फ वो मुझको ही चाहे ये जरूरी तो नहीं, वो तो साए को भी सीने से लगा सकता है, एक मैं ही तो नहीं प्यार का हकदार, यहां वो किसी और को भी अपना बना सकता है, क्यों भला उससे कोई प्यार पे इसरार करे, दिल भी छलनी है मेरा और जिगर भी, लेकिन क्या करूं खुल के मैं आहें भी नहीं भर सकता, प्यार तो मैंने किया जुर्म तो सब मेरा है, प्यार तो मैंने किया जुर्म तो सब मेरा है, मैं किसी से कोई शिकवा भी नहीं कर सकता, उसकी मर्जी है वो जो चाहे, उसकी मर्जी है जो चाहे मेरा दिलदार करे। वाह क्या बात है, क्या बात है जनाब, आखिरी मिसरा कमाल का है, उसकी मर्जी है जो चाहे मेरा दिलदार करे, जो हमारा दिलदार है जो हमारे दिल में बसता है वो फिर जो चाहे वो करे, उसकी मर्जी है, हमने तो सरे तस्लीम खम करना है। ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया माजबीन, खूबसूरत कलेक्शन आपकी हम तक पहुंची। जुगनू जूनियर कहते हैं कि देख रहा हूँ टूटे कंगन, सोच रहा हूँ किसने तोड़े हैं, तोड़ दिए तो फेंके क्यों हैं, फेंक दिए तो अब रो रो हलकान हुआ है, ऐसा भी क्या नुकसान हुआ है, देख रहा हूँ उलझी माला, सोच रहा हूँ किसने छोड़ी, फूल तो ताज़ा है फिर डोरी किसने तोड़ी, फूल तो ताज़ा है फिर डोरी किसने तोड़ी, क्या फूलों से छलनी ये दामान हुआ है, ऐसा भी क्या नुकसान हुआ है, देख रहा हूँ सहमे सपने, सोच रहा हूँ किसका डर है, डर तो है पर डर का सेहरा किसके सर है, जो सपनों का बर्फा एक तूफान हुआ है, ऐसा भी क्या नुकसान हुआ है, देख रहा हूँ सूखे पत्ते, सोच रहा हूँ पतझड़ का दुख, एक शुबाही हिद्दत के मौसम का आखिर, और एक शबाबी हिद्दत के मौसम का आखिर, और बुढ़ापा जैसे विरदे जा हुआ है। बहुत शुक्रिया जुगनू जूनियर आपका। सज्जाद अली लाडला, वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू द शो, बहुत खूबसूरत सर, कमाल अंदाज बयान, अंदाज़ बयान, नाइस वॉइस, बहुत शुक्रिया सज्जाद अली लाडला। आज काफ़ी अरसे बाद आपको सुन रहा हूँ, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने भी आज आपकी आवाज़ में शायरी सुनी थी, ठीक है ना जुगनू जूनियर। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, सज्जाद अली लाडला जी, ठीक सर, सियालकोटी मुंडा वसीम अवान, माशाल्लाह इन्होंने कहा है तीन बार, मलिक नासिर दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। और इसके बाद जुगनू जूनियर के ढेर सारे फूल चाय और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने भेजा। मलिक वसीम अवान कहते हैं कि वसीम अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त प्रोग्राम करने का, मलिक वसीम अवान आपका प्रोग्राम सुनने के लिए जाग रहा है। सज्जाद अली लाडला, हमने मिट्टी से मोहब्बत का सिला मांगा था, हमको मिट्टी ने कई रंग के चेहरे बख्शे, ये भी उस शख्स की खुशबू का असर था शायद, जिसने कांटों को भी खिलने का है करीने बख्शे। मोहम्मद शहजाद हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद शहजाद आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आप भी कह रहे हैं कि मैं जी लाइव कॉल्स में आपको आपके पास पहुंचूंगा, ज़रूर पहुंचिएगा। मोहम्मद शहजाद आपका बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बख्शे मोहम्मद शहजाद हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद शहजाद आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आप भी कह रहे हैं कि मैं जी लाइव कॉल्स में आपको आपके पास पहुँचूँगा, ज़रूर पहुँचिएगा।

राह गुजर बाकी है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सज्जाद अली लाडा, आपकी बहुत सारी पोइट्री हम तक पहुंची है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए हैं। और ये गुलाबों का ढेर जुगनू जूनियर ने मुझे भेजा है, जुगनू जूनियर आपका बहुत शुक्रिया, सज्जाद अली लाडा आपका बहुत शुक्रिया, आपने कहा नहाय शानदार, आपके मैसेजेस का, आपकी बातों का बहुत शुक्रिया। मलिक वसीम ओवान, आप कह रहे हैं कि फरहान अली खान, फरहान खान अली रजा लियाकत अली उस्ताद लियाकत अली जाहिद हुसैन और रेडियो लिस्ट क्लब सियालकोट वाले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद, जनाब जाहिद हुसैन साहब इनके साथ हैं, उस्ताद लियाकत अली साहब सियालकोट से इनके साथ हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तमाम दोस्तों का, आपने अगर अभी तक हमें कोई कमेंट नहीं भेजा, कोई एसएमएस नहीं किया, तो प्लीज़ आप ज़रूर एसएमएस कीजिए। एसएमएस करने के लिए आप 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और उसे भेज दीजिए 4471 पे। आपके एसएमएस भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा और आपके कमेंट्स जो हैं फेसबुक पे उनको भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा। लाइव कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के करीब करीब, यानी अपने फ़ोन टेलीफोन सेट के करीब करीब हो जाइए, ताकि हम आपके जो कॉल्स हैं वो बआसानी प्रोग्राम में हम शामिल कर सकें। आपकी कॉल्स का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी मेहरबानियों का बहुत शुक्रिया। जाहिदा नवाज़, अस्सलाम वालेकुम कराची से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जाहिद नवाज़, वेलकम टू लाहौर एंड वेलकम टू 101 FM नेटवर्क। आप 101 FM के नेटवर्क पे हम आपको वेलकम कहते हैं, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, इंटरनेशनल शो कराची में भी सुना जा रहा है। कराची वालों को मेरा बहुत बहुत मोहब्बत भरा सलाम और जाहिद नवाज़ आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अगर आप हमें कोई शेर भी भेजती तो हम उसे भी प्रोग्राम में शामिल करते, अगर आप भेज सके तो ज़रूर भेजिएगा। आपके अशार का, आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया, अगर आप भेजेंगी तो उसका भी बहुत शुक्रिया। मलिक उस्मान, मलिक सो गुड, बहुत शुक्रिया। माजुमी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं उनको मैं पता बता दूँ, www.facebook.com/fm101 लाहौर।

पर्दे में हर आवाज के शामिल तो वही है, पर्दे में हर आवाज के शामिल तो वही है, हम लाख बदल जाए मगर दिल तो वही है। अरे साहब, ये दिल ही तो है, ये गोश का लोथड़ा नहीं है। इसके अंदर जज्बात हैं, इसके अंदर प्यार हैं, इसके अंदर उम्मीदें हैं, इसके अंदर ख्वाब हैं, इसके अंदर खुशबुएं हैं, इसके अंदर ऐसा साथ है, इसके अंदर धड़कन है। धड़कन में तुम हो, तुम मेरा दिल हो, मेरी जान हो, मेरी मोहब्बत हो। जिस दिल में मोहब्बत हो, उससे बड़ा दिल किसका हो सकता है, उससे खूबसूरत दिल किसका हो सकता है। और दिल में तो खुदा बसता है, रब बसता है। और अगर हमारे दिल में मोहब्बत है, प्यार है, तो ये खुदा ताला की ब्लेसिंग है, उसकी रहमत है। और हम किसी से अगर मोहब्बत करते हैं तो हमारी रूह उसकी रूह में मौजूद है, उसकी रूह हमारी रूह में मौजूद है, तभी तो हम मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो रूह का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता रूह का रिश्ता है। और अगर रूह का रिश्ता कायम है तो फिर चाहे कितनी ही दूरियां क्यों ना हो, आपको हासिल करने की जो सही है वो ख़त्म हो जाती है आपके दिल में, कि हम उसको पा सकें, उसको हासिल भी कर सकें। वो सेकेंडरी है, वो पहले नंबर पे नहीं आता, वो सानवी हैसियत रखता है। पहले नंबर पे तो वो मोहब्बत है, वो कहीं भी है, किसी भी जगह पे है, किसी की दस्तरस में है, कोई और उसका मालिक है, मगर फिर भी आपकी मोहब्बत वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, मौजूद है। आप उसको याद कर रहे हैं तो वो भी आपको याद करेगा। अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो कोई आपको याद कर रहा है। मोहब्बत मौजूद है, फील करके देखिए। एक खुशबू का हाला हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उसी मोहब्बत का जो हमारे दिल में मौजूद है। और दिल में कौन है? दिल में रब है, रब दिलों में बसता है। मोहब्बत एक

0: सच है, एक हकीकत है, फसाना नहीं है। आप जाहरी तौर पे दूर हैं, आप हासिल नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं है, छू नहीं सकते, मगर महसूस कर सकते हैं। और महसूसात जो होते हैं वो किसी इजहार के मोहताज नहीं होते, आप उसको महसूस कर सकते हैं। और जो मोहब्बत जैसा मुख्तसर सा छोटा सा लफ्ज़ है, ये इसको, ये अपने इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसको बयान नहीं कर सकता। आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस करते रहिए, मोहब्बतें निछावर करते रहिए, आपकी मोहब्बत, आपकी आवाज़ उस दिल तक, उस दिमाग तक पहुंच रही है, उस रूह तक पहुंच रही है। पर्दे में हर आवाज़ के शामिल तो वही है, हम लाख बदल जाएं मगर दिल तो वही है। मौजूए सुगन है वही अफसाना ए शीरी, महफिल हो कोई रौनक के महफिल तो वही है। महसूस जो होता है दिखाई नहीं देता, दिल और नजर में हद फाजिल फासिल तो वही है। महसूस जो होता है दिखाई नहीं देता, दिल और नजर में हद फासिल तो वही है। हर चंद तेरे लुत्फ से महरूम नहीं हम, हर चंद के तेरे लुत्फ से महरूम नहीं हम, लेकिन दिल बेताब की मुश्किल तो वही है। गर्दाब से निकले भी तो जाएंगे कहाँ हम, डूबी थी जहाँ नाव ये साहिल तो वही है। लुट जाते हैं दिन को भी जहाँ काफले वाले, होशियार मुसाफिर के ये मंजिल तो वही है। वो रंग, वो आवाज, वो सच और वो सूरत, वो रंग, वो आवाज, वो सच और वो सूरत, सच कहते हो तुम प्यार के काबिल तो वही है। सद शुक्र के इस हाल में जीते तो है नासिर, काबिल गौर शेर है, काबिल गौर शेर है, काबिल गौर शेर है। जो भी बात कर रहे थे वो बात लफ्जों में से होती हुई शेर तक पहुंच गई। सद शुक्र के इस हाल में जीते तो है नासिर, हासिल ना सही काविशे हासिल तो वही है। पर्दे में हर आवाज के शामिल तो वही है, हम लाख बदल जाएं मगर दिल तो वही है। हम लाख बदल जाएं मगर दिल तो वही है। पहले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। रिमशा
1: जी, माशाल्लाह,
0: क्या हाल है आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी दुआ से जो आप मेरे लिए नहीं करते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआ से जो आप मेरे लिए नहीं करते हो।
0: नहीं नहीं, मैं कहता हूँ, मैं हमेशा अपने सारे सर्रे सुनने वालों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे।
1: नहीं, वैसे बस मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है आप करते हैं। और आप बताएं, आप ठीक हैं?
0: नहीं, आपको कैसे पता है? मैं कोई दम भी करता हूँ। आपको मुझसे दम करवाने आई थी?
1: नहीं नहीं, मुझे पता है, क्योंकि जब आज के लिए हम लोग दुआ करते हैं तो आज ही तो अपने जो है सुनने वालों के लिए दुआ करते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है, वो आमतौर पे फिल्मों में दिखाते थे कॉमेडी सीनों के, दम करोगे तो इसको भस्म करके रख दूंगा मैं।
1: बिल्कुल ऐसा ही है।
0: और क्या कहेंगी आप?
1: आप बताएं पहले, आपकी तबीयत अभी भी मुझे लगते डोन है, आपकी खांसी।
0: मेरी तबीयत इतना अच्छा तो मैं बोल रहा हूँ, इतना फ्रेश बोल रहा हूँ, तुसी की चांदे जे, मैं की पलवान बन जावा, की करा मैं?
1: नहीं, तुसी आज ठंडे पानी पींदे पे हो।
0: ठंडा पानी तो मैं खूब पीता हूँ, मैं बर्फ अलग रख लेता हूँ साथ।
1: नहीं, लेकिन
0: खाने के साथ ना, मैं खाने के साथ, अगर घर वाले मुझे ये देखे ना, खंगो हो गया। घर वाले अगर मुझे कभी डिनर में ना, मुझे गर्मी ज्यादा लग रही हो ना, तो मुझे वो ठंडा दूध दे देते हैं, तो मैं कहता हूँ इसके साथ बर्फ भी रख दो थोड़ी सी, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें बर्फ डालता रहता हूँ।
1: लेकिन उसके साथ
0: फिर उसके बाद पता क्या होता है कि आप लोग डिस्टर्ब होते हैं कि मेरा गला खराब है इस बंदे का, है ना?
1: नहीं नहीं, अगर आपकी आवाज खराब भी हो ना, फिर भी हमें सुन के जो है ना बड़ा सुकून मिलता है।
0: चलो, बहुत शुक्रिया रिमशा जीती रहे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत मेहरबानी। क्या कहेंगी, क्या रिश्तों में वजाहतों की जरूरत है?
1: वजाहतों की जरूरत है, क्यों नहीं है? लेकिन भाई, मैंने ना, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि अभी आपने जब टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, कि बार दफा हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो अगले बंदे की दिल आजारी कर देते हैं, और वो बात पकड़ भी लेते हैं,
0: या हमारा रवैया ऐसा होता है।
1: बिल्कुल नहीं, रवैया नहीं होता, बस दफा हम कुछ कहना नहीं चाह रहे होते, बस दफा अल्फाज जो है ना हमारे मुंह से अचानक से निकल जाते हैं जो अगले बंदे के दिल में जो लगते हैं जाकर, लेकिन हम उससे जितनी मर्जी माफी मांग लेंगे जी हमें माफ कर दो हमसे गलती हो गई, लेकिन वो जो है ना वो बात जो है ना उसके दिल में जो है ना तड़ाड़ कर देती है बात, वो पकड़ लेता है, लेकिन हम जैसे उसको मुस्कुरा चाहे जितना मर्जी हम उसको हंसा ले, वो ऊपर से तो मुस्कुरा लेगा लेकिन वो बात कभी नहीं भूलेगा।
0: हाँ ये ये ये ये ये बात तो है, ऐसा तो है, कैसे क्या करें, क्या करें
1: इस हालत में, क्या करना चाहिए? अगर आप एक बार वजाहत करें कि जी मुझे माफ कर दें मुझसे गलती हो गई है, अगर वो मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो फिर उसे इसके उनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका क्या आपको अल्लाह तो जानता है ना आपके दिल में क्या है।
0: अच्छा बिल्कुल ठीक, मैं डर गया, मैं डर गया मैं क्या कहीं आप कहने लगी कि अगर गलती हो गई तो फिर एक गलती और कर देती है, एक बारी और दिल दुखाओ
1: लेकिन भाई ऐसा भी होता है ना, रिश्तेदार जो होते हैं ना, अगर रिश्तेदारों के सामने अगर ये बात अगर गलती से जो मुंह से निकल जाती है ना तो उस बात का इतना बड़ा कबाड़ा बना देते हैं, पतंगर बना देते हैं, पहलती पहलती कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, चाहे वो छोटी सी क्यों।
0: खैर ये तो होगी ना कि हमारे मुंह से हमारा रवैया ऐसा था, वो तो बात एक अलग है, मगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि रिश्तों में वजाहतों की जरूरत है, क्या जरूरी है कि हम बताएं कि जी हमें हमें आपसे मोहब्बत है या हमें आपसे नफरत है, या हम आपको बहुत चाहते हैं या हम आपको कम चाहते हैं, या आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे तो तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, तो ये जरूरी है बातें बताना, ये तो अंडरस्टैंड नहीं है कि
1: बिल्कुल बिल्कुल वजाहत करना जरूरी होता है,
0: जरूरी
1: लेकिन होता। कहते हैं कि बादशाह लोग कहते हैं कि वजाहत करने से ना फिर उसे मौका मिल जाता है कि जी ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, उसे रच के तंग करना उनमें,
0: ये भी हो
1: सकता है, लेकिन ना आप कहते हैं कि बादशाह ना वजाहत करनी नहीं चाहिए, बादशाह ना दिल में ही रखनी चाहिए कि अगले को फिर मौका नहीं देना चाहिए कि वो आपको फिर रोल के चला जाए, बस फिर छोड़ के चला जाए, फिर आप बाद में रोते रहे। आप उसको बताएं जो आपके अल्फाजों की कदर कर सकता है, जो अल्फाज को सुने और कहे कि हाँ वाकई में यार ये बात है, और उसके दिल में भी आपके लिए वही अल्फाज हो, उसको ना कहो कि जो आपके अल्फाज को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: और जाते जाते मैं रिवाज गार्डन से जो अंकल आते हैं उनको भी मेरा सलाम, हमीद गुल भाई को भी, अनिल आप अगर आएंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा कि वो तो फिर है ना पट्टे चुक देंगे और हम ना आती है उनकी सालगिरह, उनको हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी तरफ से अगर वो सुन रही हो तो, और सभी सुनने वालों को मेरा सलाम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया रिमशा, थैंक यू।

मैंने दिल से कहा हम झील गए हिजर का दिन, मैंने दिल से कहा हम झील गए हिजर का दिन, दिल ने चुपके से कहा शाम जरा होने दो। 1111-1001 is our number to dial. This is your RJ Waseem Ahmed, and you are enjoying 101 FM. The program is Gunchai Shock.

0: एक छोटी बहर की गजल आपके पेश खिदमत है, जफर मंसूर का कलाम है, दुख सुख अपना तन्हा तन्हा, दुख सुख अपना तन्हा तन्हा, हंसना रोना तन्हा तन्हा, दुख सुख अपना तन्हा तन्हा, हंसना रोना तन्हा तन्हा, आहट है ना साया कोई, लंबा रास्ता तन्हा तन्हा, खिड़की में एक याद का दीपक जलता बुझता तन्हा तन्हा, खिड़की में एक याद का दीपक जलता बुझता तन्हा तन्हा, बरसों बाद उसे देखा है, बरसों बाद उसे देखा है, उजड़ा उजड़ा तन्हा तन्हा, पतझड़ है या हिजर का मौसम, पतझड़ है या हिजर का मौसम, पत्ता पत्ता तन्हा तन्हा, शहर में फिरता है एक शायर दीवाना सा तन्हा तन्हा, हम मंसूर नहीं होंगे तो ये जग होगा तन्हा तन्हा, दुख सुख अपना तन्हा तन्हा, हंसना रोना तन्हा तन्हा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, की हाल है? ठीक हो
0: जी? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। कौन?
1: बोधी
0: जट। क्या बात है बोधी जट, आपकी ना पहले भी कॉल आई थी, हम सॉरी मेरे सामने लिखा हुआ पड़ा है मगर मैं भूल गया, आपने नीला जी को और सज्जाद लाडला को सलाम भेजा था और उसी तरह से अनीला जी की कॉल भी हम तक आई थी, तो अनीला जी का भी बहुत शुक्रिया। बोधी जट कहिए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
1: जबरदस्त सर, जबरदस्त माशाल्लाह, थोड़ा प्रोग्राम सर सुन रहे हैं, क्या बात है, ऐसी फिट फाट
0: जबरदस्त।
1: टॉपिक दी गल करिए, रिश्ते दी पहचान सर चेहरा तो खुली किताब है। इंसान दी गल्लां तो आदतां तो इंसान नूं पता लग जांदा, जिन्हूं नहीं पता लगदा वो शायद ने कहा ना कि घर से निकला था वफा बाजार से वफा खरीदने, वफा तो ना मिली बाजार से कुत्ता खरीद लाए। सर गल करन दा मकसद ये, रिश्तेदार उन्हें अपने ही गिराते हैं नशे मन ते बिजलियां।
0: मतलब ये है कि अगर अगर अगर कोई मतलब अगर नाराजगी हो जाती है तो वो टेम्परेरी हो सकती है, आरजी हो सकती है, अगर जो हमारी आपकी मोहब्बत है वो उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि यार मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम मेरे भाई हो, ठीक है ना, तुम मेरी बहन हो, तो अगर थोड़ी सी नाराजगी होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोहब्बत नहीं है, वजाहत की जरूरत नहीं है, उसे खुद ब खुद सोचना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, है ना।
1: हाँ जी सर, ये सर वेखो ना, ये आपो अपनी जरा जेल से या इंसान दे खुद से डिपेंड करता है। वेखो ना सर कि किसी ना अगर तुसी मोहब्बत बेलौस कर दे जे, तो उन्हें सज्जन उस रंग से छोड़ो, जे किरे मिले तो फिर भी हस के बोल पवे, ठीक है ना, तो हसल नहीं रखनी चाहिए इंसान को सर, बिल्कुल तुसी है बजा और बड़ी जबरदस्त गल की है, क्या बात है सर,
0: बहुत शुक्रिया बोधी जट, क्या बात है। बिल
1: मोहब्बत सर 48 ਜਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ।
0: ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੋਧੀ ਜੀ, ਜੀਤੇ ਰਹੇ ਜੀਤੇ ਰਹੇ।
1: ਤਮਾਮ ਸੁਣਨਾ ਦਾ ਸਰ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਨੀਲਾ ਪੀ ਯਰੀਆਂਗੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਾਣਗੇ
0: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ
1: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ। ਸਾਜਦਾ ਪੀ ਨੂੰ ਸਰ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਲਾਡਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਨ ਕਾਲ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਓਕੇ
1: ਸਰ, ਜੱਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤੇ
0: जिंदाबाद। ओके जी, बोधी जट हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मस्जिबी कहती है कि वसीम आपका बहुत शुक्रिया, इतनी इज्जत इतनी मोहब्बत से आप नाम लेते हैं और कलाम शामिल करते हैं, जीते रहे आमीन, बहुत शुक्रिया। मस्जिबी आप जीती रहिए, आप खुश रहिए और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती रहिए करती रहें। और कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी नहीं ना होता, मतलब मैसेज स्लो हो जाते हैं कई दफ़ा, तो आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो पोइट्री है, वो प्रोग्राम में खूबसूरत रंग जमा देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने कहा कि उससे कहो कि वो आने का तो इरादा करे, उससे कहो कि मोहब्बत में दिल कुशादा करे, नवाजशात के आदि नहीं रहे अब हम, उसे कहो कि हमें गम अता ज़्यादा करे। रखा हुआ है यहाँ एक दिल बराए फरोख्त, रखा हुआ है यहाँ एक दिल बराए फरोख्त, उसे कहो के रखा हुआ है यहाँ एक दिल बराए फरोख्त, उसे कहो कि वो चाहे तो इस्तफादा करे। ब्यूटीफुल। पहन के फिरता है हर शख्स नफरतों का लिबास, उसे कहो कि मोहब्बत को वो लिबादा करे। मुझे ये डर है कहीं आस ही ना मर जाए, उसे कहो कि कोई झूठ मूठ वादा करे। वाह, बहुत शुक्रिया आपका महजबीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हेलो,
2: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमीद गुल साहब, वेलकम।
2: क्या हाल है सर आपके? ठीक हैं
0: जी? जी शुक्रिया अल्लाह का, ठीक है। आप सुनाए, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है जहाँ रिश्ते कमजोर होते हैं
0: जी,
2: वहाँ वजाहत की जरूरत पड़ती है।
0: अच्छा, उससे कम मजबूत हो जाते हैं?
2: नहीं, जहाँ रिश्ते वजाहत रिश्तों में नहीं होती है सर, मेरे नज़दीक नहीं होती।
0: नहीं होती,
2: नहीं होती है सिंपल। अगर आप
0: मतलब कमजोर हैं ना, बिल्कुल सही है। मतलब अगर हम वो रिश्ता ही क्या जिसमें हम हर वक्त वजाहतें पेश करते रहे, है ना?
2: नहीं, वजाहत नहीं होती है मेरे नजदीक। यानी मैंने उसको पलट के इसलिए जवाब दिया कि जहाँ कमजोर होते हैं वहाँ जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि रिश्ता वही होता है जो कमजोर नहीं होता
0: है। सही है, सही है, सही है।
2: रिश्ते कमजोर नहीं होते हैं।
0: मतलब वजाहत देने की जरूरत पेश ही नहीं आनी चाहिए, आती ही नहीं है, क्योंकि रिश्ता अपनी जगह पे मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है।
2: वो कर रहा होता है सर,
0: सही बात।
2: वो एक अलग टॉपिक में चले जाएंगे, कुछ बेहिसी और कोई आदमी का वो रवैये पे जिस पे आप बात कर रहे हैं ना, वो फिर वो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ऐन मुमकिन है कि ये हूर तलक जाएगी। मैं आपको अब्बास साबिश साहब की एक कथा और एक गजल सुनाते हैं आप।
0: जी जरूर इरशाद।
2: अब्बास साबिश का एक कथा है कि जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं,
0: वाह,
2: जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: और शेर समाप्त कीजिए कि मैं इसलिए भी परिंदों से दूर भागता हूँ, मैं इसलिए भी परिंदों से दूर भागता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगते।
0: ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं।
2: हाँ, नासिर मुजीद साहब की गजल है
0: जी।
2: देखिए, पता नहीं मैं बारह कहते हैं कि बदगुमा है तो वजाहत नहीं देनी मैंने। अब इत्तफाक के देखें ये।
0: वाह क्या बात।
2: बदगुमा है तो वजाहत नहीं देनी मैंने, जान देनी है अजियत नहीं देनी मैंने।
0: ब्यूटीफुल।
2: और ये रही आंख ये दिल, देख तेरा मस्कन है। ये रही आंख ये दिल, देख तेरा मस्कन है, अब कोई और शहादत नहीं देनी मैंने।
0: बहुत अच्छी।
2: और मैंने दिल एक तरफ जान रख दी।
0: बहुत अच्छी।
2: आपके सवाल का मुकम्मल जवाब है कि मैंने दिल एक तरफ जान रख दी, उसको डर था कोई कीमत नहीं देनी मैंने। और आज उदासी है मेरे दिल में उतर आंख में जांख।
0: बहुत अच्छा।
2: आज उदासी है मेरे दिल में उतर आंख में जांख, कल तुझे इसकी इजाजत नहीं देनी मैं।
0: बहुत अच्छे।
2: कल तुझे इसकी इजाजत नहीं देनी मैंने और चश्मे गिरिया गमे दुनिया में लगा रखी है।
0: वाह,
2: चश्मे गिरिया
0: गमे दुनिया में लगा रखी है,
2: तेरे गम को ये सहूलत नहीं दे रही मैं।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
2: और शेर आपके सामने रख रहा हूँ कि बाप का विरसा जरो मालो जमी ले लो, बाप का विरसा जरो मालो जमी ले लो, माँ का विरसा है मोहब्बत नहीं देनी मैंने।
0: ओ हो हो हो हो, क्या बात है, क्या बात है।
2: बाप का विरसा जरो मालो जमी ले लो, माँ का विरसा है मोहब्बत नहीं देनी मैंने। और इस गजल का आखिरी शेर था कि मैं जरूरत के लिए गैर का मोहताज रहा, मैं जरूरत के लिए गैर का मोहताज रहा, अपने बच्चों को ये आदत नहीं देनी।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया।
2: सर बड़ी मेहरबानी आपकी,
0: बहुत शुक्रिया अमित गुल साहब, आप आते हैं यकीन मानिए मान बढ़ जाता है, प्रोग्राम खूबसूरत हो जाता है। थैंक यू वेरी मच,
2: आपके आने से भी
0: बहुत
2: ऐसे ही माहौल बन जाता है।
0: जीते रहिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, सज्जाद अली कहते हैं कि मैं खुद भी आपको मिस किया, बस नींद आ जाती थी, सो जाता था, इसलिए शामिल नहीं हो पाया। मैं भी कोशिश करूंगा कि नींद को आज की तरह भगा दूं। भगा दिया करूंगा। बहुत शुक्रिया जनाब, सज्जाद अली लाला कहते हैं कि बिल्कुल सर, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया कि आप हमें मिस करते हैं और अपना लाडला भी समझते हैं। आपकी इतनी रिस्पेक्ट और मोहब्बत, एक शुक्रिया, सलामत रहें आप। बहुत शुक्रिया जनाब सज्जाद अली लाडला, आप क्या तमाम लिसनर्स जो हैं वो यकीन मानिए हमारे दिल में समाए रहते हैं, बहुत शुक्रिया। जाइना नवाज़ कहती हैं कि दिल मजबूर हो रहा है तुमसे बात करने को, दिल मजबूर हो रहा है तुमसे बात करने को, मस्जिद ये है कि गुफ्तगू का आगाज तुम करो। वाह, प्रवीण शाकिर का शेर इन्होंने भेजा है कि दिल मजबूर हो रहा है तुमसे बात करने को, बस जिद ये है कि गुफ्तगू का आगाज तुम करो। और दूसरा शेर है जो वसी शाह लिखते हैं, ये तुम्हारा वहम है कि आगाज गुफ्तगू हम करें, ये तुम्हारा वहम है कि आगाज गुफ्तगू हम करें, हम जो खुद से रूठ जाएं तो सदियों खामोश रहते हैं। जाहिद नवाज़ आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत दो शेर भेजे हैं, क्या बात है जनाब। एक शेर में सवाल है, एक शेर में जवाब है, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से जनाब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जुगनू जूनियर और भी हमारे लिस्टर्स जो हैं, वो हम उन्हें कहेंगे कि आप भी फेसबुक पे आ जाइए या एसएमएस कीजिए ताकि आपके जो हैं कमेंट्स, आपके जो पैगामात हैं उन्हें हम प्रोग्राम में शामिल करें, आपकी पोइट्री को प्रोग्राम में शामिल करें तो प्रोग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। सिर्फ हम ही नहीं सुनाएं बल्कि आप भी सुनाएं। जुगनू जूनियर ने कहा कि वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोल पता ठीक सी लोग बदल गए, बोला पता ठीक सी, बोलिया पता ठीक सी लोग ही बदल गए ने। ओके, बहुत शुक्रिया जनाब, ऐसे ही होता है, पता तो ठीक था मगर लोग बदल जाते हैं। लोगों के बदलने की क्या बात है जनाब, लोग तो बदल ही जाते हैं, क्या ख्याल है। वो लोग भी बदल जाते हैं जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमसे बदल जाते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं कि देखते हैं कि लाइन पे कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम अलीला जी, वेलकम, कहिए कैसी हैं?
3: थैंक यू, वेलकम आपको। उस दिन बड़ा मजा आया, आपने मुझे इतना अच्छा विश किया ना बर्थडे, थैंक यू।
0: बहुत शुक्रिया। आपने केक शेक कोई नहीं खुआया ना, तुसे कोई केक खुआया ना, गल ना बात।
3: बस यही तो मसला, मैं जरा दूर थी ना। अभी कितने सारे कॉल मैंने जो स्टूडियो की तरफ करने भेजने वो रह गए हुए हैं।
0: सही है, सही।
3: सॉरी, क्योंकि थोड़ी मेरी मसरूफियत जरा कुछ बढ़ गई बीच तो इस वजह से।
0: चले चले कोई बात
3: नहीं, इंशाल्लाह।
0: नहीं नहीं, हमने आपसे वैसे कहा है, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी सालगिरह आ गई, हम खुश हो गए, हमारे लिए बड़ी मुबारक इवेंट है, ऐसा ही है।
3: आपकी दुआएं बहुत शुक्रिया, लेकिन नहीं, मुझे ये फील हो रहा था मुझे केक भेजना है।
0: बहुत शुक्रिया जी।
3: और जबरदस्त गुफ्तगू चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। अभी डॉग्स भी आज बड़ा जबरदस्त किस्म का शो करके गए, और इतनी देर तक करके गए। वैसे आपके साथ अच्छी रौनक लगनी थी, बैठ जाते ना, मजा आ रहा था।
0: वो एंड था तकरीबन उनके शो का ना।
3: हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा था और अच्छी रौनक थी। और टॉपिक जो आपने रखा कि वजाहतें
0: जी रिश्तों में,
3: पहले तो मैं कहूंगी कि कभी कभी ऐसा मौका बन जाता है कि वजाहत करनी पड़ती है। क्योंकि ईमानदारी के साथ एक चीज क्लियर करना अच्छा होता है।
0: सही है।
3: और रिश्तों को करीब करने के लिए, क्योंकि बाज़ दफा गलत फहमियां पैदा हो जाती है ना, और वो गलत फहमियां किसी सूरत में हल नहीं हो रही होती, तो फिर उस वक्त वजाहत जरूरी हो जाती है।
0: मतलब मेरा तो ख्याल है कि वजाहत, अगर आपके रिश्ता मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको भी और उस आपके पार्टनर को भी, यानी जो भी बंदा है, बहन है, भाई है, या हस्बैंड है, या वाइफ है, कोई भी है, तो अगर उनको भी, उनका भी मजबूत है, आपका भी मजबूत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वजाहतों की जरूरत रह जाती है कहीं पे। फिर वो खुद अंडरस्टैंड कर जाता है बंदा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता है ना।
3: वो ऐसी सूरत में, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि हस्बैंड और वाइफ, वो एक और बात है, लेकिन वहां पे भी बार दफा गलत फहमी आ जाती है। जैसे कि कोई रिश्तेदार कह देता है कि भाई तुम्हारी बीवी ने ऐसे कहा और ऐसे किया, ठीक है, मियाँ को पता है वो नहीं ऐसा कर सकती, चलो वो मान लेते, लेकिन बार दफा मियाँ भी तो कानों के कच्चे होते हैं ना बार दफा। ओके अच्छा, मेरी
0: खबर
3: वहां वजाहत तो फिर देनी पड़ेगी ना।
0: सही है,
3: देखे ना, जरूरी है। फिर इसी तरह कुछ ऐसे ताल्लुक रिश्तेदारियां होती हैं, जैसे कुछ कजन हैं आपस में, कोई एक कजन दूसरे कजन को कुछ का कुछ कह के उसके खिलाफ भड़का देता तीसरे के लिए, तो वो जो तीसरा है, या तो वो यही है कि वो कुछ अर्सा खामोशी इख्तियार कर लेता कि ठीक है कहने दो, तो कह रहे हैं वक्त आएगा फिर बात होगी, और फिर जब वक्त आता है तो फिर वजाहत खुद ब खुद हो जाती है।
0: सही है।
3: ऐसा मौका भी है, कई जगहों पे हमें वजाहत करनी पड़ती है, और कई जगहों पे हमें खामोशी इख्तियार कर लेना बेहतर होता है,
0: खुद ब खुद पता चल जाता है।
3: हाँ, लेकिन आजकल जो दौर जा रहा है ना वसीम भाई, कन्ना दे कच्चे आ रहा, उसमें तो वजाहत करनी बन जाती है,
0: वो औरतें लड़ पड़ती है कि तेरा खौन तो है ही कन्ना दा कच्चा है।
3: वो तीन दिन वो क्या थे, वो जब वो लगाते होते थे पंजाबी गाना, पता नहीं की गवांड ना होवे इस तरह,
0: चंद्रा गवांड ना होवे, लगदाई ना होवे कार वाला,
3: नहीं लगना होवे कार वाला, और बीवी जो मर्जी कहंदी रहे इधरों उधरों, किसी माँ ने या बहन ने या किसी रिश्तेदार ने कान को डाल पा रही निकला है, अच्छा ठीक है फिर।
0: लाइन लगनी होना चाहिए, पता ये टॉपिक रखे, ये टॉपिक रखे।
3: हाँ जरूर जरूर जरूर। और अभी सब जो आ रहे थे सब बहुत अच्छा लगा, और हम ना आती हैं उनकी बर्थडे थी, उनको हैप्पी बर्थडे, और दूसरी बात है कि रिमशा थैंक यू, रिमशा भी याद रखती है, और मेरे जितने भाई आते हैं, जितनी बहनें हैं, तारिक भाई पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं।
0: नहीं, वो पिछले प्रोग्राम में आए थे ईद वाले शो,
3: मैंने छोटी सी कॉल सुनी थी उनकी, और एक हमारा जो जुगनू है ना, जुगनू मेरा वीर इधर तो टिमटिमाना कट कर, तेरे बल्ब फ्यूज हो गए ना, कॉल भी कर लिया कर वीर, मैसेज भेज दे शायरी पटक करके सुट दे, मुझे लगता है जैसे ये खुद नहीं कोई और ही भेज देता शायरी इसकी कॉल। और जुगनू भाई कॉल किया करो, अच्छा लगता है। और नादरा भी हमारी गायब है, ये जितने गायब है ना सारे शराफत से आ जाए, महबूब अली भी और बाकी भी जो हमारे भाई हैं,
0: नहीं तो पंजाबी प्रोग्राम में हम डांसा निकाल लेंगे
3: है ना, पंजाबी प्रोग्राम साड़ियां बड़का दे
0: मेरे को, फिर गंडासा निकाल लेंगे। बहुत शुक्रिया नीला जी, कुछ है कुछ सुनाएंगे?
3: जी जी जरूर जरूर जरूर। हमीद गुल साहब बड़ा अच्छा पढ़ के गए भी, वो एक शायरी उन्होंने पढ़ी थी, तो आज मैं ट्राई करती हूँ, वो कहते थे कि कोई आए और पढ़े, मैंने कुटना पवे, तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ अच्छी पढ़ लूं। तुम नजर से नजर मिलाते तो, तुम नजर से नजर मिलाते तो, हंसते ना सही मुस्कुराते तो, चांदनी रात सिसकियां भरती,
0: वाह
3: चांदनी रात सिसकियां भरती, तुम जरा अपनी छत पे आते तो।
0: वाह वाह,
3: इख्तलाफात तो होते रहते हैं, इख्तलाफात तो होते रहते हैं, आना जाना था आते जाते तो।
0: वाह,
3: दोस्ती में अना नहीं चलती।
0: आहा,
3: दोस्ती में अना नहीं चलती, खुद ना आते कभी बुलाते तो।
0: वाह,
3: खुद ना आते
0: कभी बुलाते तो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
3: अगली लाइन थी, चल आ भी जाओ कि हम बुलाते
0: हैं,
3: आ भी जाओ कि हम बुलाते हैं, तुम बुलाते जो हम ना आते तो।
0: वाह वाह, क्या बात है।
3: माना कि तुमने बहुत कमाया है, माना कि तुमने बहुत कमाया है, लेकिन इसमें से कुछ बचाते तो।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: अब तो उम्मीद ही बताएंगे मैंने क्या किया।
0: बहुत शुक्रिया नीला जी, थैंक यू वेरी मच।
3: मेरे बहन भाई आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, उन सबके लिए बहुत सी दुआएं। और वसीम भाई जिंदाबाद,
0: बहुत शुक्रिया जी,
3: थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़।

0: दिन छिप गया सूरज का कहीं नाम नहीं, दिन छुप गया सूरज का कहीं नाम नहीं, ओ वादा शिकन अब भी तेरी शाम नहीं। ये जलवा गाह है खास है कुछ आम नहीं है, कमजोर निगाहों का यहां काम नहीं। क्यों कर कहूं साकी का करम आम नहीं है, अपने ही मुकद्दर में कहीं जाम नहीं है। अपना ही लहू देके गुलिस्तां को निखारा, अपना ही लहू देके गुलिस्तां को निखारा, अपना ही गुलिस्तां में कहीं नाम नहीं है। बीमार का दम टूट चुका अब उठ चुकी मैयत, अब आपके जाने का वहां काम नहीं है। दीवाने सब उसके हैं मगर फर्क है इतना, दीवाने सब उसके हैं मगर फर्क है इतना, बदनाम है कोई कोई बदनाम नहीं है। क्यों आज से मशर में छुपे देख रहे हो, कह तो दिया तुम पे कोई इल्जाम नहीं है। क्यों आज से मशर में छुपे देख रहे हो, कह तो दिया तुम पे कोई इल्जाम नहीं है। ये गर्दिश अफलाक सलामत है तो तुमसे, ये गर्दिश अफलाक सलामत है तो तुमसे, गिनवाओ न तारे तो कमर नाम नहीं है, तो कमर नाम नहीं है। मुरमुर एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कि लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्र अल्लाह का, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे।
1: परवेज अख्तर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: जी परवेज अख्तर कैसे हैं? आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है।
1: अभी आ रही है?
0: अब आ रही है। फिर गायब हो गई।
1: तो मैं आज एक अपने दिल की बात करना चाहता
0: हूँ।
1: आपकी इजाजत है तो?
0: आपकी आवाज ऊपर नीचे हो रही है, मैं क्या करूं?
1: पता नहीं सर, मसला है सर। अभी आवाज आ रही है?
0: हाँ अब आ रही है।
1: मैंने बोला मैं आज आपके आपके साथ अपने दिल की बात करूंगा।
0: जी कहिए।
1: सर 3 साल से नाइट ड्यूटी होती है रात की, जिस जगह अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी करता हूँ वहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी है, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद भी रोजाना अदा करता हूँ, कुरान पाक की तिलावत। तो यकम तारीख को मेरे बेटे की फ्लाइट थी ना इस्लामाबाद से सऊदी अरब।
0: जी
1: जब हम उधर गए तो यकीन करें हमारे साथ ही कुछ फैमिली थी, 3-4 बहनें थी। वो मैं तो नहीं जानता उनको, लेकिन उनका एक मैं भाई जा रहा था अभी बाहर, तो मैंने जब देखा साथ करीब ही खड़ी थी तो उनको आंसू शुरू हो गए ना, उससे मिल रहे थे। वो नहीं गया सर, मैंने किसी को रोना देख लूं तो मुझे बहुत आंसू आ जाते हैं। तो मैंने भी उससे उस बेटे के साथ जाके मिला, मैंने बड़ा कोई बात नहीं आप जा रहे तो ये मेरा बेटा भी है। कोई सर बाजी है कि आजान भी हो रही है, तो इंसान रूह को आप से पाक कर और नफ्स को अपना गुलाम बना लेना तो वो इंसान कामयाब हो जाता है सर। पढ़ा
0: लिखा
1: नहीं है, तो बात यह है कि रिश्तों में जो है ना हर दफा जिस तरह नीला आप ही गुजरात करनी पड़ती है, बातचीत तो होती ही रहती है ना, होनी चाहिए, मुज़ाकरात के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। बस दफ़ा एक दूसरे को ऐसे ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं लेकिन वो ऐसे नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे के साथ वजात बैठना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर एक दूसरे के साथ आप बैठेंगे मिलेंगे नहीं तो फिर बाद में जो है वो बातें बहुत लंबी हो जाती हैं सर।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: आजान भी हो रही है तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सब सुनने वालों को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: जिंदाबाद। ओके जी। आंखों में सितारे तो कई शाम से उतरे, आंखों में सितारे तो कई शाम से उतरे, पर दिल की उदासी नदर बाम से उतरे। कुछ रंग तो उभरे तेरी गुल पैरहनी क्या, कुछ जंग तो आई नए अयाम से उतरे। होते रहे दिल लम्हा बलम्हा तो हो बाला, वो जीना बजीना बड़े आराम से उतरे। जब तक तेरे कदमों में फरोकश सबूकश, साकी खते बादा ना लवे जाम से उतरे, बेतमा नवाजिश भी नहीं संग दिलों की, बेतमा नवाजिश भी नहीं संग दिलों की, शायद वो मेरे घर भी किसी काम से उतरे। औरों के कसीदे फकत आवर्त थे जाना, जो तुझ पे कहे शेर वो इल्हाम से उतरे। ऐ जाने फराज ऐ मेरे दुख के मसीहा, हर जहर जमाने का तेरे नाम से उतरे। हर दुख जमाने का, हर जहर जमाने का तेरे नाम से उतरे। ऐ जाने फराज ऐ मेरे हर दुख के मसीहा, हर जहर जमाने का तेरे नाम से उतरे। आंखों में सितारे तो कई शाम से उतरे, पर दिल की उदासी न दरोबाम से उतरे।

0: और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: वरुण FM पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, आवाज आपकी समाज तक पहुंच रही है। आपके अपने मेजबान आरजे वसीम अहमद की। हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम शमीम जी, वेलकम। कैसी हैं आप?
2: अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
1: बड़ी खुशी है आपकी आवाज इस वक्त सुन के।
2: हाँ जी, बस काफी देर से मिला आ रही हूँ, बिजी जा रहा था फोन।
1: जी जी,
2: तो मैंने कहा चले आज मैं भी इस वक्त करके देखती हूँ।
1: बहुत अच्छा लग रहा।
2: जो भी गाना आपने प्ले किया, ये मूवी चांद और चांद नहीं का।
1: जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे।
2: मैंने के सिनेमा जाके देखी थी।
1: अच्छा, वाह वाह, मैंने भी ये सिनेमा उसमें देखी थी, मगर ये मतलब जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब की बात नहीं मैं कर रहा, ये कोई 20-25 साल पहले मैंने देखी थी।
2: बस यही रहे, इतने साल मुझे भी हो गए।
1: जी जी,
2: देखिए पुरानी चीजें कितनी सदाबहार, ओल्ड इज गोल्ड है। इतना मजा आ रहा है इस वक्त रात की तारीखी में सुन के ना।
1: जी जी,
2: बड़ा अच्छा लग रहा।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: चल मैंने कहा आज मैं भी हाजिरी लगवा लूं।
1: बहुत शुक्रिया।
2: अनिला जी को मैं सुन रही थी, अनिला जी को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और
1: ठीक है, बहुत शुक्रिया।
2: अल्लाह हाफिज़।
1: शमीम हमारी बहुत अच्छी लिस्टनर, हमारी बहुत पुरानी रेगुलर कॉलर है। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम।
3: क्या हाल है वसीम भाई?
1: जी शुक्र अल्लाह का ठीक है।
3: अब्दुल हाशमी जिबाज गार्डन लाहौर।
1: जी अब्दुल हाशमी, आपको ना आपका नाम वो भूल गई थी, रिमशा, तो रिमशा आपको सलाम कह रही थी।
3: हाँ हाँ, मैं सुन रहा था
1: जी।
3: बड़ी अच्छी हमारी गुड़िया सी बहन है। तो आज काफी कलर की शायरी का प्रोग्राम है, तो आज सारे दूसरे लोग भी आ रहे हैं। तशमीम आप ही आई थी, तो बहरहाल आज का टॉपिक जो था ना, मोहब्बतों में वजाहत की जरूरत होती है।
1: हाँ, रिश्तों में
3: हाँ, रिश्ते भी मोहब्बत की लड़ी से जुड़े होते हैं। तो हजरत मासूम अली बासम ने कहा था कि जिस आसमान के नीचे जो मोहब्बत है ना
1: जी,
3: अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत चीज,
1: खूबसूरत चीज है, सबसे खूबसूरत चीज।
3: तो भक्तों को मुजातों की जरूरत नहीं होती, ये तो रूहों का संगम होता है। और जुड़े नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सब कुछ बता देती है। जरूरी नहीं आप मुंह से बोल के बताएं।
1: सही बात है, सही बात
3: है। हरकातों, सकदात और
1: निगाहें, सबसे बड़ी बात तो निगाहें, आपकी आंखें जो है वो सच बोलती हैं, वो झूठ नहीं बोलती।
3: निगाहों से भी पड़ जाता है ना, बॉडी लैंग्वेज की बात की है तो उसमें निगाहें भी आ जाती हैं। और इसमें जरूरी नहीं हम मजाक करें कि हम आपसे प्यार करते हैं, अपने अमल से, अपने अमाल से मोहब्बत खुद आशकारा हो जाती है।
1: जी जी, बात यह कि अगर कोई शिकवा, शिकायत, गिला भी पैदा हो जाता है तो दूसरे बंदे को ये कंफर्म होना चाहिए कि ये शख्स ऐसा नहीं कर सकता।
3: जी जी बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: वजाहत ना देनी पड़े कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, वो पूछे ही ना, सवाल ही ना करे, उसे पता है कि ऐसा नहीं कर सकता। दैट्स इट।
3: मोहब्बत जो है ना मुस्लिम भाई, ये कुर्बानियों का मजमूआ है, दोनों तरफ से एक दूसरे की अनाओं को जो है ना कुर्बान करना पड़ता है और फिर मोहब्बत आगे बढ़ती है।
1: सही बात, सही कह रहे हैं
3: आप। आज हमीद गुल साहब ने अब्बास ताबिश को पढ़ा
1: जी,
3: मेरे भी पसंदीदा शायर हैं
1: जी,
3: उनके 6 मजमूए आ चुके हैं, कुलियात की हैं उनका इश्ताबाद के नाम।
1: जी जी,
3: तो मैं उनकी एक गजल शामिल करूंगा।
1: जी जरूर।
3: ये अजब सा रुखसत है कि डर लगता है,
1: वाह,
3: ये अजब सा रुखसत है कि डर लगता है, शहर के शहर मुझे रखते सफर लगता है।
1: हाँ हाँ, शहर के शहर मुझे रखते सफर लगता है,
3: रखते सफर लगता है। हमको दिल ने नहीं, हालात ने नजदीक किया, धूप में दूर से हर शख्स शजर लगता है।
1: हाँ हाँ, दूर से धूप में हर शख्स शजर लगता है,
3: शजर लगता है। जिस पे चलते हुए सोचा था कि लौट आऊंगा, अब वो रास्ता भी मुझे शहर बदर लगता है। मुझसे तो दिल भी मोहब्बत में नहीं खर्च हुआ, तुम तो कहते थे दे इस काम में घर लगता है, तुम तो कहते थे दे इस काम में घर लगता है, वक्त लफ्जों से बनाई हुई चादर जैसा, ओढ़ लेता हूँ तो सब ख्वाबे हुनर लगता है।
1: वाह वाह,
3: इसका मक्ता जो है
1: जी,
3: बड़ा कमाल का है, ऐसा शेर अब्बास ताबिश ही कह सकता है
1: जी।
3: एक मुद्दत से मेरी मां नहीं सही ताबिश,
1: वाह।
3: मैंने एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है,
1: बहुत अच्छा।
3: ये अजब साथ से रुखसत है कि डर लगता है, शहर का शहर मुझे रखते सफर लगता है,
1: वाह।
3: दुआओं में याद रखे,
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्नूर हाशमी, खूबसूरत कलाम सुना के गए। उड़ने लगे वजूद के जर्रे हवा के साथ, उड़ने लगे वजूद के जर्रे हवा के साथ, मैं इस कदर खुलूस से बिखरा कभी ना था, सूरज के साथ डूब गया दिल भी मेरा कतील, सूरज के साथ डूब गया दिल भी मेरा कतील, इतना उदास शाम का मंजर कभी ना था, इतना उदास शाम का मंजर कभी न था। वो शाम हमेशा याद रहेगी जब उसे आखिरी बार छत से अपनी तरफ देखते हुए देखा था, वो शाम हमेशा याद रहेगी। हेलो
4: हेलो, ये रात हमेशा याद रहेगी।
1: वाह,
4: अजान हो रही है
1: जी,
4: तो आपका शोर है, हम सब सुन रहे हैं, आपके साथ जाग रहे हैं। मैं फरीज मुझे लाहौर से बात कर रही हूं।
1: फरीज जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं,
4: करें अल्लाह ताला का। प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, बड़ा मजा आ रहा है, रात को बड़े अच्छे गाने रिलीज हो रहे हैं, सारे सुन रहे हैं हम लोग। वनीला ही बड़ा अच्छा लगा है, उन्होंने शायरी की है, नूर हाशमी आए थे, अब नूर हाशमी, उन्होंने भी शायरी पढ़ी है, अच्छा लगा है।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
4: आई थी बोधी जट और शमसी ग्रुप वाले को सबके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके लिए बहुत सारा प्यार और मोहब्बत भरा सलाम, आपकी फैमिली के लिए भी।
1: बहुत शुक्रिया फरीद जी, जीती रहिए, बहुत शुक्रिया,
4: अल्लाह हाफिज। मान लो,
1: थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके जी, सुना है उसके शिबस्तान से मुतसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। मनोरफ पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, 04-2111-0101 इज द नंबर टू डायल। हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन
5: सर? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਟੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਨਾਂ ਲਿਆ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
5: ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਲਾ ਆਪੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਰੀ ਆਪੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਹੁਸਨਾ ਆਪੀ ਨੇ
1: ਜੀ ਜੀ
5: ਤੇ ਕੋਮਲ ਆਪੀ ਹੈ।
1: ਕੌਣ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
5: ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀਰ ਬੋਧੀ ਜੱਟ ਸਰ
1: ਜੀ, ਬੋਧੀ ਜੱਟ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ।
5: ਅੱਛਾ
1: ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪੀ
5: ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੇਟਿਆ ਸਰ ਸਰ ਛੱਤ ਤੇ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
5: ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
5: ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪੀ ਹੁਣੇ ਨੇ ਲੈਣਾ।
1: ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ
5: ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸੂਸੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
1: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ,
5: ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਮਾਮ ਸੁਣਨਾ। ਅਨੀਲਾ ਆਪੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਸਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲੂਟ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਗੁੱਡ
1: ਗੁੱਡ ਅਵਾਰਡ ਹੈ।
5: ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਅਵਾਰਡ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ, ਬੁੱਧਜਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਕਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੈਲੋ,
6: ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਬਦੁਲ ਮੀਤ, ਕੈਸੇ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ,
6: ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੁਕਾਨ, ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰੈਡ ਵਾਲ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
1: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ।
6: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ,
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ,
6: ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ
1: ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ
6: ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਹੋਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੱਟ ਵਾਲੇ
1: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੇ ਰਹੋ ਅਬਦੁਲ
6: ਆਪਣਾ ਹਮੀਦ ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ
1: ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
6: ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ
1: ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲੀ, ਹਾਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
6: ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈ ਲਾਗੀ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਦ, ਨਾ ਰੁੱਕਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨੀ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੇਖਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਹੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਗਾ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ।
1: आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, यकीन मानिए मैं जितना भी समेटना चाहूँ नहीं समेट सकता। हमीद गुल साहब ने कहा कि नीला साहिबा को सालगिरह मुबारक, शादो आबाद रहे, बहुत शुक्रिया। और जनाब इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं इस वक्त रोज़ी रिजवाना, इन्होंने प्रोग्राम को लाइक किया है। रोज़ी रिजवाना जी आपका बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बास ने प्रोग्राम को लाइक किया है, जाहिदा नवाज़ ने और जन्नत सलीम ने भी, मलक नासिर ने भी, और इसी तरह से हमीद गुल साहब हैं, माजुबी हैं, जुगनू जूनियर और बहुत सारे हमारे लिसनर हैं जिन्होंने प्रोग्राम को लाइक भी किया है और उनके कमेंट्स भी हम तक पहुंचे हैं। और इसी तरह से रोज़ी रिजवाना ने कहा कि नाइस शो, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल है कैसरा और हुमैरा गुलबर्ग से, फौजिया लाहौर से, तमाम सुनने वालों को सलाम। प्रोग्राम खूबसूरत, सारी रात आपके प्रोग्राम में हमें जागना पड़ता है। बहुत शुक्रिया जी आपका जागना, बहुत मेहरबानी। और इसी तरह से जुगनू जूनियर ने गर्मा गर्म चाय के दो कप भेज दिए, ये आपने जुल्म कर दिया जुगनू जूनियर, इस वक्त तो मतलब चाय को पीने को वाकई बड़ा दिल चाह रहा है। और इसी तरह से जनाब अब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जी, हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं इस वक्त मुबशर कसूर से, तमाम सुनने वालों को सलाम, आपका आना बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और जनाब SMS हमें कोई नहीं मिला अभी तक, अगर मिल गया होता तो हम उसे भी प्रोग्राम में शामिल करते। देखते हैं जनाब कोई और कॉलर अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्हें भी लाइन पर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम
7: जी। बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी आप?
1: क्या बात है शहजाद भाई, ठीक ठाक हैं
7: माशाल्लाह जी, आपकी दुआएं माशाल्लाह। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, ये चाहत है, मोहब्बत है, प्यार है, ये पूछना नहीं पड़ेगा किसी का, ना बताना पड़ेगा आपसे कितनी मोहब्बत है जी।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे
7: तो माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह आपका होता है। और हमें नींद कहाँ पे आए, जब इतनी अच्छी बातें सुनेंगे तो नींद नहीं आती ना।
1: नींद कभी रहती थी आंखों में, अब रहते हैं सांवरिया।
7: क्या बात माशाल्लाह। तो रिश्तेदारों से जो मोहब्बत का कहना होता है ना, वो तो जरूरी नहीं, मैं समझता को पता चल जाता है कौन कितनी मोहब्बत कर रहा है जी।
1: सही बात है, सही बात है।
7: तो सियाने की गल लगी पंजाबी च के अपने दे दंद गिने होते।
1: सही बात है, सही बात है, सही
7: बात है। हां ते ओ पता लग जांदा है केड़ा इतनी मोहब्बत कर रहा है ते केड़ा नहीं कर रहा। लेकिन ओदे अगे जरूरी नहीं के तुसी ओनू ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ।
1: ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ
7: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, प्यार का वादा ऐसे निभाए जी, तू भूले तो तू मर जाए, मैं भूलू तो तू मर जाए।
1: अच्छा ना,
7: ओ हो, फिर जो लड़ाई हुई, क्या बात, तूने क्या, तूने तो मुझे ही मारा, अपने आप को कहानी कहा के मैं मर जाऊ। तो फिर झगड़ा हो गया, मैं कहने मैं प्यार का इजहार किया तेरे ना तो हूं काम, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ।
1: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਜੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ।
7: ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਤਾ
1: ਹੈ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
7: ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ,
1: ਆਮੀਨ,
7: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
1: ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। अगले किसी प्रोग्राम च देखा गे। ओके
7: चलो मेहरबानी। ओके
1: क्या करे मेरी मसीहाई भी करने वाला, क्या करे मेरी मसीहाई भी करने वाला, जख्म ही ये मुझे लगता नहीं भरने वाला। कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो भरने वाले नहीं होते। कहते कि तुम्हारे दिल में समाए हो, हमारी मोहब्बत हो, मगर तुमसे बिछड़े तो सदियां हो गई। कुछ लोग वैसे कहते हैं सदियां हो गई, कुछ लोग वाकई एक साल नहीं, दो साल नहीं, दस साल नहीं, बीस साल नहीं, तीस साल नहीं, चालीस साल, पैंतालीस साल, पचास साल, मगर दिल के अंदर मोहब्बत वहीं पे मौजूद है। जमीन गोल है, जमीन गोल है, कहते हैं कि यहीं पे घूमते रहते हैं सब लोग, कहीं ना कहीं घूमते घूमते वो भी आन टकराएगा, सामने आ जाएगा, मगर कब तक। मगर दिल के अंदर मोहब्बत वहीं पे मौजूद है। जमीन गोल है, जमीन गोल है, कहते हैं कि यहीं पे घूमते रहते हैं सब लोग, कहीं ना कहीं घूमते

0: रहे हैं, शो बहुत अच्छा है।
1: अपना नाम दोबारा बता दीजिए।
0: नदीम अख्तर पाक आर्मी से।
1: ओके नदीम अख्तर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी नदीम अख्तर, हम मेरी तरह रेडियो को सुनने वाले सामे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और टेलीफोन नंबर आपका जाना पहचाना 0442111001। हमारा टेलीफोन नंबर वक्त बताता चलूँ 3:48 हो चुके हैं। अपने सर पर बहुत देर से मैं नींद राज, अपने सर पर बहुत देर से मैं नींद दराज सोचती थी कि वो इस वक्त कहाँ पर होगा, सोचती थी कि वो इस वक्त कहाँ पर होगा। एक कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करें, फिर आपको ये खूबसूरत नज़्म सुनाऊंगा। प्रवीण शाकर जी, हेलो।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर से।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
2: मैं सोचती हूँ कि बस वक्त कहाँ होगा, मैं अभी ब्राउन ब्रेड के 2 पीस खा रही हूँ। भूख लगने के बाद इसी किस्म की कैफियत होती है, जो मिलता है खाओ।
1: आपने मुझे भूख लगवा दी है।
2: मैंने ना एक्चुअली चने की दाल चावल बनाए हुए थे, तो वो खाए हुए थे रात को, इस वक्त मुझे जागने से फिर भूख लगी, तो मैंने वो चने की दाल ऊपर चंगी तरह से थोप थाप के स्लाइसों के ऊपर तो मैंने खा।
1: बहुत अच्छा।
2: और बोधी भाई, मेरा वीर बहुत याद रखता है मुझे, बहुत सारी दुआएं उनके लिए। और तुम सायन कहो अस्सलाम वालेकुम माऊ जी, कम से कम बते ते ना मेरे वीर नु लाओ जी। उनके मसायों के लिए बहुत ही दुआएं, सलाम बहनों के लिए हमारी। और अब्दुल हमीद भाई, ये दोनों हाथों से आपको सलूट और सलाम। आप मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, मुझे हमेशा याद होते हैं। ओके ना, मैं फटाफट आनी तो मैंने भूल जा मैंने ना। शमीमा भी आई, परी जी आई, बहुत अच्छा लगा। देखिए इस वक्त कितनी रौनक है ना वसीम भाई आपके प्रोग्राम में है।
1: सब जाके
2: आपकी, आप इतनी मोहब्बत से करने आते हैं प्रोग्राम, तो सब कॉलर लिसनर जो है वो आपको इतनी मोहब्बत से सुन रहे होते हैं, इसलिए वो जौक और शौक से आते हैं और हिस्सा लेते हैं। शहजाद भाई आते हैं इतनी मजे की गुफ्तगू लेके, इसी तरह तारिक भाई भी आते होते हैं। वो तो दोपहर के प्रोग्राम में इतने सारे कॉलर आते हैं जिनके नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे।
1: सही बात है, सही बात।
2: बड़ी रौनक लगती है। वो हनीफ भाई होते हैं, तो जीरा भाई भी आए थे लास्ट टाइम, याद है? दो बजे के शो में जीरा भाई भी आए थे। तो अच्छी रौनक सब लगाते हैं। और बेचारे नीने मोट के लगे हुए थे वसीम भाई,
1: जीरा भाई का। वो मुझे शहजाद ने बताया था कि जी मैंने उन्हें कहा था कि उठ के कॉल करें।
2: उठ जाओ लड्डू बंटते पे। तो बड़ा अच्छा लगता है। और आप माशाल्लाह इतना फ्रेश होते हैं, इतना फ्रेश फ्रेश शायरी पढ़ रहे होते हैं, इतनी मजे मजे की। आपने बड़े जबरदस्त किस्म के कलाम पढ़े,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: खूबसूरत और इतनी अच्छी रौनक लगती है। अब्दुल नूर भाई भी आते हैं, वो बीस्ता डालते हैं, लड़कियां आती हैं वो बीस्ता डालती है, रिमशा इतनी अच्छी रौनक लगाती है,
1: रिमशा बहुत रौनक लगाती है।
2: हाँ हमीद गुल भाई आते हैं, वो अपनी बड़े खूबसूरत अंदाज से अपनी शायरी पढ़ते हैं और सुनाते हैं। तो इसी तरह बाकी सब भी जो भाई आ रहे होते हैं, ये बोधी भाई आते हैं, ये मजे के मैं दुआने खा लेने। जुगनू मेरा वीर तू ही आया कर। मुझे लगता है वो टूटियां कानों पे लगा के ना खराटे मारे ख्वाब दे, कह रहे वसीम भाई मोने कॉल करना। चले जी, मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो प्लीज नाराजी हो ना, मुझे सब याद होते हैं, बस जल्दी जल्दी में मेरे कभी कभी भूल जाती हूँ, तो वेरी सॉरी। तो वसीम भाई चक दे फटे, जिंदाबाद।
1: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अनिला जी की कॉल आई, उन्होंने एक दफ़ा फिर कॉल की है और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है, सबके नाम भी लिए हैं, जो लोग याद करते हैं उन्हें उनके नाम भी लिए हैं। अब्दुल हमीद का नाम फिर भूल गई आप, ठीक है। और बहुत शुक्रिया जनाब 11FM, अगर लिया है तो मैं भूल गया हूँ, अगर नहीं लिया तो फिर आप भूल गई हैं। ओके जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और प्रोग्राम के आखिर में आपको प्रवीण शाकिर का खूबसूरत कलाम सुनाऊँगा, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इससे पहले कि वो कलाम प्रोग्राम में शामिल करूं, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन?
3: मैं, क्या हाल है? खैरियत है? आपका प्रोग्राम सुना, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कौन बोल रहे हैं?
3: सरदार सोहराब फ्रॉम आजाद कश्मीर।
1: क्या नाम?
3: सोहराब, सरदार सुराब।
1: हाँ सरदार सुराब, ओके।
3: सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
1: बहुत शुक्रिया सरदार भाई आपका प्रोग्राम में शामिल होने का, और इतनी दूर से आपने इतने प्यार से मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जीते रहिए।
3: मैं 1 बजे से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, आज ये डांस का सुन रहा था प्रोग्राम, फिर आपका मैंने सुनना शुरू किया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
3: जी।
1: चले बहुत शुक्रिया,
3: प्रोग्राम बहुत मुझे पसंद आया। मैं तकरीबन 2014 से एफएम सुन रहा हूँ।
1: 2014 से सुन रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। टॉपिक पे बात करेंगे कुछ
3: जी? माशाल्लाह आपका टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है माशाल्लाह। आपका जो अंदाज है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत आपका अंदाज पसंद आया।
1: बहुत शुक्रिया, आपने अब आइंदा भी मुझे कॉल करनी है, ठीक है?
3: इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आप एक और लिसनर हमारे कॉल किया करते थे, वो तलाकुम चकवाल से, वो जी आजकल आ रहे हैं।
1: चले अगर वो सुन रहे तो वो भी जरूर कॉल करें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ओके जी। अपने सर पर बहुत देर से मैं नीम दराज सोचती थी कि वो इस वक्त कहां पर होगा, सोचती थी कि वो इस वक्त कहां पर होगा। मैं यहां हूं मगर उस कूचे रंगो भू में रोज की तरह से वो आज भी आया होगा, और जब उसने वहां मुझको न पाया होगा, आपको इल्म है वो आज नहीं आई है? मेरी हर दोस्त से उसने यही पूछा होगा, क्यों नहीं आई वो, क्या बात हुई आखिर, क्यों नहीं आई वो, क्या बात हुई है आखिर। खुद से इस बात पे 100 बार वो उलझा होगा, कल वो आएगी तो मैं उससे नहीं बोलूंगा, कल वो आएगी तो मैं उससे नहीं बोलूंगा, आप ही आप कई बार वो रूठा होगा। वो नहीं है तो बुलंदी का सफर कितना कठिन, सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने ये सोचा होगा, राहदारी में हरे लॉन में फूलों के करीब उसने हर समत मुझे आन के ढूंढा होगा, नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा, गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा, एक जुमले को कई बार सुनाया होगा, बात करते हुए 100 बार वो भूला होगा, बात करते हुए कई बार 100 बार वो भूला होगा। ये जो लड़की नई आई है कहीं वो तो नहीं, उसने हर चेहरा यही सोच के देखा होगा, जाने महफिल है मगर आज फकत मेरे बगैर, हाय किस दर्जा वही बज्म में तन्हा होगा, कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे, उसने बेसाख्ता फिर मुझको पुकारा होगा। चलते चलते कोई मानूस सी आहट पाकर दोस्तों को भी किसी उज्र से रोका होगा, याद कर कर के मुझे नम हो गई होंगी पलकें, आंख में पड़ गया कुछ कह के ये टाला होगा, और घबरा के किताबों में जो ली होगी पना, हर सतर में मेरा चेहरा उभर आया होगा। जब मिली होगी उसे मेरी अलालत की खबर, उसने आहिस्ता से दीवार को थामा होगा, सोचकर ये कि बहल जाए परेशानी ये दिल, यूं ही बेवजह किसी शख्स को रोका होगा, इत्तफाकन मुझे उस शाम मेरी दोस्त मिली, मैंने पूछा कि सुनो आए थे वो कैसे थे, इत्तफाकन मुझे उस शाम मेरी दोस्त मिली, मैंने पूछा कि सुनो आए थे वो कैसे थे, मुझको पूछा था, मुझे ढूंढा था चारों जानिब, उसने एक लम्हे को देखा मुझे और फिर हंस दी, उस हंसी में तो वो तलखी थी कि उससे आगे क्या कहा उसने मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मालूम है ख्वाबों का भ्रम टूट गया, इतना मालूम है कि ख्वाबों का भ्रम टूट गया।

0: आखिरी कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। ओके
1: हो हम क्या तुम्हें सुनाए।
0: हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन?
2: शुक्र वसीम भाई, शुक्र है। मोहम्मद इकबाल मुगल बात कर रहा हूँ।
0: कौन?
2: मोहम्मद इकबाल मुगल जुगनू जूनियर।
0: जी मोहम्मद इकबाल मुगल जुगनू जूनियर, क्या हाल है? ठीक ठाक है, सिर्फ हाजिरी लुआ दियो बस इस वेले। आपने जो पोएट्री भेजी है, जो आपने पोएट्री भेजी वो भी बहुत अच्छी, आपकी कॉल भी बहुत अच्छी, आप भी बहुत अच्छे।
2: चलिए सबको अस्सलाम वालेकुम। नीला पी जो जो कॉलर आए, अब टाइम थोड़ा एंड है।
0: ओके ओके, अल्लाह हाफिज।
2: साल उठा लिया करो यार।
0: बहुत शुक्रिया जुगनू जूनियर, अल्लाह हाफिज। ओके डियर लिस्टर्स, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को डेढ़ दो में डेढ़ दफ़ा याद रखिएगा, मैं भी आपको डेढ़ दो में डेढ़ दफ़ा याद रखने की कोशिश करूंगा। कोशिश इसलिए कि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं। और प्रोग्राम के आखिर में आपके लिए एक शेर है, दोस्ती तो जाने बे दुश्मन न देखना। मोमिन खान मोमिन का शेर है, दोस्ती तो जाने बे दुश्मन न देखना, जादू भरा हुआ है तुम्हारी निगाह में। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अगला अल्लाह हाफिज़।

और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र इस्तकामत के दहाने खोल दे और हमें मारियो तो मुसलमान ही मारियो।

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم